भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आज आप सुन रहे थे हरिओम शरण और साथियों की गाई हुई भक्ति रचनाएं। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

0: तो जंगल की मोरनी चाहे मैं बागा दा मोर, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में राजा साहब फिल्म का गीत कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

ऐ चांद की जेबाई तू झूल जा बाहों में, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में छोटी सी मुलाकात। फिल्म का ये सुरीला सा नगमा आप सुन रहे थे। शब्दकार थे हसरत जयपुरी, संगीत रचना थी शंकर जयकिशन की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप इस समय आकाशवाणी के चूरू केंद्र से सुन रहे हैं, गीत बहार।

मौसम पे जवानी है। अभी आप सुन रहे थे दो प्रेमी फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे हैं फिल्म गंगा और सूरज में। शब्दकार असित भोपाली और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जिसे इश्क का होता हुआ मेरे सामने तो आई। गंगा और सूरज फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले को। शब्द रचना थी असद भोपाली की और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था लोकेट। गीत को लिखा था गौहर कानपुरी ने, संगीत रचना थी बप्पी लहरी की। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान। एपिसोड नंबर है 394।

शिव मंदिर में गुरु की अनदेखी करके अपमान करने के कारण उस जन्म में शूद्र शरीरधारी काक भुशुंडी को भगवान ने सर्प हो जाने का श्राप दिया तो कृपालु गुरु हाहाकार कर उठे। स्तुति करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। आशुतोष ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वर मांगने को कहा। विप्र ने दो वर मांगे, एक अपने लिए शिव चरणों में भक्ति और दूसरा शिष्य

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। इसका प्रसारण आकाशवाणी के चुरू केंद्र से किया गया, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। यह प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार चुरू।

दिल का फरेब जब कोई गुलनार खा गई। जी साथियों, सुरीले से गीत के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनका ताल्लुक आपके और हमारे रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल से है, जीवनचर्या से है, दिनचर्या से है। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे कामों को अंजाम तक पहुंचाना होता है, बहुत सारी भागदौड़ हमें करनी होती है और उसके लिए हम बहुत सारे ऐसे फैसले करते हैं जो अक्सर तो सही ही साबित होते हैं लेकिन कई दफ़ा गलत भी साबित हो जाते हैं और जिनका नुकसान, जिनका खामियाजा फिर अल्टीमेटली हमें ही उठाना पड़ता है। तो क्यों ना पहले से हम सतर्क रहे, सावधान रहे, बाचाहे अपने स्वास्थ्य को लेकर हो, अपने करियर को लेकर हो या फिर किसी ऐसी फील्ड में जो हमारे लिए अनजानी है, जिसके लिए हमने आज तक कोई ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं की है लेकिन फिर भी हम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात होती है सामाजिक परिवेश में रिश्तों को संभालने की। रिश्तों का जो ताना बाना होता है वो आपसी विश्वास, सौहार्द, प्रेम और स्नेह के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसमें कई दफ़ा छोटी मोटी तकरारें चलती रहती है और लेकिन जब कभी हम किसी बात को गांठ बांध लेते हैं वहाँ से परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। वो हमारे लिए भी हो जाता है और सामने वाले के लिए भी हो जाता है। इसलिए क्यों ना ऐसी हरकतों से बचा जाए, हम वो काम करें ना जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो, हम प्रगति भी ज्यादा कर सकें, खुशहाल रह सकें, जिससे कि आसपास का सारा परिवेश खुशनुमा हो जाए और इस चीज़ का लाभ सभी को मिले, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हो या हम किसी ऑफिस में काम करते हों, वहाँ के हमारे साथी हो, हमारे स्टाफ हो, सबके साथ सुकून से रहें और सबके साथ अच्छा बिहेवियर करें। कई दफ़ा ये नेगेटिविटी हमारे दिलो दिमाग में आ जाती है कि हम कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, सामने वाले पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साथियों, ये सबसे गलत बात है। अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं, अगर आप मीठा बोलते हैं, सामने वाले को इज्जत देते हैं, तो ये सारी चीज़ें दुगुनी होकर वापस हमारे पास आती है। हम जो कुछ भी प्रकृति में देते हैं वही तो पाते हैं। ये एक छोटा सा रहस्य, इसे समझने की ज़रूरत है। इसलिए हम अच्छा दें, हम पॉजिटिव दें, सामने वाले का मान सम्मान करें, इज्जत दें। किसी बात पर अगर कोई तकरार हो जाता है, कोई मतभेद की स्थिति बन भी जाती है, तो उसे बैठकर आपस में बातचीत, डिस्कशन, डायलॉग के जरिए सुलझाना चाहिए, न कि किसी बात को गांठ बांध लें। इससे तो क्या होगा कि जब हम सामने वाले को माफ नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिव उस परिवेश में चले जाएंगे जो हमें अंदर ही अंदर परेशान करेगा। इसलिए जो बात हुई उस पर अपन बात के जरिए उसका समाधान करने की कोशिश करें और फिर देखेंगे कि जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। किसी को माफ करने का अर्थ कमजोरी नहीं है बल्कि खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से आजाद करना है। माफ करने से आप तनाव मुक्त होते हैं, बेहतर नींद आती है, बीपी सामान्य रहता है और हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, हमारा दिल पूरी तरह से सेहतमंद रहता है। जीवन में ऐसी बातें होती ही रहती हैं। जब तक आपको कोई बहुत बड़ा मॉनेटरी लॉस या इस प्रकार का कोई नुकसान न हो तब तक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो मान लीजिए सब कुछ अच्छा है, पहला सुख निरोगी का। इसी पॉइंट पर हम चलते आए हैं, चलते रहेंगे और इसके लिए वो तमाम कार्यों को करने की आवश्यकता है जो हमें स्वस्थ रख सके, हमें अच्छा फील करवा सके। इसके लिए जरूरी है सबसे पहले कि मन में नेगेटिव थॉट्स को आने ही न दे, किसी के साथ उलझने की स्थितियां पैदा ही ना हो। सबसे अच्छा बोले, मीठा बोले और अगर किसी बात पर कोई नोक झोंक हल्की फुल्की हो भी जाती है तो उस बात को वहीं रफा दफा करें, बातों के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान खोजें। और जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो उसके फायदे हमें ही ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो गुस्सा और नफरत, शरीर में कार्टिसोल जैसा तनाव को बढ़ाने वाला जो हार्मोन है उसको बढ़ा देता है। माफ़ करने से ये चीज़ें कम हो जाती हैं। पुरानी बातों और कड़वाहट को भूलकर आप सकारात्मकता और सुकून महसूस करते हैं। बदले की भावना या पुरानी पीड़ा में जीने से मन भारी भारी रहता है, माफ़ करने से ये बोझ उतर जाता है। आपको लगता है कि आप न जाने कितने हल्के हो गए हैं। कम तनाव का सीधा असर हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी जो इम्यूनिटी है उस पर पड़ता है।
जैसे आप जल्दी बीमार नहीं होते, आप तनाव नहीं पालते, आप किसी के प्रति दिमाग में नफरत या गुस्सा नहीं पालते, तो आप पॉजिटिव रहते हैं और उससे आपका इम्यून पावर जो है वो बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी इतनी प्रबल रहती है कि फिर छोटी छोटी बीमारियां तो पास भी नहीं आती। नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहने से दिल की धड़कन भी बढ़ती है और बीपी भी बढ़ता है। माफ करने से दिल की सेहत में बहुत ज्यादा सुधार होता है। पुरानी गलतियों को माफ करने से रिश्तों में विश्वास और गहराई बढ़ती है। माफ करने से आप अतीत के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और जीवन में आप निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखें। और साथियों, वैसे भी बात सच है कि माफ करना सीखना हमारे मानसिक स्वास्थ्य, आत्म शांति और रिश्तों के लिए बेहद जरूरी है। सामने वाले पर ऐसा नहीं बल्कि खुद को मानसिक तनाव और कड़वाहटों से मुक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्षमा करने से मानसिक तनाव कम होता है और जैसा कि हमने कहा, बीपी कम होता है। यह आपको गुस्से, बदले की भावना और कड़वाहट के बोझ से पूरी तरह मुक्त कर देता है। इससे रिश्तों में भी मिठास और आपसी सम्मान बढ़ता है। अब इसके लिए क्या करें, कैसे करें, हम माफ करना कैसे सीखें, कई बार ये भी प्रश्न हमारे सामने आता है। तो अपने गुस्से को पहचानें, उसे स्वीकार करें और कि आपको ठेस पहुंची है, इस चीज को आप जब रिकॉग्नाइज कर लेंगे तभी तो आप अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानने की आवश्यकता होती है कि समस्या है क्या, समाधान का नंबर तो उसके बाद में आता है। और एक बात और, खुद को सामने वाले की जगह रखकर देखें कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। कई दफा हमें लगता है ना कि सामने वाले ने गलत किया, तब उसकी जगह खुद को रख के देखें तो हो सकता है कि हमें हमारे सभी प्रश्नों के जवाब जो है वो मिल जाए। गलतियां इंसानों से ही होती है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसे याद रखें। इसलिए खुद को भी कोसना बंद कर दीजिए और सामने वाले से कोई गलती हुई है तो उसे भी माफ कर दीजिए। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत बात को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उस घटना को अपने वर्तमान पर हावी ना होने दें। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं, ये करते रहेंगे तो जिंदगी का सफर बेहद हसीन होगा।

0: 27 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: इस को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल के बाद नमस्कार शुरू कार्यक्रम में सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत। साथियों, इस प्रोग्राम में जब तक हम हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने से संबंधित कुछ बातें आपसे न कर लें तो हमें कुछ खाली खाली सा, कुछ अधूरा पन सा लगता है। इसलिए क्यों ना बात को आगे बढ़ाएं और उन बातों का हल्का फुल्का जिक्र हम जरूर करना चाहेंगे जिनका सीधा सीधा संबंध हमारी हेल्थ से है। हम अच्छे कैसे रह सकते हैं, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन के सभी सुखों का सही मायने में उपभोग कर सकता है। जिंदगी का मजा तभी आता है साथियों जब हम पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली फिट हो। ये बात हम सभी जानते हैं, भली भांति जानते हैं, और इसके लिए छोटे छोटे प्रयास तो हमें सतत करने ही होते हैं और हमेशा करने होते हैं। आपने कोई रिजोल्यूशन लिया, आपने कोई ऐसा प्रण किया कि हाँ मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, मुझे योगा करना है, कुछ दिन आपने किया फिर छोड़ दिया तो बात बनेगी नहीं साथियों। जिस तरह से रोज खाना रोज सोना जरूरी है उसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी भी तो रोज जरूरी है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा आयाम, एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि आराम भी उतना ही जरूरी है। जी हाँ साथियों, हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि जितनी फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है उतना ही आराम करना भी जरूरी है। खासकर भरपूर नींद लेना तो बेहद जरूरी है। भरपूर नींद लेने के फायदे हम सभी भली भांति जानते हैं, लेकिन आजकल होता क्या है दोस्तों कि ये जो मोबाइल है ना, इसकी वजह से हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब होते हैं। स्क्रीन टाइम हमारा जितना ज़्यादा होगा नींद का टाइम उतना ही कम होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब नींद का समय कम हो जाएगा तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो साथ देने से इनकार करने लगेगा। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद और अच्छी नींद ये लेनी बेहद आवश्यक है। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार होता है। इससे इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होता है, तनाव कम होता है और दिल की बीमारियों का खतरा घट जाता है। तो जब ये चीज़ इतनी आवश्यक है तो फिर आप नींद के मज़े क्यों नहीं लेते। अगर स्क्रीन टाइम को आप कम करके वो समय नींद को देते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि भरपूर नींद के फायदे भी तो भरपूर होते हैं। सबसे पहले तो ये कि नींद के दौरान हमारा जो शरीर है वो साइटोकाइन नाम के एक प्रोटीन को बनाता है जो संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में हमारी बेहद मदद करता है, यानी हमें बीमार नहीं होने देता। और सबसे बड़ी बात, आज के दौर में ओबेसिटी मोटापा सबसे बड़ी समस्या है, इसका निदान इसका समाधान भी

भरपूर नींद में है। जी हाँ दोस्तों, वजन का नियंत्रण भी होता है। पर्याप्त नींद जो है वो भूख बढ़ाने वाले हार्मोन को कम कर देती है और तृप्ति देने वाले हार्मोन को बढ़ा देती है, जिससे हमारा वजन पूरी तरह से नियंत्रित करने में, अगर हम लंबे समय तक इसका अभ्यास निरंतर करते हैं, सतत प्रयास, सतत मेहनत, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर करते हैं तो। अच्छी नींद हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली यानी हमारी मेमोरी को और ज़्यादा बेहतर बनाती है। डिप्रेशन या एंग्जाइटी का जोखिम कम होता चला जाता है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, हृदय गति को स्थिर रखती है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। गहरी नींद के दौरान त्वचा के जो टिश्यूज होते हैं वो रिपेयर होते रहते हैं, जिससे चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है और बढ़ती उम्र के लक्षण जो हैं वो कम होते चले जाते हैं। इसके अलावा साथियों, भरपूर नींद को तो हमेशा से ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी माना गया। यह शारीरिक मरम्मत, मानसिक शांति और ऊर्जा एनर्जी के लिए बेहद बेहद जरूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद न केवल आपको तरोताजा रखती है बल्कि कई गंभीर बीमारियों से भी आपको बचाती है। सोते समय शरीर की मांसपेशियां जो है वो रिलैक्स मोड में होती है और दिन भर में हमारे जो टिश्यूज में टूट फूट होती है उनकी मरम्मत अपने आप, हमारा शरीर ईश्वर ने इस तरीके से बनाया है कि उनकी मरम्मत अपने आप होती रहती है। भरपूर नींद लेने से कुछ इस प्रकार के हार्मोन भी रिलीज होते हैं जो हमें बीमारियों से लड़ने में हमेशा हमारी मदद करते हैं। हमारी याददाश्त जो है ना साथियों, उसमें भी सुधार तभी मुमकिन हो पाता है, वो तभी मजबूत हो पाता है। हम ध्यान केंद्रित करने की हमारी जो क्षमता है वो तभी बढ़ेगी जब हम पर्याप्त नींद लेंगे। नई चीजें सीखने में भी बेहद मदद मिलेगी। अच्छी नींद मानसिक संतुलन बनाए रखती है, इससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ेपन का खतरा कम होते चले जाता है। तो साथियों, ये सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम वो सारे काम कर पाएंगे जिनके लिए हमें इधर से चिकित्सकों से, विशेषज्ञों से समय समय पर परामर्श लेना पड़ता है। क्योंकि जब स्वास्थ्य एक बार बिगड़ जाता है तो बहुत सारे जटिल हालात हो जाते हैं। हमारे पास समय की कमी होती है, लेकिन फिर समय भी हमारा खर्च होता है, पैसे भी खर्च होते हैं, ऊपर से मानसिक तनाव अलग होता है। तो सबसे पहले तो ये प्रयास होना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए भरपूर नींद लेना भी जरूरी है। इसके लिए संतुलन समय का आपको स्वयं को ही बिठाना पड़ता है, क्योंकि समय की कमी हर किसी के पास होती है। हर किसी के जिंदगी में इतने काम होते हैं कि समय का अभाव होता ही है, लेकिन फिर भी हमें उसे मैनेज करना पड़ता है। कौन सी चीज़ें हमारे शरीर के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, उन पर आप फोकस कीजिए, उन पर कंसंट्रेट कीजिए, वहाँ पर एकाग्रता को बढ़ाइए। और जिन चीज़ों से, जिन कामों को करने से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, विशेष करके आजकल स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इनमें समय जरूरत से ज़्यादा खर्च होता है, तो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। और उस समय को हम नींद में उपयोग कर सकते हैं, और जब हम भरपूर नींद लेते हैं तब हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। इस बात की हम सबको अच्छे से जानकारी है, बस ज़रूरत है इस पर अमल करने की।

0: को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो साथियों नमस्कार, शुरू का आज का सफर बस यहीं तक। अगले प्रोग्राम तक अपने रेडियो दोस्त मुरारी वशिष्ठ को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।

0: वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
4: Both sides underscored the importance.
5: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
3: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर

0: सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना

0: बहुत सुविधाएं दी हैं। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
1: 21 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले CBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ATS ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। ATS ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्ता ने PM स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने

0: पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर-18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउंग क्लाइंग सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President Ou Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said, Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: The Foreign Secretary said that both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, health, education, energy, and critical technologies like artificial intelligence. The Myanmarese leader, accompanied by a high-level delegation, will travel to Mumbai today for business and industry interactions and site visits. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said, India and the United States have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement, and negotiations are now focused on a few minor issues, commas and full stops. We have a report.
4: Commerce Minister Piyush Goyal said that the team from United States

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है। देखो मैंने, ये कतरा कतरा पिघल रही है।

0: एफएमएन के 100.7 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, 2047 के विकसित भारत निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। लोगों से फर्जी मेल और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। प्रदेश में वाहनों को अवैध रूप से मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां, जल स्रोतों के पूजन के साथ कैच द रेन कार्यक्रम का आयोजन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 2047 के विकसित भारत के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री से कल शिष्टाचार भेंट के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी का राजस्थान के प्रति विशेष स्नेह और आत्मीय जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन विकसित राजस्थान के संकल्प को शक्ति प्रदान करता है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री से सुशासन और जन कल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा कर मार्गदर्शन हासिल किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से संगठन से जुड़े विषयों और आगामी कार्य योजनाओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने पत्रकार बातचीत में कहा कि पिछले 12 साल के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी बना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पीआईबी की तथ्य

0: जांच इकाई ने बताया कि इस संबंध में एक मिलते जुलते नाम वाली एक साइट से लोगों को भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। पीआईबी ने आमजन से भ्रामक जानकारी से बचने और आधिकारिक साइट से ही प्रमाणिक जानकारी लेने की अपील की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कल नई दिल्ली से स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू हुए ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के बारे में लोगों को जानकारी देना है। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान में कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर समापन आयोजन में एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम रखा जाएगा और विशेष ग्राम सभा आयोजित होगी। इस दिन सभी ग्राम पंचायतों में अभियान की उपलब्धियों और स्वच्छ भारत मिशन के नियमों पर चर्चा की जाएगी। अभियान का उद्घाटन करते हुए श्री सी आर पाटिल ने विश्वास जताया कि ये अभियान जन भागीदारी बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने में मदद करेगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिकी टीम बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं, जबकि अमेरिकी टीम का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में वाहनों को अवैध रूप से मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। वाहनों के मूल स्वरूप में बदलाव कर उनमें मादक पदार्थों का परिवहन और उनका गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत परिवहन विभाग ने सभी परिवहन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा प्रदेश भर में इस संबंध में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। विभाग के अनुसार राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन संचालित होने की सूचनाएं सामने आती हैं, जिनमें नियमों के विपरीत अवैध मॉडिफिकेशन कर प्रेशर और एयर हॉर्न, अनधिकृत लाल और नीली बत्तियां लगाने का काम किया जाता है। ऐसे वाहनों का उपयोग गैर कानूनी गतिविधियों और अपराध में भी किए जाने की संभावना बनी रहती है, साथ ही सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। विभाग ने सभी वाहन मालिकों से वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन को 3 दिन के अंदर हटाने की अपील की है। प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जल स्रोतों और सरोवरों के पूजन के साथ ही जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम रखा गया है। इसमें वर्षा जल को संग्रहण करने और पेयजल भंडारों के रख रखाव पर आम जन को जानकारी दी जाएगी। 5 जून तक चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर राज्य भर में लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। सरकार की इस पहल से राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले प्रदेश में जल संरचनाओं के संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इधर अभियान के तहत सवाई माधोपुर में जल संसाधन विभाग की ओर से मानसरोवर बांध पर कार्यक्रम रखा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें राज्य और केंद्र की जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
1: कार्यक्रम के तहत जल पूजन, नहरों, खालों की सफाई, डीसिल्टिंग, श्रमदान और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा कैच द रेन, जल संचय, जन भागीदारी और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। साथ ही नवीन जल संरक्षण कार्यों के शिलान्यास और पूर्ण कार्यों के लोकार्पण होंगे। विभाग द्वारा वर्षा जल संचय संबंधी तकनीक की जानकारी तथा जल परीक्षण अभियान भी संचालित किया जाएगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते 24 घंटों में कई जगहों पर आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहीं। सरहदी जिले जैसलमेर में कल देर शाम तेज आंधी के साथ झमाझम बरसात हुई, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। बालोतरा, बाड़मेर और आसपास के इलाकों में भी बारिश से मौसम सुहावना हो गया। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि वहां धूल भरी आंधी से आसमान में गुबार छा गया।

0: जिले में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इस दौरान तेज आंधी आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। जिला मुख्यालय के अलावा रामसर, चौहटन, धनाऊ और सेड़वा समेत कई इलाकों में तेज अंधड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हुई। तूफानी हवाओं के चलते कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए। इस दौरान रात भर बिजली आपूर्ति बाधित रही। तूफानी बरसात से तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: बांसवाड़ा, उदयपुर और सलूम्बर के साथ दक्षिणी जिलों में भी देर रात तक रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां बनी रहीं। भरतपुर, दौसा, करौली और आसपास के इलाकों में भी अंधड़ और बरसात से बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं और टीन टप्पर उड़ गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, 2047 के विकसित भारत निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। लोगों से फर्जी मेल और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। प्रदेश में वाहनों को अवैध रूप से मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। और वंदी गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं समूह स्वरों में देश गान।

0: अभी आप समोस्वरों में देशगान सुन रहे थे। इसका प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:15 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य आपका। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता, लू एवं तापाघात से बचाव विषय पर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा से बातचीत कर रहे हैं श्री कमलेश मीना।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ है डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, और आज जो इनसे बातचीत कर रहे हैं उसका विषय है लू एवं तापघात से बचाव। यानी ये जो मौसम चल रहा है इसमें लू से, गर्मी से किस तरह से आदमी बच सकता है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, ये सारी जानकारी डॉक्टर साहब आज आपको देंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हमारे आकाशवाणी चूरू के स्टूडियो में आपका स्वागत।
2: धन्यवाद।
1: और डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि लू और तापघात से बचाव किस तरह से हमारे श्रोता करें।
2: देखिए, आपने समाज हित में बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अपने मौसम परिवर्तन के हिसाब से शरीर में भी परिवर्तन आते हैं, और गर्मियों में खास तौर से यदि गर्मी बहुत अधिक पड़ती हो, जैसे अपने शरीर का तापक्रम 38 डिग्री से नीचे ही, 37.4 अपन लोग जो मानते हैं, तो इसके आसपास के वातावरण में तो अपने शरीर में कोई ऐसे हानिकारक परिवर्तन नहीं होते, पर यदि वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, जैसे आप सुन रहे हैं 47 डिग्री 48 डिग्री, तो उससे अपने बॉडी में निसंदेह ऐसे परिवर्तन आते हैं जो शरीर के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। अब गर्मियों में अपने शरीर से पसीना जो निकलता है शरीर का, उसमें नमक की मात्रा भी होती है, अपने ग्लूकोज की मात्रा भी होती है, और अन्य भी खनिज पदार्थ निकलते रहते हैं। तो यदि आप सावधानी नहीं बरतें तो आपके डिहाइड्रेशन, यानी सबसे आसान बात है कि भी शरीर में पानी की कमी आ जाती है।
1: बिल्कुल।
2: और पानी की कमी आने से जो शरीर में परिवर्तन होते हैं वो अवश्य होंगे। तो अपने गर्मियों के मौसम में सबसे बड़ा बचाव है, अपने कहावत है कि बचाव ही उपचार है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो जो अपने पीक टाइम है गर्मी का, जैसे दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक, उस समय यदि आप बाहर निकलने से बचते हैं तो कोई आपके लिए बुराई नहीं है उसमें। दूसरा, गर्मियों में जब ये तेज गर्म हवाएं चलती है वो और ज्यादा घातक होती हैं, तो उसमें आपके और ज्यादा नुकसानदेह परिवर्तन होते हैं। तो इसमें अपने भाइयों बहनों को ये बात समझने की जरूरत है, हमारे दो कंडीशंस कहलाती है। एक तो है कि भाई लू लग गई, जिसको अपन सामान्य भाषा में लू लगना जो लोग समझते हैं, एक है तापघात। ये सबसे खतरनाक है, इसको हम वो बहुत ज्यादा ही गंभीरता से लेते हैं, इसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो गर्मियों में एक तो अपने पानी का बैलेंस बॉडी का, यानी डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पिए, सबसे बड़ा मुख्य सूत्र ये है। तो पानी जब पीते हैं तो उसमें जो अपने भारतवर्ष में हरेक घरों में जो पुरानी प्रथाएं चल रही है, जैसे नींबू की शिकंजी है, दही है, छाछ है, कैरी का पानी है, इवन कुछ प्याज का रस है, तो ये चीजें आप भरपूर मात्रा में सेवन करके अपने कार्यस्थल पे आए। और जो अपने बाहर जो खुले में काम करते हैं, खास तौर से आप देखिए किसान भाइयों को खेती में काम

0: हमेशा करना पड़ता है, वो न तो सर्दी से घबराते हैं अपने भारत के किसान भाई बहन, न गर्मी से डरते हैं, कार्य करते हैं
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: पर वो उसके लिए आदि हो जाते हैं और वो अपने पानी पीने का पेय पदार्थ जो है इनका भरपूर सेवन करना चाहिए। और जो इन दिनों में ये मौसमी संतरा इवन तरबूज खरबूज ये पदार्थ भी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
1: डॉक्टर साहब अब बात ये आती है कि इस मौसम में कहते हैं ना कि चूरू एक ऐसी जगह है यहाँ पर सर्दी सबसे ज्यादा पड़ती है, गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है, और सबसे बड़ी समस्या जब गर्मी आती है तो डिहाइड्रेशन की हो जाती है। कपड़ों का क्या रोल है इसमें गर्मी से बचने के लिए?
0: बिल्कुल बहुत ही सही बात आप पूछ भी रहे हैं। देखिए अपने भारत में जो रंग के प्रति आकर्षण है ये आप बरसों से पीढ़ियों से देख ही रहे हैं। अपने सूर्य की किरणों को कुछ जो रंग कुछ जो कपड़े हैं वो ज्यादा अवशोषित करते हैं और उनको वापस परावर्तित नहीं कर पाते, और कुछ जो कपड़े हैं वो उस रेज को अपने सूरज को परावर्तित कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा सफेद रंग वाइट कलर है, ये कंपेरेटिवली अन्य रंगों की तुलना में ठंडा कहलाता है। और ढीले कपड़े होने चाहिए ताकि अपने शरीर का पसीना उड़े। आजकल जो नए जमाने के टाइट कपड़े हैं जींस वगैरह हैं तो इनको आप बहुत सावधानी से पहने, खुले कपड़े बहुत ही शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। दूसरा आप ये देखिए कि ये जो छतरी का प्रयोग है शरीर को ढकने का प्रयोग है तो ये तेज हवाओं से
1: बचने की
0: गर्म गर्म की जो तेज गर्म हवाएं हैं लू लगने से ये बचाती हैं। और छायादार स्थान में यदि आप हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। परंतु आप ये देखिए किसी भाई बहन को लू लग गई तो इसको पहचाने कैसे कि भी किसी को लू लग गई? तो आप देखिए कि कोई भाई बहन यदि कार्य करके अपने घर आ रहा है या धूप से निकल के अपने कार्यस्थल पे जा रहा है तो अचानक उसको चक्कर आना और घबराहट होना, शरीर का तापक्रम बढ़ जाना, इसमें हल्के रूप में तो शुरू में पसीना आता है, यदि पसीना आना बंद हो जाए वो स्थिति बहुत घातक है। पसीना आना भी उतना ही जरूरी है ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो। यदि पसीना आना बंद गया तो टेम्परेचर उस भाई बहन का बहुत अधिक सडनली बढ़ जाएगा। तो यदि आपके जी घबराना चक्कर आना थकान है आपका बदन दर्द कर रहा है हल्की सी बुखार महसूस हो रही है तो ये तो है आपके लू लगने के लक्षण। तो यदि ये हैं तो आप आराम करें अपने शरीर में, यदि आपको बुखार महसूस हो रही है तो ठंडे पानी की पट्टियों का प्रयोग करें अधिक मात्रा में, उनको छायादार स्थान में रखते हुए कोई कमरे में जहाँ कोई एसी कूलर है वहाँ लिटा के पानी का जो तरल पेय पदार्थ है उनका बहुत अधिक सेवन कराएं और आराम आए जब तो कोई बात नहीं, नहीं आए तो अपने चिकित्सक से सलाह लें। किंतु जो तापघात है वो बहुत खतरनाक बीमारी है, जानलेवा साबित हो सकती है, उसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। उसमें बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री से भी अधिक हो सकता है, उसमें इंसान को बेहोशी आना और बिल्कुल ऐसे आपको खुद महसूस होगा शक्ल देख के कि भाई अचानक आदमी बेहोश हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अस्पताल में ही उपचार जाना उसके लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें हम इवन बर्फ की पानी की उसकी पट्टियां करके उसका टेम्परेचर उतारते हैं और उसी हिसाब से उसका मेडिकली उपचार भी किया जाता है। तो यदि हीट स्ट्रोक की संभावना है तो तुरंत नजदीक के अस्पताल में पहुंचे, और लू लगने तक की बात है तो आप उसको घर पे आराम से ठीक कर सकते।
1: अब बात आती है बच्चों की और बुजुर्गों की,
0: जी
1: उनके लिए क्या कहेंगे?
0: देखिए अपने परिवार में एक वल्नरेबल ग्रुप कहलाता है, वल्नरेबल है मतलब हर एक किसी भी चीज के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं,
1: जी जी।
0: बच्चे, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और महिलाएं,
1: जी जी,
0: या अन्य कोई भाई बहन जो किसी बीमारी से ग्रसित हो। आपने पहले कोरोना जो आया था उसमें भी देखा होगा कि भाई किसी के ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट डिजीज है, कोई कैंसर है, इस टाइप के जो रोगी हैं ये हमारे वल्नरेबल ग्रुप कहलाता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो कामकाजी महिलाओं को भी बहुत अपने को उनको हिफाजत से रखना है। छोटे बच्चे धूप में बेमतलब बाहर नहीं निकलें, सवेरे अपना जो भी एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, योग है, खेलना कूदना सवेरे कीजिए। सूर्य भगवान के पास जाने में कतई संकोच नहीं है, सवेरे की जो किरणें हैं वो बहुत ही शरीर में विटामिन डी बनाने में अपने फायदेमंद होती है। धूप में ना निकलें और पानी और तरल पेय पदार्थों का भरपूर सेवन करें, और मैंने जो लक्षण बताए उनमें से कोई भी बात है तो तुरंत अपने परिवारजनों को सूचित करें ताकि वो चिकित्सीय सलाह ले सके।
1: अब डॉक्टर साहब एक बात ये आती है, इस बीच में

0: खाने पीने का क्या है
1: जी? देखो खाने पीने में आपको अपने शरीर का मुख्य जो अपना जो रूटीन का आपका कार्यक्रम है, आप एनर्जी रिच फ्रूट है, एनर्जी रिच फूड है
0: जी, जी।
1: ये अवश्य खाएं। बाजार के बने तले भुने ज्यादा जो ये पैकेज्ड फूड है इनसे बचे। मेन है अपने बॉडी को स्वस्थ रखना, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में आपके संतुलित भोजन आएगा, आप ये जो सवेरे भिगो के जो जितने भी अपने जो अपने अंकुरित भोजन है इनका सेवन करें, फल फ्रूट का सेवन करें, तो प्रतिदिन खाने के साथ साथ हेल्दी डाइट एंड हेल्दी एक्सरसाइजेज जो हैं, यानी थोड़ा बहुत व्यायाम और प्राणायाम जरूर से करें। थोड़ा बहुत आपका चलना फिरना है, वॉकिंग है, थोड़ी हल्की एक्सरसाइज प्रतिदिन करें, यह आपके जीवन को हमेशा उम्र बढ़ाती है और स्वस्थ रखती है। और जो ये ओबीज पर्सन कहलाते हैं यानी मोटापा, यदि आप ऐसे आप बहुत अधिक घी खा रहे हैं, बहुत अधिक इस टाइप के फैटी फूड्स खा रहे हैं और आपका जो जो आपका कार्य करने का तरीका सारे दिन बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, तो ये आपके मोटापा डेवलप करेगी। और मोटापा यदि डेवलप है तो ये आपके हीट स्ट्रोक है, लू लगने की संभावनाएं उतनी अधिक होंगी। तो यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको घूमना फिरना, सवेरे आपका पैदल चलना, हल्की एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, जितना आपका खाना पीना जरूरी।
0: अब आपने लू से बचने के लिए और इस मौसम में जैसे छाछ की बात की, पीने के लिए नींबू के पानी की बात की, सादा पानी की बात की, दही भी खा सकते हैं आप
1: जी।
0: और आपने एक बात की कि ये जो कैरी
1: का पानी
0: इसकी बात की,
1: लस्सी है।
0: अब बात ये आती है कि हमने बहुत सारी बात की लोगों से लू और जो ताप घात है इससे बचाव के लिए, लेकिन फिर भी हमारी इस बातचीत में ऐसी कोई बात रह गई हो जो आप तमाम श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं
1: जी? जी
0: तो आपका स्वागत है।
1: देखिए मेरा सभी भाई बहनों से ये कहना है कि आप किसी भी चीज से घबराए नहीं, ये मौसम परिवर्तन है, प्रतिवर्ष आएगा। मैं आपको कुछ अन्य बातें अवश्य बताना चाहूंगा। अपने आसपास का कोई भी खाली स्थान है तो उस पे आप पेड़ पौधे अवश्य लगाएं
0: जी।
1: अभी ये बारिश का मौसम आएगा ताकि छाया आपको मिलेगी। पशु पक्षियों के लिए आप जितना अपने खुद मानव जाति का ध्यान रखते हैं तो उनके पीने का पानी, उनके खाने का, यानी आपका पर्यावरण यदि सही रहेगा तो अगले वर्ष हम ये सोचेंगे कि अपने इतना गर्म वातावरण नहीं रहेगा। तो पेड़ पौधे लगाएं, अपने आसपास जानवरों का भी आप उतना ही ध्यान रखें, पक्षियों के लिए आप पानी पीने के वो परिंदे लगाएं, उनको दाना डालें। और एक भाई यदि एक पेड़ लगाता है प्रतिवर्ष तो अपने भारत में 140 करोड़ पेड़ पैदा होंगे, जिससे अगले साल अपना वातावरण अच्छा रहेगा, खूब बारिश आएगी, किसान भाई बहन भी खुश रहेंगे और ये जो हीट स्ट्रोक की समस्या पर्यावरण की वजह से ही काफी हल हो जाएगी।
0: देखिए श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने कितनी बढ़िया बात कही। अगर हम इन बातों पे विचार करेंगे, मनन करेंगे और कोशिश करेंगे करने की, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं कर सकते हैं। यही बात पेड़ पौधे लगाने की डॉक्टर साहब ने कही कि अगर परिवार में से एक भी पेड़ पौधा लगाता है, एक ही, और तो वो भी बहुत हो जाते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, किसी का बर्थडे है, किसी की जयंती है, किसी की पुण्यतिथि है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, इन पे भी अगर एक एक पेड़ लगाने की कोशिश करें
1: जी, बहुत अच्छा।
0: तो बहुत अच्छा पर्यावरण में अच्छा करने में साबित होंगे। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने लू एवं ताप घात से बचाव के बारे में बहुत ही अच्छी सारगर्भित जानकारी हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुँचाने का प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: कार्यक्रम स्वास्थ्य आपका के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे एक भेंट वार्ता, लू एवं तापाघात से बचाव विषय पर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा से बातचीत कर रहे थे श्री कमलेश मीना। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के चुरू केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं समूह स्वरों में देशगान।

अभी आप समूह स्वरों में देशगान सुन रहे थे। इसका प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 9:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम दिल से दिल तक।

अगर तेरी जलवार नुमाई न होती। साथियों, सुरीली सी पेशकश के बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके कमेंट्स के। जी साथियों, कार्यक्रम दिल से दिल तक जो है वो आपके फेसबुक कमेंट्स पर ही टोटली डिपेंडेंट प्रोग्राम है। जो आप कमेंट हमारे आकाशवाणी चूरू के फेसबुक पेज पर करते हैं, उन सेलेक्टिव कमेंट्स को हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमारे

दूसरे तमाम सुनने वाले श्रोता साथियों तक आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को पहुंचाते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम बता रहे हैं नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा जी और अलका मिड्डा जी की क्या भावनाएं हैं वो हमारे दूसरे साथियों तक। आप लिखते हैं, हर एक की सुनो, हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। कर्म के पास ना कागज होता है ना किताब होता है, फिर भी सारे जगत का हिसाब होता है। साथियों, इसी तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया हमारे फेसबुक पेज पर वो श्रोता साथी हैं, विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी आरव, चंद्रकला, गणेश काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही, प्रियांशी सोनी। आप लिखते हैं, भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से। आपका कमेंट जो है साथियों, वो आपने बहुत बड़े शब्दों में लिखा है, तो हमारा अनुरोध जो कि हर बार श्रोता साथियों से रहता है कि कमेंट में अगर आप कम शब्दों में अपनी बातों को कहेंगे तो दूसरे श्रोता साथियों के विचारों को भी इस प्रोग्राम में आसानी के साथ शामिल किया जा सकेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे। विष्णु टेलर जी लिखते हैं, घर केवल ईंट पत्थरों से बना एक मकान नहीं होता, बल्कि प्रेम, संस्कार, सम्मान और विश्वास से बना एक परिवार होता है। जिस घर में आपसी आदर, मधुर व्यवहार और समझदारी होती है, वह हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। घर में हमेशा विनम्रता और शालीनता से रहना चाहिए। अपनी बात कहने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि किसी का दिल न दुखे। बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे शब्द सामने वाले को खुशी देंगे या तकलीफ। मीठे शब्द रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, जबकि कठोर शब्द वर्षों पुराने संबंधों में भी दूरी ला सकते हैं। बड़ों का सम्मान, जी हाँ साथियों, बड़ों का सम्मान करना हमारे संस्कारों की पहचान है। जब बड़े कोई बात समझाएं तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए। उनके बातों में जीवन का अनुभव छिपा होता है। उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए और न ही उनकी बातों को कभी भी बीच में काटना चाहिए। सम्मान केवल प्रणाम करने मात्र से नहीं, बल्कि उनके प्रति अपने व्यवहार, सेवा और विनम्रता से भी दिखता है। घर के कामों में हाथ बंटाना, परिवार के सदस्यों की मदद करना और सबके सुख दुख में साथ खड़ा रहना भी एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है। अपने माता पिता, दादा दादी और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उनके त्याग और मेहनत से ही हमारा जो जीवन है वो बेहतर बनता है। साथियों, अब मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी के विचार। आप लिखते हैं कि समय घड़ी काल प्रकृति के अनुसार चलते हैं, सबका सम्मान करते हैं। यदि हम भी प्रकृति के अनुसार चलेंगे, उसके हिसाब से अपना खान पान रखेंगे तो हमेशा निरोगी रहेंगे।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
4: अंतराल के बाद दिल से दिल तक कार्यक्रम में सभी सुरीले साथियों का फिर से स्वागत। साथियों, इसमें हम अगला कमेंट जो शामिल कर रहे हैं वो है सही रामनगर पीते सर चूरू से। लिखने वाले, हमें भेजने वाले साथी हैं हरि सिंह नायक, चिक्की रवि, विवान, लक्षिता नायक। आपने किस्मत के बारे में बताया कि किस्मत किस तरह के खेल दिखाती है। किसी के हिस्से में राजयोग आता है तो कोई उम्र भर सिर्फ अपनी छत के लिए भी तरसता है। मेहनत सब करते हैं मगर किस्मत हर किसी को एक जैसा

का फल कभी नहीं देती। समय और भाग्य दोनों बेहद अद्भुत चीज है। कब किसे राजा से रंक और रंक से राजा बना दे। इसी तरीके से विजय सुरलकर रतन माला जी लिखते हैं मोताला महाराष्ट्र से। आप लिखते हैं सच्चा प्यार क्या होता है। सच्चा प्यार विश्वास की मजबूत नींव पर टिका होता है। जी हाँ साथियों, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ आपने लिखी है कि सच्चा प्यार जो है वो विश्वास की मजबूत नींव पर टिका होता है। इसमें स्वार्थ नहीं बल्कि एक दूसरे की खुशी की भावना होती है। सच्चा प्यार हर परिस्थिति में साथ निभाना सिखाता है। इसमें सम्मान, समझदारी और अपनापन होता है। सच्चा प्यार किसी की कमियों को स्वीकार करना भी जानता है। ये केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से भी प्रकट होता है। इसी तरह से अगला कमेंट जो हमें प्राप्त हुआ है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी का। आप लिखते हैं कि विचारों में चाहे कितना विरोधाभास हो, आस्था में चाहे कितनी विभिन्नताएं हो, लेकिन हमें अपनी बात इस ढंग से कहनी चाहिए कि बात के महत्व का पता चल सके। किसी भी विषय पर सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। जी हाँ साथियों, आज के सोशल मीडिया के दौर में सतीश जी ने ये बात तो बहुत ही खूबसूरत लिखी है कि किसी भी विषय पर सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले अच्छे तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए। आपके द्वारा कही बात सामने वाले व्यक्ति के विचार हमेशा के लिए हो सकता है बदल दे। अगले साथी जो फेसबुक पेज के जरिए हमसे जुड़े हैं वो हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा जी और करुणा वर्मा जी। आपने संक्षेप में अपनी बात को बहुत ही सुंदर तरीके से कहा है। आप लिखते हैं कि जिनके स्वभाव में प्रेम बसा हो उनके दरवाजे पर खुशियाँ खुद ब खुद चलकर आती हैं।

साथियों, विनोद कुमार जी हमें लिखते हैं कोकामेडी हनुमानगढ़ राजस्थान से। आप लिखते हैं कि आकाशवाणी चुरू के सभी श्रोताओं को नमस्कार। हमारी मरुधरा हमेशा से महापुरुषों और संतों की भूमि रही है। महापुरुषों के बताए ईमानदारी और लोक कल्याण के रास्ते पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है। रेडियो के माध्यम से उनके विचारों को घर घर पहुंचाने का आपका ये प्रयास सचमुच सराहनीय है। विनोद जी, आपको रेडियो के प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी लिखते हैं कि जो झुक सकता है वही झुकाना भी जानता है। हर रिश्ते को निभाने के लिए समझदारी और प्यार की जरूरत होती है, न कि किसी भी तरीके के अहंकार की। गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से जो साथी हमसे जुड़े हैं फेसबुक पेज के जरिए, विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा और हनुमान जी सारण, आप लिखते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो बोया जाएगा वही एक दिन लौट कर आएगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, समय सबका साथ निभाता हुआ चलता है। ये अगला जो कमेंट हमें प्राप्त हुआ है, लिखने वाले हमारे साथी हैं रघुनाथपुरा, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी और इनके लगता है पूरे गोस्वामी परिवार के ये विचार हम तक पहुंचे हैं। आप लिखते हैं कि रिश्तों की सच्चाई, यानी मुसीबत में जो साथ न दे वो रिश्ता नहीं, मुसीबत में जो साथ न दे वो रिश्ता नहीं, मजबूरी का नाम है। तूफान में छाता वही खोलता है जो अपना है, यानी मुसीबत के समय जो हमारे काम आए वास्तव में वही हमारा अपना है। मंजिल का रास्ता कोई बिना मांगे सलाह नहीं देता और कोई बिना मतलब साथ नहीं देता। इस दुनिया में फ्री सिर्फ ऑक्सीजन है, बाकी सबका हिसाब है। तू अच्छा बन पर इतना अच्छा मत बन कि लोग तुझे बेवकूफ समझ लें। अंत में बस इतना ही, कड़वी दवा ही शरीर ठीक करती है और कड़वी सच्चाई ही जिंदगी।

सादुल शहर से रामकुमार रेवाड़ी जी लिखते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों के साथ जोड़िए। घर परिवार में अच्छे संस्कार ही बच्चों की मजबूत नींव होते हैं। घर परिवार में अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चे विद्यालय में भी अच्छे से व्यवहार के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे और अच्छे संस्कार और शिक्षा देश की युवाओं के लिए देश की बहुत बड़ी मजबूत नींव रखने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। इन्होंने अच्छे संस्कारों पर

संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हमारे फेसबुक पेज पर लिख रहे हैं एडवोकेट वारिस अली खान जी। आप लिखते हैं कि आवाज़ की दुनिया के प्यारे से दोस्तों को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। अगर आप प्रसन्न हैं तो उत्तम हैं, अगर आप दूसरों से प्रसन्न हैं तो सर्वोत्तम है। हमारे इन साथी ने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर सार्थक, अलौकिक चंचोलिया, आप सब लिखते हैं ग्राम पंजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। आप लिखते हैं कि वक्त की कद्र सदैव हर किसी को करनी चाहिए। जी हाँ साथियों, फेसबुक पेज जो आकाशवाणी चूरू का है उस पर आपके जो कमेंट आते हैं उन्हें हम इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे अन्य साथियों तक पहुंचाते हैं, तो आप इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहिए।

0: हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजने वाले हैं और विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे। विविध भारती के कार्यक्रमों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ, मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुके।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
3: जाओ जाओ जाओ किसी वैद को बुलाओ।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त यूनुस खान।

0: अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा, बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खामखा

0: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
1: सही है,
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
1: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है, ठीक है। दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट

सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए, उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं

तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके, तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह, जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है, वो जगह उनकी चौड़ाई

नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स या फिर कड़क बूंदी के लड्डू, वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर जो अपनी पारंपरिक चीजें हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है

0: चीजों का महत्व समझाना वो पेरेंट्स का काम है
1: जी,
0: ठीक है। इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे।

दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे, और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी

उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गॉज होता है, गॉज पीस, कॉटन की तरह जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गॉज पीस बोला जाता है वो।

0: ये हम सभी के मामले में करें,
1: हाँ हाँ,
0: चाहे बच्चे हो,
1: बच्चे
0: चाहे
1: हो, बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटालिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
0: टेढ़े
1: मेढ़े घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले, तब तक हम लोग चेंज नहीं करते। बट ऐसा नहीं होता है, माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी रिजल्ट्स में कि वो फेड हो जाए या

0: खाना है वैसे खाओ, फिर
1: अरे
0: दोनों
1: बाप रे,
0: हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा।
1: हाँ।
0: लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके
0: सो

0: नहीं होता है
1: यस
0: बाहर, इजीली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खा

0: दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की, कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए। तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है। नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर

0: होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं तब होना चालू होता है,
1: जिसकी हमने चर्चा की।
0: एग्जैक्ट,
1: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
0: हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं। अभी वो नस सड़ गई है।
1: हाँ।
0: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको

0: थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे डेढ़ गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है,
1: बिल्कुल,
0: तब जाके वो खड़ी रह

बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़

0: चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है, तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोसफियर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं,
1: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
0: एग्जैक्टली, नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही

0: वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो वो सिक्रेशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता। इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं, इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
1: बिल्कुल, और सुबह उठते ही ब्रश करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन

कड़क चीजों को मजे से, अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही। आज के बच्चों में तो वो, उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों

0: हड्डी जो होता है जबड़े का उतना स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं पा रहा
1: जैसे पहले के बुजुर्गों का है।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है। मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहाँ क्या करते हैं हम लोग, मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है। जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है।

0: पड़ेगा।
1: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
0: उनके मुताबिक बन रहा है।
1: हाँ, उनके मुताबिक बन रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए। हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, सब मुझे लग रहा है। इसका एक

सुना। सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या

0: ये बहुत नुकसानदेह है।
1: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
1: श्योरली। तो अभी किशोर दा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि दांतों में दर्द होता है तो नैनो से तो सावन बरसना ही है।

0: आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है, किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है। तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब

0: की वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है। इसके लिए रूट कैनाल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
1: जी
0: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो

0: के चक्कर में जब लोग भागते हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा।
1: बिल्कुल
0: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा।

0: इंटरनल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
1: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
0: Exactly.
1: तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है।
0: Exactly. मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ,
1: हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ,
0: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम

ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए

जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। और आखिरी ट्रीटमेंट होता है

0: सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है?
1: बिल्कुल
0: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा
1: इसके
0: पा
1: बिना
0: रहा
1: भी चल सकता है,
0: इसके बिना भी मेरा चल रहा है क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी 1.5 गुना जड़ें अंदर होती है,

0: फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर में, 1-1.5-2 महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था 1.5-2 महीने तक। वहां पे न्यूट्रिशन की सिर्फ जरूरत थी वो घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशन पहुंचाए जाते हैं। वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में।
1: अच्छा,
0: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया तो हड्डी गलना चालू हो जाता है। वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रिस्टोर इट्स फंक्शन।
1: ओके,
0: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
1: तो वो
0: बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल

0: के आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
1: इसलिए डॉक्टर के पास जितनी जल्दी हो सके डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
0: सही बात है, और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है। डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना, तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है एक मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा। और अगर दिख रहा है, नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज, तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
1: ठीक बात है,
0: इतनी सी बात होती है। पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है। और जब तक प्यास लगती नहीं है, हम लोग कुएं के पास जाते नहीं।
1: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
0: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ। मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
1: जी,
0: बट हाँ, कभी कभार छोटे मोटे

0: इंसान बहुत सफर करता है, ये दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ न कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है, परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है,

0: गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है, बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहाँ पे खाना फंस रहा है वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
1: फ्लॉस के लिए वो
0: धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है, अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको, उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं, एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस Yes, it is the solution. अभी तो braces में बहुत सारे advancements आए हुए हैं, aligners करके चीज आई हुई है जो पूरे transparent braces होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है।
1: Okay.
0: जिसको aligners बोला जाता है। तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली companies बहुत है लेकिन अच्छा product बनाने वाली companies बहुत कम है। और product जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट

0: और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो, स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अंटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहाँ पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है। उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पे और वो हड्डी गल रही है।
1: ओके,
0: तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है, पुराने जमाने से

0: तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे
1: पायरिया
0: में।
1: का?
0: पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की,
1: अच्छा वो दांतों की बीमारी नहीं
0: दांतों
1: है?
0: की बीमारी नहीं है। ये पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है, तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए। अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे 1.5 गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है। वो हड्डी जब गलेगी तब उसका सपोर्ट जाएगा, तब दांत हिलेगा। तो हड्डी एग्जैक्टली वो एक दिन में होता नहीं है। पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं, उसके भी 4 स्टेजेस है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 बोलते हैं हम लोग, उसमें टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है? तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है। उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं। स्पेशली जहाँ पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मली लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत

बड़ा टर्म है उसको दो टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस। दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहाँ से जा रहे हैं? दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी जरूरी होती है।

0: उसके लिए कोई ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं। वो आगे चल के मुंह से बदबू आना,
1: ये थोड़ा विजिबल साइन है,
0: ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है।
1: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है,
0: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो, अगर आप उस बारे में अवेयर हो।
1: हाँ, लोग आपसे दूर जाने लगते हैं।
0: हाँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना हो।
1: जी
0: ठीक है। फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से।
1: हाँ जी,
0: ब्रश करते वक्त खून आ गया। फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना, ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, तो ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के 4 दांत गिर गए। बोले शुक्रवार को गिरे हैं, मुझे कल फोन आया तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
1: कितना नॉर्मल है ना,
0: कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है
1: बिल्कुल,
0: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे, ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
1: यस,
0: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो तो करोड़ों में जाती है, कई 100 करोड़ों में जाती है।
1: यस,
0: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं। फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
1: वो सारी
0: चीजें,
1: तंबाकू,
0: स्मोकिंग, और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने दांतों की, ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुड्ढों की तरह।
1: अरे अरे,
0: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ। और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है।
1: बिल्कुल,
0: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो।
1: बिल्कुल,
0: ये सजेशन मैं यहाँ दूंगा।
1: इसी हाँ। बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
0: सही है, तो हम यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे दांत बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज़।

0: इसकी अब हम बात करना चाहते हैं, जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
1: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमिडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रिस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शंस क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है।

0: नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा,
1: yes.
0: वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर, क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिव अप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी

भी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहाँ पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है, एक स्क्रू जैसी चीज होती है। एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल

0: 2 दिन में 3 दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
1: बहुत जल्दी होने लगा ये,
0: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें है भी, इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है
1: बाकायदा,
0: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है

0: जाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूँ लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
1: स्माइल प्लीज। स्माइल प्लीज क्यों? क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, खुल के स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच सर।
2: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश कुगे से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के प्रोग्राम FM 107 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में अब आप जानेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

अब से कुछ ही पलों बाद दिन में 11:05 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग लेकर आएंगे दिन में 12:00। 12:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम माटी के स्वर। आज की कलाकार होंगी अफरोज बानो। आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे दिन में 1:00। 1:05 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज का प्रसारण किया जाएगा दिन में 2:00 और दोपहर समाचार होंगे 2:15 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5:00 कार्यक्रम युववाणी के साथ। शाम 6:00 हिंदी में, 6:05 पर अंग्रेजी में और 6:20 पर संस्कृत में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। प्रादेशिक समाचारों में शाम 6:30 पर हिंदी में और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी जयपुर से। आकाशवाणी जयपुर से ही जिले की चिट्ठी होगी शाम 6:40 पर। शाम 7:00 किसान भाइयों के लिए होगा कार्यक्रम किसान वाणी और 7:30 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत।

आकाशवाणी के 90 साल एक गौरवशाली यात्रा इस श्रृंखला में आज रात्रि 8 बजे आपको सुनवाएंगे कविता पाठ कवि श्री सुरेंद्र डी सोनी का। फिल्म संगीत का प्रोग्राम गुलदस्ता होगा रात्रि 8:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का अंक रिले किया जाएगा रात्रि 8:45 पर और रात 9 बजे न्यूज एट 9। 9:15 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम मन भावन आपनों राजस्थान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर से रिले किया जाएगा रात्रि 10 बजे। सभा के अंत में रात 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

प्रोग्राम का पहला गीत अभी आपने सुना वजीर फिल्म से। आवाजें थी अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की, और इस गीत को संगीतबद्ध किया रोचक कोहली ने। गीत लिखा था दीपक रमोला और गुरप्रीत सैनी ने। श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से चित्रपट संगीत FM 100.7 MHz पर।

के रेडियो सेट पर आ रहा है अलका याग्निक की आवाज में नाजायज फिल्म का गीत। गीतकार हैं राहत इंदौरी और संगीतकार हैं अन्नू मल्लिक।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

श्रोताओं, ये आवाज है अलका याग्निक की और साथ देंगे अमित कुमार। नरसिम्हा फिल्म के इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ओम जय जगदीश। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और सोनू निगम की युगल आवाजों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया अन्नू मल्लिक ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से चित्रपट संगीत।

जब तक है जान, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की युगल आवाजों में। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार ए.आर. रहमान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से चित्रपट संगीत।

जाने मन इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से चित्रपट संगीत FM 100.7 MHz पर।

का गीत और अगला गीत नीति मोहन की आवाज में। फिल्म का नाम है किक। इस गीत को लिखा है मयूर पुरी ने और संगीतकार है हिमेश रेशमिया।

प्रोग्राम का अंतिम गीत आप सुन रहे हैं फिल्म जंजीर से। आवाजें हैं वाजिब फारूकी और पलक मुच्छल की। गीत लिखा है मनोज यादव ने और संगीतबद्ध किया है चिरंतन भट्ट ने।

चित्रपट संगीत के अंत में आप सुन रहे थे जंजीर फिल्म का गीत वाजिद फारूकी और पलक मुच्छल की आवाजों में। गीत लिखा था मनोज यादव ने और संगीत था चिरंतन भट्ट का। चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। FM 107.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नैना जैन, दीपक, मयंक मूड़त और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, एक सप्ताह में

0: भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठाकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
1: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम

0: विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
1: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुडी और प्रमोद कुमार डुडी।
1: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
0: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
0: शीत मरुस्थल, ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
1: जी विमलेश जी, दरअसल होता ये है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन तथ्य कुछ और है
0: जी।
1: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी

0: ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
1: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
0: जी,
1: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
0: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें, पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल

0: प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
1: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
0: जी,
1: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें।

0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है
1: जी।
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि
0: जी।
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी

0: कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
1: जी,
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल

0: हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
1: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
2: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, "Without Pasteur, I would be nothing."
1: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस अकेडमी के प्रेसिडेंट

मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान

0: पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
1: रिमेंबर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
2: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
0: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
2: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
0: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
3: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है,

0: चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
1: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
0: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक

0: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए। लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
1: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
2: चलो, लोहा गर्म हो रहा है। ये लीजिए, लाल हो गया।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।

0: पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
0: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
0: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
2: लुई पाश्चर,
3: सर,
2: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
3: कहिए सर।
2: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
3: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
2: ठीक है।
0: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूर

0: और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने

0: पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा। हाँ, इंजेक्शन लगा दूँ?

0: बच जाएंगी। और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
2: सर सर ये टेलीग्राम।
0: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
2: क्या हुआ सर?
0: देखो टीके वाली सभी भेड़े बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
2: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
0: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़े मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
2: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।

0: पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
1: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
2: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
1: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
2: आप
1: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
2: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
1: मेरा अच्छा, बेटा।
2: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
3: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे, उन्होंने रेबीज से

0: कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई

0: 1930 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।

0: ज्यादा नहीं नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एक निष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में दफना दिया गया।

0: most affectionate and sensitive individual. He was a humanist, always working towards the improvement of the human condition.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के चुरू केंद्र से किया गया।

FM 110.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

0: ताइस को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में।

0: 27 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के प्रोग्राम में आपने सुना अफरोज बानो को। कार्यक्रम माटी के स्वर अब यहीं संपन्न होता है। FM 110.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा है कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता

0: वी मोहना ने आज शपथ ली। कॉलेजियम की 22 और 27 मई को हुई बैठकों में इन पांचों के नामों की सिफारिश की गई थी, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्ति को मंजूरी दी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन पांचों न्यायाधीशों को नियुक्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। सीबीएसई की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। सीबीएसई ने बताया कि ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के पास आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना राजस्थान में भागीदारी बढ़ रही है। प्रदूषण रहित सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और बिजली बिल पर खर्च से मुक्ति के लिए विद्युत उपभोक्ता लगातार इस योजना से जुड़ रहे हैं। योजना के तहत मई महीने में प्रदेश में रिकॉर्ड 26,632 रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो फरवरी 2024 से योजना के शुरू होने के बाद अब तक का सर्वाधिक रूप टॉप सोलर इंस्टॉलेशन है। राजस्थान डिस्कॉम के सहयोग से चल रही योजना में बीते महीने सबसे अधिक 9,316 सोलर प्लांट जोधपुर डिस्कॉम में लगाए गए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में प्रदेश में 830 मेगावाट क्षमता के लगभग 2,17,000 से अधिक रूफटॉप सोलर लगाए जा चुके हैं और लगभग 1,460 करोड़ रुपए की सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के कार्यकाल में पिछले 12 सालों के दौरान उल्लेखनीय बदलाव आया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के साथ काम कर रही मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार के सतत प्रयासों से महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक लगभग 17 लाख करोड़ रुपए के ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जोड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले 3-4 दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां अभी कुछ दिन और बनी रहेंगी। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव 5 जून तक बना रहेगा। विभाग ने आज 19 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच बारिश और आंधी के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कई शहरों में पारा सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में कोटा, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर, पाली, टोंक, अलवर, सवाई माधोपुर और जयपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 110.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दिन का 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत।

सगे, हम सभी को पता है कि हर मौसम के अकॉर्डिंग हमारा खान पान, हमारा रहन सहन बदल जाता है। और जब बात आती है गर्मियों की, तो उसमें हमें खास जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी बीमारियां हमें परेशान करती हैं, जिनका अगर हम थोड़ी सी लापरवाही बरतें तो वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकती हैं। उसमें अगर हम बात करें सबसे पहले डिहाइड्रेशन की, तो गर्मियों के मौसम में डिहाइड्रेशन की समस्या हम आमतौर पर देखते हैं कि जहाँ हम थोड़ा सा पानी कम पी लेते हैं या अपने खान पान का उचित ध्यान नहीं रखते, तो ये प्रॉब्लम जो है हमें सामान्य देखने को मिल ही जाती है। तो गर्मियों के मौसम में डिहाइड्रेशन और लू लगने की समस्या आम है। इस मौसम में हमें खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और गर्मियों में हमें खासकर ऐसे फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए जो कि हमें हाइड्रेट रखते हों, यानी कि जिनमें पानी की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती हो। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में, क्योंकि हमें पता है कि गर्मियों के मौसम में वैसे भी हमें जो है खाने का मन बहुत कम करता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसा लिक्विड लेते रहें जिससे कि हमारे शरीर में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी ना हो। लेकिन उसी में अगर हम ऐसा थोड़ा सा ध्यान कर लें कि कुछ ऐसे ही फल और फ्रूट हम ऐसे खाएं, फल फ्रूट और सब्जियां हम ऐसी खाएं जिनसे कि हमारा शरीर, हमारा पेट जो है वो भी भरा रहे और हमारे शरीर को पोषक तत्वों की कमी भी ना हो। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन गर्मियों के मौसम में आप कौन से ऐसे फल और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं जो कि पानी से भरपूर होते हैं और आपके लिए अच्छे होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि गर्मियों के जब मौसम आता है तो उसमें हमारे शरीर से पसीने के रूप में जो है तरल पदार्थ निकलता रहता है, हमें एनर्जी जो है वो थोड़ी लो फील होने लगती है, साथ ही साथ ऊर्जा जो है कम हो जाती है, यानी कि हमारी एक्टिवनेस कम हो जाती है। और जब तक वास्तव में हमें प्यास लगती है, जब हमें प्यास का एहसास होता है, तब तक हमारी बॉडी पहले से हल्की डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। तो ऐसे में पानी पीना तो सबसे सामान्य उपाय है, लेकिन इसके अलावा भी जो है हमारा खान पान पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो वो भी हमें जो है डिहाइड्रेशन की समस्या से बचा सकता है। उसमें सबसे पहले हम बात करें नारियल पानी की, तो नारियल पानी एक ऐसा हमारे पास उपाय है जिससे अगर हम दिन में 2-3 बार अगर हम नारियल पानी पीते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। साथ ही बात करें हम तरबूज की, तो तरबूज जो है अपने नाम के अनुरूप ही जो है लगभग 92% जो है पानी से बना होता है, और यही कारण है कि ये शरीर को हाइड्रेट रखने वाले सबसे कारगर खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है। इसमें लाइकोपीन भी होता है जो कि हमारे हृदय से स्वास्थ्य से जुड़ा एक एंटीऑक्सीडेंट है, और ये विटामिन ए और सी से भरपूर है। तरबूज में पोटेशियम की उच्च मात्रा होती है जो कि शरीर में जो तरल संतुलन होता है उसको बनाए रखती है और डिहाइड्रेशन की समस्या से हमें बहुत ज़्यादा निजात मिलाती है। जबकि इसमें हम बात करें कि प्राकृतिक शर्करा की और एमिनो एसिड ऊर्जा की, तो ये जो है अगर हम व्यायाम करने के बाद जो हमारी मांसपेशियों की रिकवरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा हमारी सहायता करती है। इसलिए तरबूज जो है हमें इन गर्मियों में खाना चाहिए। साथ ही बात करें हम खरबूजे की, तो खरबूजा जो होता है वो हाइड्रेटिंग होता है और विटामिन ए और सी से भरपूर होता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता और आंखों के स्वास्थ्य दोनों के लिए सहायक होता है। इसमें पानी और इलेक्ट्रोलाइट की उच्च मात्रा होने के कारण ये पसीने के आने के बाद शरीर को फिर से हाइड्रेट करने में विशेष रूप से उपयोगी होता है। गर्मी की दोपहर में जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो ये खरबूजा सिर्फ स्वाद की ताजगी देने वाला नहीं होता, बल्कि खरबूजा इतना नरम भी होता है कि हम जब मुंह में लेते हैं तो वो अपने आप से हमारे मुंह में खुल जाता है, जो कि हमारे छोटे से छोटे बच्चों से लेके जो जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी खाने में जो है आसानी रहता है। और इसमें फाइबर की उच्च मात्रा होती है जो कि हमारे पाचन को भी बेहतर बनाए रखती है, और इसमें पर्याप्त पानी जो नहीं पी पाते हैं, जैसे कि हमारे बुजुर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी पाते क्योंकि उन्हें बार बार जो है पेशाब आने की समस्या रहती है, साथ ही हमारे छोटे बच्चे हैं वो

जो है बार बार पानी नहीं पीते हैं, तो ऐसे अगर हम उनको खाद्य पदार्थ देते हैं तो उनसे जो है उनके शरीर में पानी की मात्रा की कमी नहीं होती है। साथ ही हम बात करें अनानास की, तो अनानास भी गर्मियों के उन फलों में से एक है जो कि शरीर को भरपूर मात्रा में पानी प्रदान करता है। इसमें लगभग 85% पानी होता है और ये एक ब्रोमेलिन नामक एंजाइम से भरपूर होता है जो कि पाचन में हमारी सहायता करता है और अगर हमारे शरीर में कहीं भी सूजन है तो उसको बहुत हद तक ही कम कर देता है। ब्रोमेलिन की मात्रा जो है गर्मियों में विशेष रूप से उपयोगी होती है जब हम बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं या तैलीय खाना जब हम खा लेते हैं और फिर हमारी पाचन क्रिया जो है वो धीमी हो जाती है। ऐसे में अनानास जो होता है उसमें जो मौजूद ब्रोमेलिन होता है वो हमारी पाचन क्रिया को पोषक तत्वों के अवशोषक में सहायक होता है, जिससे कि शरीर में तरल पदार्थों का बेहतर उपयोग होता है और आंतों में पानी का प्रवाह होने से सूजन कम होने लगती है। तो इसलिए ऐसे ये कुछ खाद्य पदार्थ हैं, अगर आप इनका सेवन अगर आप गर्मियों में करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखते हैं।

थे गर्मियों में किन फलों का सेवन जो है हमें करना चाहिए, उसमें बात करते हैं हम सेब की। तो सेब का 86% हिस्सा जो है वो पानी से बना होता है, और हर दिन एक सेब खाने से शरीर की बीमारियों से हमारा शरीर जो है बचा रहता है। सेब में सभी जरूरी न्यूट्रिशन होते हैं और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, दिल को स्वस्थ रखता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है। इसमें कई सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी दांत हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और स्किन को हेल्दी रखते हैं। बात करें हम स्ट्रॉबेरी की, तो स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी, मैंगनीज, फोलेट, पोटेशियम, विटामिन बी और जरूरी फ्लेनोवाइड होते हैं। ये 91% पानी से बना होता है। कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों में ये काफ़ी फायदेमंद रहता है। इसमें खूब सारा फाइबर होता है जो कि हमारी पाचन से जुड़ी सारी दिक्कतें दूर करता है। ये हम ध्यान रखें कि जिन फलों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है वो हमारे पाचन को बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर बनाती है। बात करें हम पपीते की, तो पपीते में विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसमें 88% तक पानी होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में फल सबसे ज़्यादा असरदार है क्योंकि इसमें कई तरह के विटामिन से भरा पपीता जो होता है वो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। लेकिन हर चीज़ जो है हमें लिमिट में खानी चाहिए और उसका बहुत कहें कि अधिक मात्रा में सेवन जो है हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं या आपको लगता है कि आपके लिए क्या बेहतर चुनाव हो सकता है, तो उसके लिए आपको डॉक्टरी परामर्श लेना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। बात करें फिर से हम पपीते की, तो ये हमारे वजन को घटाने में भी हमारी सहायता करता है और अपनी डाइट में जो है हमें पपीते को शामिल करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं हमारे फलों के राजा आम की, जिसका नाम आते ही हमारे मन मुंह पर जो है और कहीं मुंह में जो है लार आ जाती है और एकदम रस्सा खुल जाता है, क्योंकि आम में जो है 83% तक पानी होता है। और गर्मियों में आम खाना लगभग हम सभी को पसंद होता है, चाहे फिर वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो, घर का हर सदस्य जो होता है आम का दीवाना होता है। साबुत आम खाने के अलावा हम इसे डेजर्ट में मिलाकर खा सकते हैं, इसको मैंगो शेक बनाकर पी सकते हैं। और आम जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा ये डाइजेशन में भी सुधार करता है और कोलेस्ट्रॉल कम करता है, और सबसे बड़ी बात ये हमारे आंखों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप भी जो है इन गर्मियों में इन फलों का सेवन करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। लेकिन ध्यान ये रखें कि आप फलों का जूस जो है, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जल्दी से हम जूस निकाल लें और उसे पी लें, और हमें फल को खाना जो है थोड़ा सा आलस उसमें आता है। तो ध्यान रखें कि फलों का जूस से बेहतर है कि आप उन फलों को खाएं, क्योंकि फलों में बेहतर उचित मात्रा में जो है फाइबर होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन को अच्छा बनाए रखते हैं। कुछ फलों का कह सकते हैं हम कि जूस बेहतर होता है, लेकिन हर फल का हम जूस निकाल कर ना पिए, उन्हें आप साबुत जो है चबा कर खाएं जो कि आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखें।

और अब हम बात करते हैं हमारे वज़न को लेकर। हमारे वज़न को लेकर हमेशा हमें चिंता रहती है कि कहीं बहुत ज़्यादा जो है बढ़ ना जाए। और जब हम देखते भी हैं कि आजकल जो है हमारा खान पान ही ऐसा हो गया है कि हमारा वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है, चाहे हम बच्चों की बात करें हमारे खुद की बात करें। लेकिन जब हम देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी खान पान हमारा सही ना हो तो हमारा वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम बिना भूखे रहें और फिर अपने वेट को हम कम करें, तो उसके अंदर सबसे पहली बात आती है सलाद की। जी हाँ, बहुत बार हम देखते हैं कि वेट लॉस जर्नी को आसान बनाने के लिए हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो उपाय अपनाते हैं वो ऐसा करते हैं कि अपनी डाइट पर कंट्रोल करते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि डाइट कंट्रोल करने के लिए लोग भूखा रहते हैं। और हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो वजन कम करने के लिए भूखा रहना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि सही पोषण पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। और सही पोषण की

बात आती है उसमें सलाद का नाम सबसे पहले आता है। सलाद जिसमें ना तो कैलोरी जो होती है वो नए के बराबर होती है और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि हमारे बॉडी में फैट को बढ़ने नहीं देते और बॉडी को भरपूर मात्रा में पोषण भी देते हैं। माने तो हम पेट को अगर हम लंबे समय तक भरा रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा वजन

उसे पूरा करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि किस किस तरह के सलाद खाकर हम जो है अपने वेट को आसानी से कम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करें खीरा टमाटर और गाजर के सलाद की। तो खीरा टमाटर और गाजर गाजर का सलाद जो है वो मुख्य रूप से लंबे समय तक हमारे पेट को भरे रखता है और भूख को कंट्रोल करता है। लो कैलोरी इस सलाद में भरपूर होती है और साथ ही साथ फाइबर जो होता है वो भरपूर मात्रा में होता है। पानी से भरपूर ये सब्जियां जो होती है वो बॉडी को हाइड्रेट रखती हैं और हमारे पाचन को दुरुस्त करती हैं। इसे बनाने के लिए हम खीरा टमाटर और गाजर को काटकर उसमें नींबू का रस और काला नमक मिलाकर रोज जो है लंच या डिनर से हमें 15-20 मिनट खा लें तो हमारा पेट जो है हमें भरा हुआ फील होता है। तो आप जो है खाना फिर हमारा अपने आप ही जब पेट भर जाता है तो खाना खाने का मन हमारा कम ही करता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्प्राउट सलाद का सेवन कैसे हम कर सकते हैं, कैसे उससे हम अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो स्प्राउट सलाद प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है और ये लंबे समय तक हमारे पेट को भरे रखता है। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उसको ये बहुत तेज करता है और इसे बनाने के लिए हम अंकुरित मूंग या जो चने होते हैं उनमें प्याज, टमाटर, नींबू और हरा धनिया जो होता है उसे काटकर मिला लें और इसे हम नाश्ते में या शाम के स्नैक के रूप में हम ले सकते हैं। कहें तो हम ये जंक फूड का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। जिनको बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की आदत होती है या हमारे बच्चे जो होते हैं उनको अगर हम ये हेल्दी स्नैक जो खिलाते हैं, हेल्दी ये सलाद जो हम उनको खिलाते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव हम देख सकते हैं। अनाज को अंकुरित करने से उसमें जो मौजूद प्रोटीन होता है उसकी गुणवत्ता जो होती है वो 10 से 15% तक बढ़ जाती है और हाई प्रोटीन का सेवन ग्रेलिन यानी हमारी भूख को कम बढ़ाने वाला जो हार्मोन का स्तर होता है उसको कम कर देता है और साथ ही साथ पेप्टाइड यानी जिसे YY के नाम से जाना जाता है कि को तृप्ति जो हमारी तृप्ति होती है उसको महसूस कराने वाला जो हार्मोन होता है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा पेट जो है वो लंबे समय तक हमें भरा हुआ फील होता है और हम ओवर डाइटिंग से बच सकते हैं। साथ ही हम बात करें कि ग्रीन पावर सलाद की, तो ये सलाद खास तौर पर बेली फैट कम करने में मदद करता है। इसमें पालक, खीरा, शिमला मिर्च, उबला हुआ चना और टोफू को शामिल किया जाता है। इसमें मौजूद आयरन और फाइबर जो होता है वो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। इसे हम डिनर में कहें कि रोटी या चावल की जगह हम ले सकते हैं इसको। इसमें अगर आप एक बड़ा बाउल भरकर ये सलाद खा सकते हैं तो इसमें पूरी तरह आपका पेट जो है भर जाता है लेकिन आपको कैलोरी ना के बराबर मिलती है। और इसमें हम कह सकते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि बिना भूखे रहे लंबे समय तक जो है अपने वजन को कंट्रोल करें तो उनके लिए ये बेस्ट सलाद मानी जाती है। चुकंदर और सेब की सलाद की अगर हम बात करें तो ये सलाद मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और शरीर को डिटॉक्स करने में हमारी मदद करता है। चुकंदर और सेब में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। इसमें सीड्स मिलाकर हम इनके पोषण को बढ़ा सकते हैं। इसे सुबह खाली पेट या वर्कआउट करने से पहले लेना फायदेमंद माना जाता है, जो कि ये हमारे शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं और ये नसों को फैलाते हैं जिससे कि मांसपेशियां और ऑक्सीजन बेहतर रूप से हमारे शरीर में पहुंच पाती है। तो ये भी माना जाता है कि चुकंदर खाने से हमारा स्टेमिना बढ़ता है जिससे कि आप जिम में अधिक कैलोरी जो है बर्न कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमने आपको सलाद के प्रकार बताए हैं कि इन इन सलादों को सेवन करके आप किस तरह से अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बात यही है कि वजन घटाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप भूखे रहें, बल्कि उसका अच्छा उपाय है कि आप अच्छा खान पान करके अच्छा पोषक तत्वों को अपने शरीर में सेवन करके जो है आप अपने वजन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्दी सलाद को अपनी डाइट में आप शामिल करके ना सिर्फ वजन कम कर सकते हैं बल्कि लंबे समय तक आप फिट रह सकते हैं और एनर्जेटिक रह सकते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव है जो लंबे समय तक हमें बड़े परिणाम दे सकते हैं। तो इस तरह से आप सलाद का सेवन करके अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं।

हम बात कर रहे थे हमारे खान पान को लेकर, तो उसमें हम जो है बात करते हैं प्याज की, क्योंकि हम देखते हैं कि गर्मियों में हम प्याज का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। और वैसे भी अगर हम प्याज की बात करें तो भारतीय रसोई में अगर हम बात करें तो प्याज का एक विशेष स्थान होता है। दाल से लेकर सब्जी तक, सलाद से लेकर पकौड़ों तक, प्याज के बिना हमारे व्यंजनों को जो है हमारी कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि बहुत से लोग जो है प्याज का सेवन नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग जो है प्याज का सेवन करते भी हैं। इसकी जो गंध है और इसका अनोखा स्वाद है वो हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि ये हमारे साथ, इसमें बहुत से ऐसे औषधीय गुण भी हुए जिनके बारे में अगर हम जाने तो हैरान रह जाते हैं कि वाकई में क्या प्याज में इतने गुण होते हैं। और हम देखते हैं कि प्याज जो है वो सिर्फ एक मसाला नहीं है, एक सब्जी नहीं है, इसको एक प्राकृतिक औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में भी हम देखते हैं कि प्याज में के कई स्वास्थ्य लाभों का उल्लेख मिलता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इन प्राकृतिक चीजें जो है वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो, तो उसमें प्याज भी जो है एक प्राकृतिक ऐसी चीज है जो कि हमारे खाने के फायदे नहीं बल्कि सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है। इसमें बहुत से विटामिन, खनिज और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं। तो अगर हम प्याज के पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन सी, विटामिन B6 और फोलेट का एक अच्छा स्रोत है। इसमें खनिजों की हम बात करें तो इसमें पोटेशियम, मैंगनीज, तांबा और फास्फोरस जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं। प्याज में के आहार में जो है फाइबर होता है जो कि हमारे पाचन स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखता है। और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है जिसकी वजह से ये हमारे शरीर को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। तो अगर हम बात करें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में ये कैसे वृद्धि करता है, तो प्याज में मौजूद विटामिन सी और फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन सी जो है वो सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है और संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा प्याज में सेलेनियम जो होता है वो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। और नियमित रूप से प्याज का सेवन करने से शरीर को हमारी जो गर्मी है, फ्लू है या जो वायरल संक्रमण जितने होते हैं उनसे लड़ने में मदद मिलती है। हालांकि कहा जाता है कि इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, लेकिन एक मान्यता है कि प्याज जो है वो इन तत्वों से भरपूर होता है और ये हमारी सेहत को अच्छा बनाए रखता है। हृदय स्वास्थ्य की हम बात करें तो हृदय रोगों में भी प्याज खाने से फायदे मिलते हैं। प्याज में मौजूद जो क्वेरेसिटिन होता है, सल्फर यौगिक रक्तचाप को कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और रक्त के थक्के बनने से रोकने में मदद करता है। ये रक्त वाहिकाओं को आराम देकर रक्त प्रवाह में हमारे सुधार करता है और हमारा जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम LDL कहा जाता है को कम करने में और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाने में सहायक है, जिससे कि हृदय रोगों का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। मधुमेह की अगर हम बात करें तो मधुमेह के रोगियों के लिए भी प्याज फायदेमंद माना जाता है। और प्याज में ऐसे यौगिक तत्व होते हैं जो कि रक्त शर्करा को कम करने के स्तर में मदद करते हैं और सल्फर यौगिक जो है इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाने और इंसुलिन प्रतिरोध को कम करते हैं। कच्चा प्याज खासतौर पर Type A और Type 2 दोनों प्रकार के डायबिटीज में ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में काफी प्रभावी माना जाता है। कैंसर रोधी गुण भी जो है प्याज में होते हैं। प्याज में क्वेरेसिटिन, एंथोसाइनिन और सल्फर यौगिक जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मदद करते हैं। विशेष रूप से कॉलन, पेट, अंडाशय और स्तन कैंसर के जोखिम को कम करने में प्याज जो है अपनी प्रभावी भूमिका निभाता है और DNA को नुकसान होने से बचाता है और कैंसर कोशिकाओं को फैलने से भी प्याज जो है रोकता है। हड्डियों के स्वास्थ्य की बात करें तो प्याज हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है और जिससे कि इसमें कुछ ऐसे यौगिक तत्व पाए जाते हैं जो कि हड्डियों को नुकसान जो होता है उनसे ही हमारे शरीर को बचाता है। और महिलाओं में विशेष रूप से नियमित प्याज का सेवन करने से हड्डियों को मजबूत बनाने में ये सहायता करता है। पाचन हमारे स्वास्थ्य में सुधार करता है। प्याज में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो कि पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। फाइबर जो होता है जिसका अगर हम नियमित उपयोग करते हैं तो हम फ्रेश भी अच्छे से हो जाते हैं। इसके अलावा प्याज में प्रीबायोटिक्स होते हैं जो कि आंत में स्वस्थ बैक्टीरिया के विकास में सहायक माने जाते हैं, जिससे कि समग्र हमारा पाचन स्वास्थ्य होता है बेहतर बना रहता है और ये आंतों की सूजन को भी कम करने में सहायक होते हैं। प्याज में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि अस्थमा के लक्षणों को भी बहुत हद तक कम करता है। ब्रोंकाइटिस

0: और एलर्जी में राहत प्रदान करता है और बलगम को ढीला करने और श्वसन मार्गों को साफ करने में मदद करता है। इसमें सल्फर यौगिकों में कफ निस्कारक गुण होते हैं, जिससे कि श्वसन संबंधी फायदे भी हमें प्याज से मिल सकते हैं। आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माना जाता है। प्याज में सेलेनियम और वाइटामिन होते हैं, ई जैसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आंखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये ऑक्सीडेटिव तनाव से आंखों की रक्षा करते हैं और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं के जोखिम में भी बहुत हद तक जो है प्याज को कारगर माना गया है। त्वचा और बालों का अगर हम बात करें कि बालों में भी हम देखते हैं कि प्याज का तेल लगाने से या प्याज का रस लगाने से हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, उनका झड़ना कम होता है। प्याज खाने के फायदे त्वचा और बालों पर भी देखने को हमें मिल सकते हैं। प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो त्वचा को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं, जिससे कि उम्र बढ़ने के लक्षण कम होते हैं और हमारी त्वचा जो है चमकदार बनती है। प्याज का रस बालों के झड़ने से रोकने और बालों के विकास में बढ़ावा देता है और ये स्कैल्प के संक्रमण को लड़ने और रूसी को कम करने में बहुत हद तक कम करता है। इसलिए हम जान सकते हैं कि एक छोटा सा प्याज जो कि हमारी रसोई में होता है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और इसके कितने जो फायदे हैं वो हम देखने को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि प्याज का आप एक सीमित मात्रा में जो है इसका उपयोग करें। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का सेवन करने से पहले जब आप उसको सेवन करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग उस चीज़ को निरीक्षण करके या उसका परीक्षण करने के बाद ही आप उसे जो है अपने लिए अप्लाई करें। इसलिए कह सकते हैं हम आपको कि प्याज जो है बहुत से गुणों से भरपूर होता है और ये हमारे लिए जो है एक स्वास्थ्य के लिए जो है एक बेहतर विकल्प माना जाता है।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: और अब हम देते हैं आपको जानकारी प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम के बारे में। मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं। ये एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें भाग लेने वाले मंत्रालयों, विभागों की विभिन्न योजनाएं और पहलों को शामिल किया गया है। उसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि केंद्र द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने और देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने का समान अवसर प्राप्त हो। और इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना, मौजूदा और नई सरकारी योजनाओं और स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता बढ़ाने और राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियों के भर्ती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, अवसंरचना विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, उनके जीवन स्तर में सुधार करने और सांप्रदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम एवं नियंत्रण, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें आज जिस योजना की हम बात कर रहे हैं वो है ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी। इंदिरा आवास योजना IAY में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों के लिए आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भौतिक और आर्थिक लक्ष्यों का निश्चित प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए निर्धारित किया जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम।

महिलाओं ने सुना कार्यक्रम महिला जगत FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार।

0: शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में

0: इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CV राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आवृजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से प्रोग्राम तराने नए पुराने। अंतराल से पहले आपने सुना साधना सरगम की आवाज में वाटर फिल्म का गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का गाया भावना फिल्म का गीत।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे खामोशियां फिल्म का गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से प्रोग्राम तराने नए पुराने। अब आपको सुनवा रहे हैं छोटे सरकार फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाज़ों में।

फिल्म छोटे सरकार के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का प्रोग्राम तराने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है। FM 110.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। आज की हमारी प्रथम सभा भी यहीं संपन्न होती है। द्वितीय सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: सो हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गुड इवनिंग दोस्तों, हमेशा की तरह हम हाजिर है लेकर हम मुखातिब हो चुके हैं 100.7 एफएम युवाणी। युवाणी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार
1: जी दोस्तों। और आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे आपकी रेडियो दोस्त कोमल दैया को,
0: आपकी दोस्त ग्रेसी को,

0: जी दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है मंगलवार और मंगलवार को हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है आपका कल, जिसमें हम युवाओं के फ्यूचर को लेकर बात करते हैं, नई वैकेंसीज को लेकर बात करते हैं और बात करते हैं कि क्या हम कुछ नया, कुछ इनोवेटिव जो है वो कल के लिए कर सकते हैं। लेकिन आज कोमल क्यों ना हम युवाओं को नौकरी को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन सी जो है वो बात कर ले, क्योंकि आज का जो युवा है वो सिर्फ नौकरी नहीं चाहता, वो चाहता है अपनी पहचान, वो आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है और वो अपने सपनों को जो है वो अपने दम पे पूरा करना जानता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ कॉलेज की डिग्री जो है वो आपको सफलता दिला सकती है, या क्या सिर्फ किताबों का ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन ये सवाल जो है ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि क्या अलग है जो आज की जनरेशन में हम कर सकते हैं, या फिर जरूरी है कुछ ऐसा करना जो आपको भीड़ से अलग बना दे। तो क्यों ना दोस्तों आज हम बात करें कुछ ऐसी ही चीजों को लेकर जो आपके रिज्यूम को इंटरेस्टिंग बना दे, जो आपके पर्सनालिटी को इंटरेस्टिंग बना दे, जो आपकी डिग्री को पावरफुल बना दे। और क्यों ना आज हम बात करें पार्ट टाइम वर्क और इंटर्नशिप को लेकर, यानी कि वो रास्ता जो आपको पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी करवाए, अनुभव के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाए और साथ में सपनों के साथ वास्तविकता के साथ जो है वो आपको जोड़ने की कोशिश करे। क्योंकि आज हजारों युवा के पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनियां सबसे पहले ये पूछती है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, और एक्सपीरियंस के लिए युवा कहते हैं कि एक्सपीरियंस के लिए नौकरी चाहिए और नौकरी के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहां पर क्या काम आता है? यहां पर काम आती है आपकी इंटर्नशिप, क्योंकि इंटर्नशिप आपको देती है इंडस्ट्री एक्सपोजर, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रोफेशनल नेटवर्क, कम्युनिकेशन स्किल और साथ ही साथ आपके रिज्यूम को वो पावरफुल स्ट्रांगनेस देती है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है।
1: जी बिल्कुल ग्रेसी, क्योंकि आज के टाइम में केवल डिग्री हासिल करना जो है वो ही सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ और भी व्यवहारिक जो अनुभव है वो भी हासिल करना उतना ही जरूरी हो गया है। और यही कारण है कि आज के युवा जो है वो पार्ट टाइम जॉब और इंटर्नशिप को की ओर जो है वो तेजी से यूं कहें कि अट्रैक्ट हो रही हैं। और साथ ही हम देखें कि एक टाइम ऐसा था जब स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही जो है वो नौकरी की दुनिया में कदम रखते थे, लेकिन आज का टाइम जो है वो यो कंपटीशन का जो टाइम है वो आ चुका है। और ऐसे में कंपनियां ऐसे यूथ को प्राथमिकता देती है जिनके पास पढ़ाई के साथ साथ काम करने का भी अनुभव हो, और ऐसे में जब पार्ट टाइम वर्क और इंटर्नशिप यूथ के लिए सफलता का एक मजबूत आधार जो है वो बन सकते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल कोमल, आप जरा ये बताइए दोस्तों कि एक तो आपको बहुत अच्छा खासा पैसा मिल रहा है जहाँ पे आप अपने स्किल्स को एनहेंस नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ आपको जीरो इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जीरो पैसा मिलेगा लेकिन स्किल्स आपकी अच्छी इम्प्रूव हो सकती है। सो ये जो है वो इंटर्नशिप का पार्ट होता है। इंटर्नशिप में आप जितना चाहें उतना अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं, नई क्रिएटिव की ओर जा सकते हैं, नया कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि आपने कितना कमाया, क्या आपने किया। आपको यहाँ पे ये सोचने की जरूरत है कि कौन से स्किल पे आपने काम किया और कितना आपने क्रिएटिवली अपने अंदर जो यू कह सकती हूँ कि जो होशियारी है वो अपने अंदर एड ऑन की है। क्योंकि जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें डेवलप होती है, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर स्किल्स आती है कि कैसे आप ग्रुप में काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, और साथ ही इसके बहुत सारे फायदे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
0: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
0: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: जी दोस्तों, म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पार्ट टाइम जॉब को लेकर और इंटर्नशिप को लेकर, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब सपने तो हमारे बहुत बड़े होते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि सपने तो बहुत बड़े हैं लेकिन जेब में पैसे थोड़े से कम है। साथ ही कभी आपने सोचा है कि कॉलेज की डिग्री खत्म होने के बाद भी लाखों डिग्रियां हैं समाज के अंदर और दुनिया के अंदर, लेकिन हम अपनी डिग्री को अलग जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें ही हमें इस कश्मकश में देती है कि आखिर एक सही फ्यूचर के लिए एक सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। और ये गाइडेंस हमें ये कहती है कि पार्ट टाइम जॉब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको ये भी बताया कि पार्ट टाइम वर्क अगर आप करते हैं तो इसके क्या फायदे जो है वो आपको हो सकते हैं। हमने आपको बताया कि आपके अंदर एक इंडिपेंडेंसी आती है, आर्थिक स्वतंत्रता आपके अंदर आती है, अपने खर्चों के लिए आप किसी पर निर्भर नहीं होते, अपना खर्चा जो है वो आप खुद निकाल सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। क्योंकि जब पहली बार आप कमाई करते हैं आपका बैंक बैलेंस बनता है, चाहे बैंक बैलेंस बने या ना बने, लेकिन एक खुद के खर्चे करने का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो अलग ही काम करता है। और जब आप कहीं जाते हैं कुछ नया सीखते हैं तो खुद के स्किल्स को भी आप एनहेंस करते हैं साथ ही साथ। और साथ ही जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो आपका काफी स्ट्रांग हो जाता है, जो भी आपके रिज्यूम में एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो एड ऑन करता है। इसीलिए जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, तो अपनी कॉलेज की डिग्री के साथ साथ आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और ये एक्सपीरियंस आपको पार्ट टाइम जॉब करके इंटर्नशिप करके ही मिलने वाला है।
5: जी बिल्कुल ग्रेसी, और ये सारी चीजें अगर हमें सीखनी है और अपने आप को जो है वो बेहतर साबित करना है तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट है तो आपके पास सीखने के हजारों मौके हैं और उनको सीखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कुछ यूथ जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अपनी इंटर्नशिप या यू कहे कि जब भी जॉब करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां जो है वो भी उनसे होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ अगर जॉब करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ सैलरी देखते हैं या फिर स्किल सीखने के बजाय जो वो बहुत सारे शॉर्टकट्स जो है वो ढूंढने लगते या फिर यूं कहे कि फ्री इंटर्नशिप को जो है वो कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये सब जो है वो बेकार है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें पीछे की ओर धकेल देती है। अब हम देखते हैं कि कहीं अगर हमें ज्यादा पैसे देने वाली जो इंटर्नशिप है वो बेहतर लगती है और वहीं अगर जीरो इनकम है वहां हमारी इंटर्नशिप में जिसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो इन सारी चीजों में भी बहुत सारा फर्क जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा है कि अगर हम स्किल सीखना चाहते हैं तो हमें वहां जाके ये नहीं देखना चाहिए कि उसमें हमें पैसे कितने मिल रहे हैं। अगर हमें स्किल सीखनी है तो हमें सिर्फ अपने स्किल पे ध्यान देना है।
4: जी हाँ बिल्कुल, और साथ ही आपने कहा कि आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा, सो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो फिर आपके अंदर ना कुछ नया सीखने की ललक जो है वो खत्म हो जाएगी। आप हमेशा ये सोचोगे कि इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है। और जब क्योंकि हम जिस जनरेशन के अंदर है, जो यूथ हम आज का है, अगर हम अभी से ये सोचने लग गए, कॉलेज टाइम से ही अगर हम ये सोचने लग गए कि हमारा फायदा कहाँ है, हमें कौन सा क्या क्या फायदा हमें इससे हो रहा है, तो शायद हमें जो अपनी लाइफ में टैलेंट चाहिए वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। सो हमेशा अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो या कुछ भी अचीव करना चाहते हो सो अभी के लिए आप ये ना सोचें कि आपका फायदा किसके अंदर है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, जहां आपको ज्यादा टफ काम करने को मिल रहा है वो कंपनी आप चूज करने की कोशिश कीजिए, वहां आप काम करने की कोशिश कीजिए। और मैं तो कहती हूं कि आप ना आज से ही अपने 30 दिन का प्लान जो है वो डिसाइड कर लीजिए, बहुत ही आसान रहेगा ये आपके लिए। आपको क्या करना है, डे फर्स्ट से डे 10 तक तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से स्किल पे काम करना है। सबसे पहले आपको अपने लिए अपने खुद पे काम करना है, एक अच्छी स्किल ढूंढनी है कि आप कौन सा काम करने में रुचि रखते हैं, कौन से काम में आपको फन आता है, कौन से काम से आप जो है वो खुद को अपनी पर्सनालिटी को और एनहेंस कर सकते हैं। तो 1 से 10 दिन के बीच आप सिर्फ इतना ही काम कीजिए कि आप अपने लिए एक स्किल चुनिए। फिर 11 से 20 दिन का जो समय आता है, बाकी मतलब नेक्स्ट जो 10 दिन होते हैं उसमें आप ऑनलाइन चीजों को सीखना शुरू कीजिए। क्योंकि आज आपके पास मोबाइल फोन है, आज आपके पास इंटरनेट है, आज आप एक बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया जो है वो चला रहे हैं, तो ये तीनों चीज आपके लिए मैं कह सकती हूँ एक वरदान साबित हो हो सकती है। जब आज का युवा घंटों सोशल मीडिया पे अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहा है, वही टाइम को अगर वो यूटिलाइज करे और कुछ सीखने की कोशिश करे तो फिर आपके करियर को, आपके टैलेंट को चार चांद जो है वो लग जाने हैं। बाकी के 21 से 30 दिन का जो टाइम रहता है, यानी कि जो हमारा डे 21 और डे 30 के बीच का जो टाइम है, इसमें आप अपनी नई इंटर्नशिप पे अप्लाई कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह आप जो है वो 30 डे का चैलेंज जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि आज का ये चैलेंज जो है ना वो आपको सोने से पहले ये फील करवाएगा कि हाँ आज आपने कुछ अच्छा किया है, आज आप अपने करियर को लेकर सीरियस हैं और आज आप अपने लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं।
5: जी बिल्कुल। और इन सारी चीज़ों के साथ अगर हम अपना डेली रूटीन बना लेते हैं और अपनी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले स्किल चुनिए, उसके बाद उसको जो है उसके बारे में आप सर्च कीजिए कि क्या चीज़ें जो है वो आपके, आपको इसके अंदर करनी होगी और फिर जो है उसको आगे जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों के बाद जो है ग्रेसी, एक चीज़ हमारे दिमाग में ये भी आती है कि क्या पार्ट टाइम जो वर्क है वो हमारी पढ़ाई ख़राब कर सकता है क्या? तो बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि काम करोगे तो पढ़ाई आपकी कैसी होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या 4 घंटे रील्स देखने से बेहतर जो है वो पढ़ाई होती है? अगर हम वही 4 घंटे जब हम रील्स देख रहे हैं फोन में, जब वो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उस टाइम को अगर हम यूटिलाइज करके और वहीं अगर हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो वो 4 घंटे हमारे और बेहतर बन सकते हैं। अगर हम टाइम का सही यूज करते हैं तो पार्ट टाइम वर्क जो है वो पढ़ाई को नुकसान नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है वो फायदा ही पहुंचाएगा। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ जब पार्ट टाइम वर्क भी करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड होगी और बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो हम सीख भी पाते हैं।
4: जी हाँ बिल्कुल। तो जैसा कि कोमल ने कहा कि बिल्कुल भी आपकी पढ़ाई जो है वो मिस नहीं होगी अगर आप एक अच्छा शेड्यूल बना के चलेंगे, एक अच्छा टाइम टेबल बना के काम करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, आपकी इंटर्नशिप भी अच्छी होगी और जो आप एक्स्ट्रा कोर करिकुलर एक्टिविटीज करना चाहते हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब तरीके से होगी। तो दोस्तों, भविष्य उनका नहीं होता जो सिर्फ इंतजार करते हैं, भविष्य उनका भी होता है जो तैयारी करते हैं। और आज का जो युवा है ना वो सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं है, नौकरी बनाने वाला भी है। बस जरूरत है कि उसकी स्किल अच्छी हो, जरूरत है कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो और उसे जरूरत है कि वो पहला कदम जो है वो अपने बलबूते पर उठा सके। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, अभी के लिए चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: जी दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम युवाणी में, जिसमें आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट चल रहा है आपका कल। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारी पार्ट टाइम जॉब को लेकर, लेकिन अब क्यों ना हम थोड़ी सी चर्चा कर लें पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर, क्योंकि आपकी ताकत आपकी पहचान ही होती है। आज के दौर में डिग्री तो बहुत से लोगों के पास होती है, टैलेंट भी लाखों लोगों के पास है, लेकिन पहचान जो है वो कुछ ही लोग बना पाते हैं। क्यों कुछ लोग जो है वो भीड़ में खो जाते हैं और कुछ ही लोग जो है वो भीड़ से निकल कर ब्रांड बन जाते हैं। क्यों कुछ लोगों के नाम सुनते ही उनका जो काम है वो याद आ जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये निकल कर आता है कि क्या आप सिर्फ एक व्यक्ति है, एक पर्सनैलिटी है, क्या खुद में आप जो है वो अपने आप को एक ब्रांड मानते हैं? क्योंकि कुछ लोगों के नाम सुनकर ना उनका दिमाग, उनके लिए दिमाग में उनका काम जो है वो पहले याद आ जाता है, उनकी छवि जो है वो अपने आप बन जाती है, और यही पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो कहलाती है। क्योंकि अगर कोई कहे कि वो लड़का तो बहुत ईमानदार है, या वो लड़की, अरे वो लड़की तो बहुत शानदार डॉक्टर है, वो हमेशा जो है ना वो मदद करता है कि आपकी ब्रांडिंग जो है वो कैसी हुई है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि आज के जमाने में लोग जो हैं वो जानने से पहले या पहचानने से पहले सबसे पहले सोशल मीडिया पे जाके सर्च करने की कोशिश करते हैं कि

0: आप कैसे दिखते हैं, आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप कौन सी भाषा का यूज करते हैं, कैसा व्यवहार आप करते हैं, और इन सारी चीजों को मिलाकर ही आपकी जो ब्रांडिंग है वो तैयार होती है। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी निकल कर आए, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी ब्रांडिंग करें।
1: जी बिल्कुल। और ग्रेसी, कई बार क्या होता है कि लोग जो है वो आपके नाम को जो है वो सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं, तो लोगों को आपके बारे में फिर जो है वो क्या पता चलेगा उससे, और यही जो है वो हमारी पहली ब्रांडिंग का टेस्ट हो जाए, वही जो है वो हो जाता है। और हम देखें कि जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो ज़रूरी क्यों होती है, क्योंकि आज कंपटीशन जो है वो इतना बढ़ चुका है और अटेंशन का ज़माना है कि हर लोग ये चाहता है कि हर कोई मुझ पे ध्यान दे। टैलेंट आपको मौका दिला सकता है, लेकिन जो ब्रांडिंग है वो आपको पहचान दिलाती है। और इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे कि आपके नौकरी के जो मौके हैं वो बढ़ते हैं, लोग आप पर जो वो भरोसा करने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों को आपके काम के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में जो वो पहले से पता होता है। आपका नेटवर्क जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, लोगों से आप जुड़े हुए रहते हैं, आपकी बात की जो है वो लोग वैल्यू करते हैं, क्योंकि आपका काम जो है वो लोगों को दिखाई देता है, उस वजह से जो है वो लोग आपकी बातों की वैल्यू करना जो है वो चालू कर देते हैं, और अवसर जो है वो खुद आपके पास चल कर आते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में आपने ऐसी पहचान बनाई हुई है, क्योंकि जो भी अवसर आएंगे तो वो आपके पास खुद ब खुद जो है वो चलकर जरूर आएंगे।
0: जी हाँ बिल्कुल कॉमन। लेकिन आज के युवा की, ना सिर्फ युवाओं की बल्कि हम सबकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम कंफ्यूज्ड भरे रहते हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि आखिर हमें जेन्युइनली करना क्या है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें टैलेंट की कमी है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें विजिबिलिटी की कमी है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन कोई नहीं जानता, बहुत लोग काबिल भी हैं लेकिन कोई पहचानता नहीं है, बहुत लोग सपना भी देखते हैं लेकिन दुनिया जो है वो उन्हें नोटिस करती। क्यों? क्योंकि कड़वा सच यही है कि आज की दुनिया में सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, अच्छा दिखना भी पड़ता है, सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, पहचान भी आपको बनानी पड़ती है। आप भी खुद से पूछिए कि आज के 5 साल बाद मैं खुद को कहां देखना चाहती हूं। आपका कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए, आपका कंपटीशन किसी पड़ोसी से नहीं होना चाहिए, आपका कंपटीशन अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से नहीं होना चाहिए, आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ होना चाहिए कि आज के 10 साल बाद, आज 5 साल बाद मैं खुद को कहां देखना चाहता हूं, और वही आपको ये बताएगा कि आप अपनी ब्रांडिंग कैसे चाहते हैं और आप क्या बनने की कोशिश करना चाहते हैं। क्योंकि लोग जो है ना, लोग आपको अलग नहीं देखते। आप अगर एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसी बातें करते हैं, अगर आपके सपने भी एक जैसे हैं, एक जैसी सोच आप रखते हैं, और फिर आप शिकायत ये करते हैं कि कोई मुझे पहचानता नहीं, तो याद रखिए कि ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं ना वो नोटिस नहीं होते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो हैं वो हमेशा जो है वो नोटिस में आ जाता है, उन्हें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये जरूरी है कि आप अपनी पहचान जो है वो खुद बनाएं। बातों का सफर जारी रहेगा, अभी के लिए चलते हैं छोटे से म्यूजिक।

0: जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का. प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और हमारा खास सेगमेंट आपका कल, जिसमें हम बात कर रहे थे म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले कि एक पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो क्या होती है और उसमें हम अपने लिए उनमें क्या क्या चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी पहचान जो है वो एक पर्सनल ब्रांडिंग के हिसाब से क्या होनी चाहिए. जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं तो ये आपकी पहचान नहीं है, आप एक इंजीनियर हैं ये भी आपकी पहचान नहीं है. आपकी पहचान ये है कि लोग आपको किस वजह से याद रखते हैं, आपके काम को देख के या फिर आपके व्यवहार को देखकर, या क्या कुछ ऐसी चीज़ है जिससे लोग आपको याद रखते हैं, और वही होती है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग. कोई जैसे लीडरशिप के लिए आपको याद रखता है, कोई कम्युनिकेशन के लिए याद रखता है, कोई डिसिप्लिन के याद के लिए याद रखता है, तो कोई आपको जो है वो आपकी क्रिएटिविटी के लिए याद रखता है. तो आप किस चीज के लिए याद रखे जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है.
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कोमल आपने. दोस्तों आप ही एक बार सोचिए कि आज के 10 साल बाद आप किसी कमरे में ऐसे रैंडमली जाते हैं और आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और वहाँ के लोग एक दूसरे को ये कहते हुए नजर आते हैं, अरे ये तो वही इंसान है. लेकिन ये वही के आगे क्या आएगा, यही आपकी जो है वो ब्रांडिंग बना सकता है. और आजकल सोशल मीडिया वरदान भी है तो अभिशाप भी है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको बना भी सकता है और आपको मिटा भी सकता है. ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छा एनहेंस करता है. कोई आपके प्रोफाइल को देखता है और वो 10 सेकंड के अंदर ये डिसाइड कर लेता है

0: कि आपको उन्हें काम देना है, आपको उन्हें हायर करना है या नहीं करना, आप पे भरोसा करना है या नहीं करना है, ये पूरी तरह से उन 10 सेकंड में डिसाइड हो जाता है। यही डिजिटल ब्रांडिंग जो है वो कहलाती है। तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया सोशलाइज होने से ज्यादा सोशल मीडिया पे नजर आती है, तो ये बात तो लाजमी है कि हमें अपनी सोशल जो प्रोफाइल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। साथ ही एक बहुत बड़ा रूल जो है वो ये कहता है ब्रांडिंग का कि आप हर चीज पे कोई ओपिनियन मत दीजिए, अपनी वैल्यू जो है वो आप खुद बनाइए। ये पहला रूल है जो एक ब्रांड बनाने के लिए काम में आता है। और दूसरा रूल हमें ये कहता है कि हर वक्त आप ट्रेंड के पीछे मत भागिए, आप जो है वो अपनी खुद की एक पहचान बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप दुनिया से हटकर कुछ करेंगे, भीड़ से अलग हटकर कुछ करेंगे, तो लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते, वो देखने की कोशिश करेंगे कि आप क्या हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किस प्रकार की क्रिएटिविटी पे आप काम कर रहे हैं और कौन सी स्किल्स आपके अंदर है। साथ ही तीसरा बहुत बड़ा रूल जो है वो ये है कंसिस्टेंसी का। ब्रांड एक दिन में नहीं बनता, ये हम सब भी जानते हैं। आप पढ़ाई कर लो, आप इंटर्नशिप कर लो, आप अपनी स्किल्स पे काम कर लो, हर चीज के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कंसिस्टेंसी, निरंतरता जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं। ये एक दिन में नहीं आती, रोज आपको काम करना होगा, रोज आपको अपने स्किल्स को एनहेंस करना होगा, तब जाकर आप जो है वो अपने आप में एक ब्रांड जो है बना सकते हैं। चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जिसे हम कहेंगे वो है नॉलेज, क्योंकि खाली मोटिवेशन से ब्रांडिंग नहीं बनती। आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए, आपके अंदर वो नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार करने की कोशिश कर रहे हैं। यही आपके नॉलेज को एनहेंस करेगा, यही आपके ब्रांड को बनाएगा और यही आपको एक ब्रांडिंग का नाम जो है वो देगा।
1: जी बिल्कुल।
0: और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि पांचवा सबसे जरूरी काम जो है या सबसे महत्वपूर्ण रूल जो है वो है ट्रस्ट का। लोग टैलेंट से प्रभावित होते हैं लेकिन भरोसा जो है वो करेक्टर पर ही करते हैं।
1: जी बिल्कुल। और जब आप अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप खुद अपना ब्रांड बनना चाहते हैं, तो इसमें आप ये देखें कि आपका कंपटीटर कौन है, यानी कि आप देखते हैं कि आपके पड़ोसी तो ये आपके कंपटीटर नहीं है, आपके फ्रेंड है, आपके रिश्तेदार हैं, इनको आप कंपटीशन के अंदर नहीं लेके आएंगे। आप क्या जो आने वाला कल है वही आपका जो है वो असली कंपटीटर होगा, कि आने वाले कल में जो है वो हम अपने आप को किस तरीके से बेहतर बनाते हैं, अपने आप को किस तरीके से हम संवारते हैं, तो वो जो है वो हमारा एक असली कंपटीशन के रूप में हमारे आने वाला जो कल है वो हमारा कंपटीटर होता है, कि हम उससे किस तरीके से लड़ें, हम अपने आप को किस तरीके से साबित करें जिससे कि लोग जो है वो हमें जान सकें, हम खुद का एक जो है वो पर्सनल ब्रांड जो है वो बन सकें।
0: जी हाँ बिल्कुल दोस्तों। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले भी हम बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे कि आप इंटर्नशिप कीजिए, आप स्किल्स पे काम कीजिए और साथ ही साथ ये पांच रूल जो है इन्हें आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम आपको ये नहीं कहना चाहते कि आप अलग दिखने की कोशिश कीजिए, आप अतरंगे कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए, लेकिन आप जो बनना चाहते हैं, जो स्किल्स आप चाहते हैं कि लोग आपको इस ब्रांड के नाम से पहचाने, इस चीज़ के नाम से पहचाने, तो सबसे पहले आपको मानना होगा ये चीज़ कि आप वो है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक लीडर बने वाले टाइम में, तो आपको खुद को लीडर की तरह बिहेव करना होगा, लीडर जैसी प्रोफाइल खुद में क्रिएट करनी होगी, लीडर बनने की क्या क्वालिटीज है उन पे आपको काम करना होगा, और साथ ही साथ ऐसे कपड़ों का चयन करना होगा जो अपने आप में आपको ये फील करवाए कि आप ही लीडर है। जी हाँ बिल्कुल। और दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो है ना वो दोस्तों, वो फेलियर नहीं है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है कि पोटेंशियल होने के बाद भी हम अननोन रह जाते हैं, हम पहचाने नहीं जाते। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि दुनिया आपको आपके नाम से जाने, आपके काम से जाने, तो आप आज से और अभी से खुद के स्किल्स पर, खुद के ब्रांडिंग पर काम करना शुरू कर दीजिए। बातों का सफर जारी रहेगा, अभी के लिए चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: जी दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से कार्यक्रम युवाणी में। और जैसा कि आप गर्मी का हाल देख रहे हैं, और गर्मी के हाल में गर्मी की बातें ना हो कोमल तो ऐसा तो बात जो है वो जायज नहीं रहेगी। दोस्तों, गर्मी जो है ये सिर्फ तापमान नहीं बढ़ाती, ये कई लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा देती है। जब हम सब एयर कंडीशनर, कूलर और ठंडे पानी का आनंद ले रहे होते हैं ना, तब सड़क पर काम करने वाले मजदूर हो गए, रिक्शा चालक हो गए, डिलीवरी बॉय हो गए, ट्रैफिक पुलिस हो गई, या बेसहारा पशु पक्षी भीषण गर्मी से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं आता कि गर्मी कितनी है, सवाल ये आता है कि हम किसी के लिए कितनी राहत जो है वो बन सकते हैं। तो क्यों ना आज हम जो हैं इस बात पे थोड़ा सा गौर फरमाएं कि हम जो हैं कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं, और दूसरों की मदद का जरिया जो है वो हम कैसे बन सकते हैं। सबसे बड़ी जो है, मैं ये कहूंगी कि सबसे बड़ी सेवा जो है वो पानी होता है। पानी से बड़ी कोई सेवा जो है वो मुझे नजर नहीं आती। घर के बाहर आप एक छोटा सा मटका रख सकते हैं, राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था आप कर सकते हैं। ऑफिस, दुकान या संस्थानों के बाहर आप फ्री वाटर पॉइंट्स जो है वो लगा सकते हैं। अपने वाहन में आप अतिरिक्त पानी की बोतलें जो है वो रख सकते हैं। ये करने से आप जो है वो बहुत बड़ी मदद जो है वो लोगों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि एक गिलास पानी आपके लिए सामान्य हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे इंसान के लिए ये एक जीवन दान की तरह काम करने वाला है।
1: जी बिल्कुल। और यूँ कहें कि जैसे गर्मी में हम कोई भी किसी की छोटी सी अगर मदद करते हैं तो वो हमारे लिए हो सकता है कि एक छोटी बात है, लेकिन जब सामने वाले इंसान को वो सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर उनको ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। और जब हम देखते हैं कि बेजुबान जीवों का भी हम ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी सिर्फ वो इंसानों को नहीं सताती बल्कि पक्षियों और जानवरों के लिए भी ये मौसम बहुत ही यूँ कहें कि कठिन होता है। छत या बालकनी में हम पानी का बर्तन रख के जो है वो उनको गर्मी से राहत दे सकते हैं, उनके लिए दाना रख सकते हैं, और जो भी पशु हमारे आसपास मोहल्ले में या फिर यूँ कहें कि घूमते रहते हैं उनके लिए भी अगर छायादार जगह जो है वो पानी अगर हम रखें तो वो भी उनकी बहुत बड़ी सहायता यूँ कहें गर्मी में हो सकती है। तो दोस्तों, गर्मी का मौसम जो वो हर साल आता है, लेकिन इंसानियत जो वो हर दिन दिखाई जा सकती है। जरूरी नहीं कि मदद लाखों रुपए की हो, बल्कि एक गिलास पानी भी जो है, और कभी एक छांव, कभी एक मुस्कान, और कभी कभी समय पर किया गया सहयोग जो है वो भी बहुत बड़ी यूं कहे कि मदद हो सकती है, और किसी की पूरी दुनिया जो है वो बदल सकती है। तो इस भीषण गर्मी में सिर्फ खुद को ठंडा मत रखिए, किसी की राहत भी बनिए, किसी की उम्मीद बनिए, और किसी की मदद का जरिया भी बनिए। क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके पास क्या है इससे नहीं, बल्कि वह दूसरों के लिए क्या करता है इससे होती है।

0: जी दोस्तों, ये तो था आज का हमारा कार्यक्रम युवाणी, खास सेगमेंट आपका कल, जिसमें हमने आपके साथ बहुत सारी बातें की और कुछ चीज़ें जो है वो हमारी लाइफ से रिलेटेड बातें की, और साथ ही साथ गर्मियों में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए वो भी आपके साथ की। फिलहाल जो है वो प्रोग्राम से जाने का वक्त हो चला है, तो इजाज़त दे कोमल दैया को,
1: ग्रेसी को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चूरू से किया गया। आप सुनिए कार्यक्रम विवरण में हमारे केंद्र से आज और कल की पहली सभा में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी।

0: आकाशवाणी के 90 साल एक गौरवशाली यात्रा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता और कविता पाठ। कवि होंगे श्री सुरेंद्र सोनी और बातचीत करेंगी आरती सोनी। रात्रि 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। श्रोताओं के ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का साप्ताहिक कार्यक्रम मन भावन आप सुनेंगे रात 9:15 से। आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अपने ईमेल भेजकर। ईमेल कीजिए manbhavanchuru@gmail.com। आपके ईमेल हमें शाम 6 से 8 के मध्य मिल जाने चाहिए। रात्रि 10 आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से कार्यक्रम आपनो राजस्थान। बुधवार की पहली सभा में 6:10 पर चिंतन कार्यक्रम में सुनी असफलताएं भी देती हैं सीखने के अवसर। 6:15 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह 6:45 पर सुनी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। 7:20 पर सुनी श्री रामचरित मानस कान का अध्याय 395। 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे नमस्कार चूरू कार्यक्रम में चर्चाएं विश्व साइकिल दिवस प्राणायाम के लाभ। साथ ही जानकारी दी जाएगी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में। 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। 9:10 पर सुनिए देशगान। 9:15 पर साहित्य सुगंध कार्यक्रम में आप सुनेंगे हिंदी कहानी रात बाकी है। कहानीकार होंगी स्नेहलता। एक ही फिल्म पर आधारित कार्यक्रम चित्र संसार आप सुनेंगे 9:30 पर। सुबह 10 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। 11:05 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 12:00 से। 12:30 पर माटी के स्वर कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे अलाह जिलाई बाई के गाए कुछ राजस्थानी लोकगीत। 12:05 पर घरांगन कार्यक्रम में सुनिए चर्चाएं छाछ का सेवन करें भूख बढ़ाएं, गर्मियों में करें कम मसालों का उपयोग। साथ ही जानकारी दी जाएगी खीरा ककड़ी का उपयोग कब करें ताकि स्वस्थ रह सकें। 2:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। 9:15 पर श्रोता सुनेंगे अपने ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल की पहली सभा में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। FM 107.7 MHz और NewZone AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से दूसरी सभा के कार्यक्रम। शाम के 6 वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा

विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ ही फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 107.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

0: वर्तते। तमिलनाडु केरल राज्ययोः अगस्त्य मलाई पारिस्थितिक परिदृश्यम् इत्यस्य संरक्षित क्षेत्रेषु अतिक्रमणम् अधिकृत्य गंभीर संज्ञानम् अंगीकुर्वन् सर्वोच्च न्यायालयः एकां समयबद्ध अतिक्रमण मुक्ति योजनां निर्मातुं तां च प्राथमिकाधार रूपेण प्रतिष्ठापयितुं च निर्देशं प्रायच्छत्। सर्वोच्च न्यायालयः अतिक्रमणं कुर्वन्तः सर्वान् 18% सेवानिवृत्तान् सर्वकारीय कर्मचारिणः विरुध्य अनुशासनात्मकं वैधानिकं च कार्याचरणं प्रवर्तयितुम् आदेशं प्रायच्छत् इति वार्ताः।
1: फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, सप्लाई पूरी तरह सामान्य, मुख्य सचिव ने समीक्षा की। राजस्थान ने 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाकर देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया है। वे आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें, यही सही मायनों में विकास है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय को उच्च शिक्षा और नए अवसर देकर उनका जीवन बदला है। श्रीमती मुर्मू ने देश में प्रतिभा की पहचान, पोषण और विकास के लिए सही मंच देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं, खासतौर पर जनजातीय समुदायों के युवाओं से अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आग्रह किया।
5: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक हैं। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
4: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के सुल्तानपुर सहित 3 स्थानों पर 39,18,00,000 रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें इंडोर स्टेडियम, पुलिया निर्माण और बूढ़ादीत के विकास कार्य शामिल हैं। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की आखिरी तारीख बढ़ाकर 6 जून कर दी है। श्री बिरला ने कहा कि हर नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
6: सुल्तानपुर के गांव के अंदर अंतिम छोर पर बैठा वह गरीब व्यक्ति भी देश और दुनिया के कॉम्पिटिशन में भाग लेकर देश का नेतृत्व करे, दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा ले रहा है। इसीलिए खेल के क्षेत्र के अंदर केवल एक स्टेडियम नहीं बन रहा, या आप बगल में चले जाए तो महात्मा गांधी स्कूल में 50,00,000 की लागत से खेल स्टेडियम का काम उन्होंने की दिशा में, आने वाले समय के अंदर 1,00,00,000 की लागत से और स्टेडियम बनेगा।
4: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। सोशल मीडिया में श्री शर्मा ने बताया कि इस दौरान राज्य के युवाओं के कौशल विकास, रोजगार अवसरों और खेल संस्कृति को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं और प्रोत्साहन पर

की गई। साथ ही माय भारत के माध्यम से युवाओं को बढ़ावा देने संबंधी रूपरेखा पर भी विमर्श किया गया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इनकी सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य

0: खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार ने कहा कि लोगों को ईंधन आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई गलतियों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति ले ली है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दी है। CBI ने इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पेपर लीक के आरोपों के मद्देनजर पिछले महीने हुई नीट UG परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब ये परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की ओर से नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद शपथ ली। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ये नियुक्तियां की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते यानी आभा आईडी बनाने में राजस्थान ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य में 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाई जा चुकी है। इससे नागरिक केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य सेवा मजबूत हो रही है। आभा किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का डिजिटल माध्यम है। इस डिजिटल स्वास्थ्य पहचान से चिकित्सा की पारदर्शी सेवा वितरण प्रणाली सुनिश्चित होती है। 14 अंकों की इस यूनिक हेल्थ आईडी से पुरानी बीमारियों, लैब रिपोर्ट्स और दवाइयों का ब्यौरा सुरक्षित रहता है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को मरीज की मेडिकल हिस्ट्री समझने में आसानी होती है। केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान के तहत जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जैतावत ने बताया कि इसमें 14 मानकों पर जांच की जाएगी। इससे किसानों को खाद के सही उपयोग में सहायता मिलेगी। इस पहल से मिट्टी के पोषक तत्वों और सिंचाई जल की गुणवत्ता भी परखी जाएगी, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर किसानों को वैज्ञानिक सलाह दी जाएगी। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही फसलों की लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी। उधर भीलवाड़ा में भी खेत बचाओ अभियान के तहत किसान संगोष्ठी रखी गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीकानेर में एक पटवारी अंकुश कुमार को ₹50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उसने खाते के विभाजन के एवज में ₹1,00,000 की रिश्वत की मांग की थी और घूस की पहली किस्त के रूप में ये राशि ली थी। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन शहरी को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्वच्छता गतिविधियों में नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न शहरी निकाय एक दूसरे की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियां और नवाचार साझा करें। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों में तकनीकी एकरूपता लाने के लिए नियमित कार्यशालाएं करने पर भी बल दिया। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 27 अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र चलाए जा रहे हैं। मौसम में आए बदलाव के बाद राज्य के ज्यादातर भागों में दिन और रात का पारा सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे मापा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश से लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। हालांकि अंधड़ और तेज हवाओं से कई जगह व्यापक नुकसान भी हुआ है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि जिले में कल रात आए अंधड़ से कई गांवों और ढाणियों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई।
1: ग्रामीण इलाकों में आंधी तूफान और बारिश से विद्युत तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिले में 1500 से अधिक बिजली के पोल गिर गए, जिसकी वजह से करीब 400 से अधिक गांव और ढाणियों की बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी है तथा क्षतिग्रस्त लाइनों को दुरुस्त करने का कार्य तीव्र

0: गति से जारी है। खेतों में लगी सोलर प्लेटों को भी भारी नुकसान के समाचार है। वहीं जिले में वन संपदा के साथ सम स्थित रिजोर्ट में भी भारी नुकसान हुआ है। मनीष यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: मौसम विभाग ने आज भी जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना जताई है। कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। विभाग ने कहा है कि कल और परसों कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की बढ़ोतरी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बनी रहने से अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत का अनुमान है। अधिकतर हिस्सों में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। प्रदेश में अपराधों की रोकथाम, असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए मेगा नाकाबंदी अभियान चलाया गया। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि कल चलाए गए इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 1100 से ज्यादा नाकाबंदी प्वाइंट बनाए गए। इन पर 74,000 से ज्यादा वाहनों की जाँच की गई और 15,000 से अधिक चालान काटे गए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 कल नई दिल्ली में दिए जाएंगे। समारोह में देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान 34 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और 8 पंचायतों को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कृत होने वाली पंचायतों के प्रमुख अपनी सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर प्रस्तुतिकरण भी देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वीरता और विज्ञान, पर्यावरण, समाज सेवा और कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले बच्चों को प्रदान किए जाते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, सप्लाई पूरी तरह सामान्य, मुख्य सचिव ने समीक्षा की। राजस्थान ने 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाकर देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख रामेश्वर बेड़ा ने तैयार किया है। सूर्य नगरी जोधपुर में बीते महीने भीषण गर्मी के बीच विभिन्न धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयोजनों के साथ सरकारी समारोहों से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रही। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के जोधपुर दौरे और विकास से जुड़े समाचार भी खास रहे। जोधपुर शहर ने पिछले दिनों अपना 568वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1459 में राव जोधा द्वारा स्थापित इस ऐतिहासिक शहर की स्थापना का समारोह बीएसएफ कैमल फ्रंटियर बैंड कार्यक्रम के साथ हुआ। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित समारोह का शुभारंभ विधायक अतुल भंसाली ने किया। इस दौरान मेहरानगढ़ में पर्यटकों का परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। तूर जी के झालरे पर दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया। मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा में भी कार्यक्रम हुए। जोधपुर के रातानाड़ा सर्कल पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण समारोह रखा गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शरीक हुए। इस मौके पर वक्ताओं ने पूर्व उपराष्ट्रपति की जनसेवा, सादगी और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों जोधपुर की कई रेलवे सुविधाओं और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तारित किया गया। वहीं जोधपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन में 20 कोच बढ़ाए गए। जिला मुख्यालय पर 19वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेले में शिरकत करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। जोधपुर स्थित भगत की कोठी इलेक्ट्रिक लोको शेड देश भर में अपनी पहचान बना रहा है। अप्रैल 2026 तक यहां से 181 इलेक्ट्रिक इंजन कमीशन किए गए। शेड से निकले इंजन

0: ट्रेनों से उत्तर पश्चिम रेलवे की 80% यात्री ट्रेनें और 61% मालगाड़ियां संचालित हो रही हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की ओर से मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत फीच गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग और सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति तथा जैविक और कंपोस्ट खाद के महत्व की जानकारी दी। काजरी की ओर से ग्राम सोइत्रा में कृषक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज परिहार ने किसानों को मृदा परीक्षण, स्वास्थ्य कार्ड और संतुलित उर्वरक उपयोग की जानकारी दी। कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर बी आर चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर को साल 2025 का सर्वश्रेष्ठ AICRP तिल केंद्र पुरस्कार मिला है। देश भर के 28 केंद्रों में उत्कृष्ट अनुसंधान, उन्नत तकनीक विकास और तिल की 9 उन्नत किस्मों के विकास के आधार पर मंडोर को ये सम्मान दिया गया। जोधपुर रेल मंडल की ओर से आयोजित स्वच्छता कार्यक्रमों की बदौलत 10वें स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में उत्तर पश्चिम रेलवे ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। रेलवे बोर्ड के मूल्यांकन में उत्तर पूर्व रेलवे पहले और दक्षिण रेलवे तीसरे स्थान पर रहे। जोधपुर में मारवाड़ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परंपरा भोगी शैल परिक्रमा का आयोजन हुआ। अधिक मास ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर ध्वज पूजन के साथ शुरू हुई परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जिले भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत इन दिनों विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 5 जून तक चलने वाले अभियान के तहत जल सेवा, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जल की महत्ता बताई जा रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में जिले के ओसिया में रिचार्ज शाफ्ट का लोकार्पण और वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। ईद उल अजहा का त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया गया। ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर अमन शांति और कौमी भाईचारे की दुआ मांगी गई। जोधपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवाना ने देश री ताकत, उम्मीद और उजड़ा भविष्य री निशानी बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जरूरी तादाद में मौजूद, पूर्ति सामान्य। मुख्य सचिव हालात रो जायजो लीनो। राजस्थान 7,19,32 आभा आई डी बनार देश में दूजा पायदान माथे पुग्यो। और प्रदेश में आंधी बारिश रे कारण आवता सप्ताह में पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवण रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवाना ने देश री ताकत, उम्मीद और उजला भविष्य री निशानी बताया है। वे आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना रो फायदो लेवण वाला ने संबोधित कर रही है। राष्ट्रपति कहो कि समाज रा सगला तबका रो माली तौर और भणाई लिखाई रा हलका माए विकास असली बरकत है। श्रीमती मुर्मू कहो कि वजीफा री सरकारी योजना मा जनजातीय समुदाय रा नौजवाना ने आला दर्जा री भणाई लिखाई और मौका देर वानी जिंदगी माए बदलाव लाई है। वे देश माए प्रतिभा री पिछाण, पोषण और विकास सारू सही मंच मुहैया करावन री जरूरत माथे जोर दीनो। राष्ट्रपति नौजवानों वारी जड़ाओं जुड़िया रहवन बाबत कहो।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा, सुल्तानपुर समेत 3 ठोड़ा करीब 39,18,00,000 रुपया खर्चों कराई चिया विकास रा काम जनता ने सौंपया और नुआ कामारी शुरुआत कीनी। आमाय इंडोर स्टेडियम और पुलिया बनावन रा काम में शामिल है। ई मौके बिरला कहो के सरकार किसाना ने हमारी उपजरा वाजिब दाम दिरावण सारू खेतीबाड़ी आधारित उद्योगा ने बधावो

0: रही है। वह कहो कि सरकारी मोल माथा गेहूं री खरीदी री आखिरी तारीख ही 6 जून कर दी रीची है। श्री बिरला कहो कि हर रहवासी री मूलभूत जरूरतां पूरी करण सारू सरकार लगातार जतन कर रही है।
1: सुल्तानपुर के गांव के अंदर अंतिम छोर पे बैठा वह गरीब व्यक्ति भी देश और दुनिया के कंपटीशन में भाग लेकर देश का नेतृत्व करे, दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा ले रहा है। इसीलिए खेल के क्षेत्र के अंदर केवल एक स्टेडियम नहीं बन रहा, या बगल में चले जाए तो महात्मा गांधी स्कूल में 50 लाख की लागत से खेल स्टेडियम का काम पूर्ण होने की दिशा में, आने वाले समय के अंदर 1 करोड़ की लागत से और स्टेडियम बनेगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सागे मुलाकात कीनी। सोशल मीडिया रे जरिए मुख्यमंत्री बतायो के मुलाकात रे दौरान राज्य में नौजवाना रा कौशल विकास, नौकरी धंधा रा मौका और खेलना रा बारा में चर्चा करी जी। श्री शर्मा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी सागे चर्चा कर राज्य में नवीकरणीय ऊर्जाओं जुड़ी जानकारी दीनी। प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस रिपूर्ति सामान्य है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज राज्य में ईंधन रिपूर्ति व्यवस्था रो जायजो लीनो। इस दौरान वे प्रदेश रा पेट्रोल पंप डीलर सागे बातचीत कीनी। तेल कंपनियां रा नुमाइंदा बतायो कि रसोई गैस री टंकियां बुकिंग रा 3 दिन में पुगाई जा रही है। वे बतायो कि मार्च और अप्रैल महीना पाछे 5 किलोग्राम वाला सिलेंडर री बिक्री में करीब 250% बढ़ोतरी हुई। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग रा सचिव अम्बरीश कुमार कहो कि लोगों ने ईंधन रिपूर्ति रे बारे में चिंता करन री जरूरत नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का न्यू लीरीजी परीक्षा री कॉपियां माय मिली गलतियां रा सत्यापन और कॉपियां ओजू जंचावन री अर्जी देवन सारू पोर्टल आज शुरू फेंक्यो। पोर्टल 6 जून तक खुल्यो रहवेला। CBSE रे मुजब ओसु बीतो जहां चोड़ी कॉपियां ने प्रति ले चुके विद्यार्थियां सारोई मुहैया कराई चियो है। दिल्ली री एक अदालत नीट परीक्षा पेपर लीक मामला माए आरोपित 5 जना ने जेल माए बंद राखण री मियाद ई महीना री 15 तारीख ताई बधा देनी है। CBI ई मामला माए हाल ताई 13 जना ने गिरफ्तार कीना है। ध्यान जोग है कि पेपर लीक रा आरोपां पाछे लाडला महीना भी नीट UG परीक्षा रद्द कर दी रीजी ही जो 21 जून ने पाछी ली जावेला। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज सुप्रीम कोर्ट रा 5 नुआ जजा ने पदरी शपथ दिराई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली सागे आला वकील वी मोहना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम री सिफारिश पाछे केंद्र री मंजूरी शपथ दिराई ची। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा आईडी बनावण रा मामला माए राजस्थान देश माए दूजी ठौर माथा आग्यो है। राज्य माए हाल ताई 7,19,00,000 बत्ती आभा आईडी बनाती रीची है। आभा आईडी किनी रहवासी रा स्वास्थ्य रो रिकॉर्ड हिफाजत उन राखण रो डिजिटल जरियो है। 14 अंक वाली ई यूनिक हेल्थ आईडी जूनी बीमारियां जांच रिपोर्ट और दवाइयां रो ब्यूरो रखो जावे है, जिनो जरूरत पड़िया डॉक्टर मरीज री स्वास्थ्य री लाडली जानकारी आसानी हासिल कर सके है। केंद्र सरकार खेत बचाओ अभियान रा तहत जोधपुर रा कृषि विश्वविद्यालय माए मिट्टी और पानी री जांच सारू प्रयोगशाला शुरू कीनी है। विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जतावत बतायो कि इनो मिट्टी रा पोषक तत्व और पाणत सारू पानी री गुणवत्ता री परख करी जावेला, जिन री जांच रिपोर्ट रे मुजब किसानां ने वैज्ञानिक राय दी जावेला। 14 मानका माथे करी जावण वाली ई जांच किसानां ने सही तादाद माए खाद लेवण माए मदद मिलेला। खेत बचाओ अभियान रा तहत भीलवाड़ा माए किसान गोष्ठी राखी ची। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर में एक पटवारी ने 50,000 रुपया घूस लेता थका पकड़ लीनो। वहां माथे खातारा बंटवारा री एवज में 1,00,000 रुपए

0: एक घूस लेवन और घूस री पहली किश्त रातौरों आ रकम लेवन रो आरोप है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी रा कामकाज रो जायजो लीनो। अहलकारां सागे मीटिंग में वे साफ सफाई रा काम में जनतारी भागीदारी ने मजबूत बनावन रा हुकम दीना। मुख्य सचिव कहो कि न्यारा न्यारा शहरी निकाया ने एक दूजा रा काम करन रा बेहतरीन तरीका और नुआ काम री जानकारी देवनी चाहिए। रबे मौसम राज्य रा घनखर हलका माए आंधी बारिश बीच पारो सामान्य 5 डिग्री सेल्सियस ताई उतर गयो है। अंधड़ और जोरदार बायरो बाजन रे कारण कई ठोणा नुकसान री शंका है। माना जैसलमेर खबर नवीस बतायो के वठे काल रात आया अंधड़ रे कारण कई ठोणा बिजली री पूर्ति ठप वेगी।
1: ग्रामीण इलाकों में आंधी तूफान और बारिश से विद्युत तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिले में 1500 से अधिक बिजली के पोल गिर गए, जिसकी वजह से करीब 400 से अधिक गांव और डाणियों की बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी है तथा क्षतिग्रस्त लाइनों को दुरुस्त करने का कार्य तीव्र गति से जारी है। खेतों में लगी सोलर प्लेटों को भी भारी नुकसान के समाचार है। वहीं जिले में वन संपदा के साथ सम स्थित रिजोर्ट में भी भारी नुकसान हुआ है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: मौसम विभाग आज ही जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर संभाग रा कुछ हलका माए बादलहरी गाज सागे बिरखा वेवन और कठे कठे ओला पड़बा रा आसार जताया है। महकमा रे मुजब काल और 4 जून नई बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग माए कठे कठे आंधी बारिश माए ओजू बढ़ोतरी री संभावना है। इन दौरान कठे कठे तेज अंधड़ सागे बिरखा वेवन री संभावना है। मौसम महकमा रे मुजब आंधी बारिश रे कारण आवता सप्ताह माए पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवन रा आसार है। प्रदेश माए अपराधा री रोकथाम असामाजिक तत्वा माथे लगाम लगावन और यातायात नियमा री पालना तय करण सारू नाकाबंदी अभियान चलाई चियो। पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह बतायो के काल चलाई चिया ई अभियान रा तहत 74,000 बत्ती गाड़ियां री जांच कर और 15,000 बत्ता चालान काटी चिया। देश री 42 बेहतरीन पंचायतों ने काल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 नवासी चावेला। कार्यक्रम में 34 ग्राम पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और 8 पंचायतों ने नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार देर नवाजी जावेला। नवाजी जावन वाली पंचायतों की ओर वाना कामकाज रा तरीका री जानकारी दी जावेला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 सारू 31 जुलाई ताई ऑनलाइन तरीकों अर्जियां दी जा सके है। ओ इनाम वीरता, विज्ञान, पर्यावरण, समाज सेवा और कला समेत न्यारा न्यारा हलका माए बेहतरीन उपलब्धियां हासिल करने वाला बच्चा ने दियो जावे है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 4-8 जून ताई अहमदाबाद माए राखी जावेला। अमरीका रो योगा एथलीट दल ही इन माए शामिल भेला। अमरीकी योगा एसोसिएशन और USISF रा संस्थापक और अध्यक्ष बलविंदर सिंह 11 सदस्यों वाला अमरीकी दल री अगुवाई करेला। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड बीच मौजूदा सीरीज रो तीजो और आखिरी T20 मैच आज रात 11 बजे शुरू भेला। वो मैच इंग्लैंड रा टॉन्टन में भेला। भारत यस्तिका भाटिया और जेमिमा रोड्रिक्स रा अर्धशतकां री बदौलत सीरीज रो पहलो मुकाबलो 38 रन जीत्यो हो, जबकि दूजा मैच में इंग्लैंड ने 26 रन जीत मिली ही। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवाना ने देश री ताकत, उम्मीद और उजड़ा भविष्य री निशानी बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जरूरी तादाद में मौजूद, पूर्ति सामान्य। मुख्य सचिव हालात रो जायजो लीनो। राजस्थान 7,19,00,000 बत्ती आभा आईडी बनार देश माए दूजा पायदान माथे पुग्यो। और प्रदेश माए आंधी बारिश रे कारण आवता सप्ताह माए पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवन रा आसार। इंसान

0: गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला नमस्कार
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
2: पर अब तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: कार्यक्रम किसान वाणी सुनना रहे सभी किसान भाई बहना ने, भाई अर्जुन का निशु
5: और बहुरी का निशु, मोकला मोकला राम राम
4: राम राम राम राम बहुरी भाई, राम राम
5: राम राम अर्जुन भाई। अर्जुन भाई, जको अब मौसम है वो है जको यहाँ मान लो का अगली जगह अपनी फसल की जगह तैयारी है बिके खातर है जो जो तावड़ो ची या तपड़ो ची हो विषय मान लो कब क्यों को नहीं तपियो पर है जो देखो का बाइंता तो अपन करना ही और खट्टा खट्टा तो देखो का बिरखा इतनी बढ़िया होगी के पर जो अपना बाइंता हो भी गया और मान लो कोई यहाँ सोचे के लंबी बाह है अभी तो वह मान लो मोटलियो नाच गिरेगा या मान लो के ज्यादा टाइम देख के यहाँ करें तो वह थोड़ा बहुत है जो बरसात की उड़ीक कर सके है।
4: और एक मन आप देखो के कट्ठा कट्ठा जिया मान लो के बरसात हल्की हुई है या हड़ारी कोनी हुई तो भी कमान देखो किसान है एकदम सब बढ़िया तैयार कर पाट पूट करा के एकदम खेती तैयारी कर ले एक माना आपने वो फायदो जब के जिया आप मान लो के 10 दिन 5 दिन 20 दिन बाद बरसात हो जब भी आप खेती बाड़ी करा तो भी कमान आपने वो एक तो देखो खरपतवार नियंत्रण हो जेबी से दूसरी बात के आपने जिखी फसल भावा भी के कोई कीड़ो कोई लट्टे चीजा कौन लगे क्योंकि अबार के टाइम के मौसम का मैंने जमीन ने अगर पलटी देवा जेका नीचे कीट पतंगा जगह पनप रहे अपने फसल ने नुकसान वह ऊपर आ जाएगा ऊपर आने जैसे जिया मान लो के कई बार अंधी चल है तावड़े जोर का पड़े है तो बीच से खत्म हो जाए तो अबार को जो टाइम है जो बहुत बढ़िया है कटेगटिया मान लो के किसानियां देखे पहले से तैयारी करेड़ी ही तो बटैया मान लो के मैं जोर को बटे बात

0: कर दिया, लेकिन जट्ठे में नहीं हुए ना बट तक किसान। अब ये क्या जी आप लोग खेत का मान कोई खाद खूद है खिंडा दे बा तोड़ कर ले वो जा बांस काट ले, एक हिसाब से खेती तैयार रखनी चाहिए। क्योंकि अब देखो दो चार दिन मौसम इसे हो रहे हो क्या अंधी बिहारी पे ले छंटा बिहारी भी टेम्परेचर ज्यादा जाता है भी अंधी आ जाए अंधी के साथ क्या थोड़ी थोड़ी छट्टा बे तो अब ये मालूक है लगभग ये मालूक है मानसून अब का थोड़ा जल्दी आने की संभावना है।
1: और देखो के आप लोग जो को एरिया बैठे हैं मान लो के आंधी का सा गई है जो को शुरुआत में है जकी बिरखा ओए और खास करके देखो के कई साला शु है जो को आपा काली पीली आंधी कोन देखी पर अब की बार है जो को काली पीली आंधी भी आपा देखे तो जका किसान भाई है जकी मान लो का पाड़ करवाइड ही तो पांके लिए बहुत ही बा बढ़िया भी है क्योंकि जकी बात छणवा माटी आवे पर बहुत ही बढ़िया माटी होवे है। और एक अलावा देखो के अब जो को अपनो समय है खाली जो को समय है तो इम है जो को किसान भाई है जो को बोझा डाली करनी है या आपके खेत की बाड़बंजी करनी है और सागई भाई देखो के खेत चद भी बोवा तो खेत की तैयारी बोझा डाली और बाड़बंजी कर की तो वही है पर कटे कटे की है के पेड़ पौधा की जगह आपने जानटेंगे टनी बे नीचे ओडी होवे कदे रोडा की नीचे ओडी होवे कई पेड़ पौधा और भी अगर आप लगा रखे तो बांगे टनी अगर नीचे ही तो आप जद भी पाए तो करावा बुआई करावा तो बाकी एक ट्रैक्टर कह दे
0: हाँ
1: तो बन है जो को देखो के समय शु है जो कि बांगे छंगाई आपा कर देवा जिसे के की रात भी अगर आपन बुआनो पड़े तो यह कोने का भैया है जो को आपने समस्या आवे तो खेत की जो की तैयारी है वह पूरी तरीके से आपा करके रखा जिसे के आधी रात को भी अगर आपा खेत में जावा तो आपन यह देखने को नहीं पड़ेगा भाई आ समस्या है जो की आपने आगे आवेली
0: आवेगी। देखो बोल रहे थे बहुत बढ़िया बात होता है बार के जी मान लो अपना जगह भी खेत में कोई छोटा पेड़ पौधा है बाकी छंगाई करके आपन जो कोई दरखत राखना है कोई रूख अपन राखना है कि भाई वो तैयार हो गो अगले सीजन का इन वो बड्डो जाओ तो अबार का मौसम इशोरी के जिया मान लो का आपा खेती बाड़ी के माने अपने खेत में कोई बोझा काटे बे टाइम अपन ने बेरो बढ़ जाके भाई ओ के लियो बहुत बढ़िया अब का तो थोड़ सो एक बिलान को तो इन आपा डांट लेवा कोई जिया मान लो का कोई बढ़िया झाड़ी होगा भाई आ झाड़ी बहुत बढ़िया है तो बिना डांट लिया अही आपने जगह खेत का मान जगह खेत में रूख पनप रहा है बाको अगर आपा छोटा छोटा ना अगर आपा अब बार के टाइम में जिया मान लो आपा अनुभव है कभी ओ पाड़ में तो यहाँ की प्रक्रिया अगर आपा चालू कर दिया तो आने वाले समय में बरसात का मान जी आपा का नया रूख लगावा आपा खेती बाड़ी में तो वो भी कमान देखो बहुत बढ़िया कारगर साबित हो क्योंकि हर खेत का मान आप यहाँ देख लिया के एक दो अगर आपा जंटी बचा ले वहां बाय करते टाइम यहाँ कह लिया भाई अट्ठा आज आंटी करिए लकड़ी रोप दिया या अन्य कोई साधन कह दिया भाई इन बावा जना छोड़ दियो तो बिल्कुल काम बहुत बढ़िया चीज होगा।
1: बिल्कुल जगह छोटा बोझा ही बंक है जो को थोड़ी सी अड़कन करके छोड़ना जद के का ट्रैक्टर है जो को भी सो आपनो बचाव हो जावे और जो को देखोगे जकी भी आपा फसल बो वहां और बिकी भी या मान लो गए खेत आपनो की तरीका को है कौन सी फसल ना मांगे मानना है सारी जानकारी अपन रखनी बहुत ही जरूरी होवे और देखो के खेती जद भी आपा करा तो जिया मौसम होवे भी के हिसाब से ही करा कह रहे मौसम का अनुकूल ही है जो को आपा ने खेती करनी चाहिए तो खेती जिया ही आपा करा तो जिया मौसम देख की और बाद में ही अपनी खेती ने जो को आपा करा तो मौसम की तरीके को है की तरह के शो आपा खेती करे ए चीज आपा थोड़ी सी ध्यान में रखा का भाई एक तो जिया मान लो के सही फसल और सही किस्म को है जो को आपा चयन करा के आपने खेत में है जो को आ फसल है जो की ई वक्त हो सके तो और आपनी माटी है जो की ई फसल ने मानना है तो आपनी माटी के अनुरूप आपा फसल को है जो को चयन करा और बढ़िया किस्म का बीज है जो का आपा लेवा क्योंकि जब आप बढ़िया किस्म को बीज लेवांगा तो वो बीज है जो को पूरो बीज है जो को एक सागे उगेगो और कई बीज आप यहाँ ले लो घर का करेड़ा बीज हुए और बा छंटेड़ा नए हुए तो बिम के कई छोटा मोटा बीज भी हो जाए बड़ा बीज भी हुए तो एक बीज घर को अगर आप ले रहे हैं तो एकदम छांट के भी बीज ने तैयार रखांगा एक सार बीज है और सागे देखो कोई टूटो फूटो बीज नहीं हुआ इनके अलावा जो मान लो कोई जानवर लागेड़ो वो बीज भी नहीं होना चाहिए तो के जानवर लागेड़ो बीज है वो पूरी तरीके से उगे को नहीं कटो फटो बीज है वो पूरी तरीके से उगे को नहीं तो जब भी आपा बीज लेवा तो बीज है जो को बिल्कुल सही चयन है जो को आपा करांगा बीज की साइज है बाबड़िया बीज एकदम शुद्ध है तो ताकि वो बीज है जो को एक सौ है जो को पूरे खेत में उगे।
0: और एक सगा भी देखो के थे बहुत बढ़िया बात होता ही है कि जिया मान लो को आपने जो भी बीज है समय पर बुआई है आपा ई बात को ध्यान रखा कि अगर जिया मान लो आपने खेत को बीज अगर आपने तैयार करेड़ो है कई बार आपा यहाँ देखा कि भी लेनी पर आपने बहुत जोर को गुआर हो मूंग भी आ रहा मोट भी आ बाजरा तो जिया को नयो अगर आपा बीज रख लिया क्या कई किसान तो यहाँ करे जी बहुत जोर को बाजरो तो बेका सीटा ही रखे तो ये टाइम के वो काट के रख ले तो बिक मैं देखो कि कोई इलीग लट्ट खपरी वो कौन लागे क्योंकि देखो यहाँ मान लो कह पौधे के अगर समेत अगर आप कोई बीज रखाने तो बिक मान देखो तो बिक मैंने कोई खपरी और लट लागनी बहुत कम संभावना रहे। दूसरी बात कह जिद भी आपने कोई जरूरत पड़गी आप जी मान लो कई किसान तो है कह जी अभी बढ़िया बादलो हेड़ो जेठ में बादलो गिरना रहे तो भाई देखो कार्ड की वो कर। दूसरी बात अगर आपने कोई बाजार से लानो पड़ गयो कोई भी आपने बीज लानो है तो पहले भी बीज को आपने आ देखना है को कद को बनेड़ो है उन्सी साल को बनेड़ो है कितना दिन तक वो बीज सका ये बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जठों भी आप बीज खरीदा भी को बिल लेना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार यहाँ जा कह साहब मार तो अब कहने एक सागर को बीज मारो तो मारो तो देखो कह मूंग होया को आगे बहुत जोर का मूंग होया जी कह मैंने आ गलती हो जा कह जित आप कच्चो बिल ले लियो वो यहाँ पर्चियां बना के दे दियो कह ले जाओ भाई बढ़िया मूंग है तो वो अगर पक्को बिल हो ना जब तो आप भी कर जाके करा के भी माने बीज तू खराब दे दियो तो एक विशेष बात को ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी बीज खरीदो चाहे मूंग खरीदो बाजरी ग्वार जो भी आपने खरीदा तो भी को बिल लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल और देखो के जकी आपने एरिया में फसल होए खास करके आपन बाई फसल है जकी बोनी चाहिए क्योंकि आपनो जो मौसम है वो की तरीके को मौसम है भी हिसाब से अगर फसल बोवांगा तो आपने फसल है जकी बढ़िया होगी। और एक मान लो का आप इसी फसल बोला जकी पानी बहुत ज्यादा जरूरत हो तो आपने जो क्षेत्र है भी पानी है जकी कमी रहे है तो जो आपनो क्षेत्र है जकी जमीन आपनी मानना है भी हिसाब से ही अपनी फसल है जकी आप बोवा और एक जो जल को जो संरक्षण है वो भी आप जरूर शुरू करा क्योंकि मान लो के आपने खेत में अगर आप डिग्गी बना रखी है और तो भी कोई जो अपन फायदो मिल जाए जब भी मान लो के खेत में अपना ट्यूबवेल नहीं है कुओ नहीं है पानी की सुविधा नहीं है तो अगर डिग्गी को कर रखी है तो भी से भी अगर आप पानी देवा तो अपनी फसल को थोड़ा बचाव हो सके है तो जल ने भी बचानो जरूरी है। दूसरी फसल इसी बावा के भाई है जो बा कम पानी में भी हो जावे क्योंकि जो को एरियो आपनो है कि कम पानी में होवे तो भी हिसाब से कम पानी वाली फसल ही आपने ज्यादा बोनी चाहिए क्योंकि ज्यादा पानी वाली अगर आप लगा देंगा तो आपने पानी तो होगा को नहीं बा फसल है जो की आपनी कमजोर रहेगी तो जिसो आपनो क्षेत्र है भी हिसाब से ही अपन है जो को बीज है जो को लगाना ही
0: लगाना चाहिए। दूसरी बात कह दिया भी मान लो आपने क्षेत्र है आपने जिया मान लो चूरू क्षेत्र है या आपने चिक्कर है बीकानेर आपने जो कोई इलाको है बीकानेर ने बिको जो कोई वातावरण है तो बिको हिसाब से ही आप अगर कोई खेत में बीज गिरा ना तो बिको अपन मोकड़ो फायदा हो जा। कई बार आप यहाँ देखा के भी मूंग बहुत तगड़ा है कौन से क्षेत्र का वो ध्यान को दिया जिया मान लो उत्तर प्रदेश का मूंग है तो आपने अठे गिरे तो कई कई किसानों में तो ये कोई हुआ है भी बढ़िया पैदावार हो जाए लेकिन आज सैकड़ों को जरूरी को नहीं बी हुआ है। अगर आप कोई भी चीज अगर आपने खेती बाड़ी का मामले में अगर आपने वातावरण के अनुकूल आपको कोई करा तो आपने जिकी खेत की मिट्टी है ना देखिए अगर आप जांच करा के रख लेवाना है तो आपने बेरो पड़ जाए कि आपनी जिकी मिट्टी है खेत की मृदा है भगवान कौन सा पोषक तत्व है कौन सा कोनी एक मान कौन सी फसल हो सके कौन सी कोनी हो सके कौन सी खाद गिरनी है कौन सा बीज गिरना है सगली जानकारी आप रखनी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल और देखो के जेको आप फसल बो रहे अगर मौसम का अनुसार है जकी फसल बोवांगा तो देखो जका बीमारी और कीट पतंगा जका भी लागे है रोग लागे है बस भी बचाव हो जावे है तो इसी फसल भी आपने उगानी है। और सागे जगह फसल को विविधीकरण हो भाई फसल ने जो भांति भांति की लगानी एक ही फसल है जगह आपने खेत में आपने नहीं लगानी है तो फसल ने भी है जो आप फोर बदल करके लगाता रहा कभी अब क्या रहे जो को मूंग बाया ही अब क्यों आर गुआर बादियो अब क्या रहे जो को बाजरो बादियो ही हिसाब से है जो को फेर की है जो को अपनी फसल ने आपा लगावा जिससे कि आपने फसल उत्पादन में है जो की जो को मान लो वृद्धि है जो की ज्यादा हुए उत्पादन है जो को आपनो ज्यादा हुए।
0: और एक साथ अभी देखो कि अगजी मान लो आपने कोई फसल भाई है आप मौसम का अनुकूल भाई है अभी के बाद में अगर आप सगली चीज जानकारी करके भाई है अभी के मान दिया मान लो माटी जांच कराई है पानी जांच कराई है आपनों सगड़ी जांच कराने के बाद में एक मोगला फायदा हो जाए क्योंकि एक तो देखो सबसे सब मोटो फायदा ये हो जा कि ये फसल में कोई भी आपदा को नया होने के बराबर हो क्यों कि आप हर चीज जानकारी करके लिए मौसम के हिसाब से आप आए यहाँ अपनी माटी जांच करा के लिया आप बीज भी बढ़िया कंपनी से लिया या बढ़िया आप घर तैयार कर रहे हो वो लिया तो भी कई हिसाब से चले। दूसरी बात आप खेत की जी माटी है जी मान लो अगर आप बढ़िया अभी के मायने खाद गिर रही हो तो बिल्कुल जो जल डालना क्षमता शक्ति है ना बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि तैयार आपने खेत बढ़िया तैयार कर रहे हो जी मान लो आपने

0: रुत गवान कुर्सी पर चलो बिके हिसाब से बावा तो एनिया की छोटी छोटी बात एक माने। दूसरी बात, अगर आप मौसम का अनुकूल खेती बाड़ी करेगा तो एक माने किसानों को देखो लाभ ही लाभ होगा,
1: बिल्कुल
0: को साधन बढ़ेगा।
1: देखो हाँ, लागत में भी बंगे कमी आवेगी के बारिश को और तापमान को जब पूरा अपन अनुमान हो जाए ने तो मान लो कि सही खाद है, सही सिंचाई है, सही दवाई है, जगह को सारी की सारी चीजों को अपन है जो समय पर पूरा पतो चल जाए तो अपनी लागत में है जो कमी हो जावे। और खास करके जगह प्राकृतिक आपदा हुए वहां से भी है जो होना रहे नुकसान से है जो अपनी फसल ना आपा बचा सका का भाई है जो ई टाइम है जो आप पूर्व अनुमान जगह चीज को हो जाए तो आप बचाव कर सका। और खास करके अपना पर्यावरण को संरक्षण भी तरीके से आप खेती करांगा तो संरक्षण भी हो वे लो।
0: और देखो भौरी भाई आप बतलाव तो और भी कर सा और किसान उड़ीक रह के कोई मनोरंजन करवा तो करावा किसानों को मनोरंजन
1: सुनाओ सा।

0: तो किसान भाई बारा मिठो सो भजन से त्रिलोकी रो नाथ गायक लाका धनराज सोनी जोधपुरी की आवाज का मायने है। और देखो मोरे भाई के जखा भी भजन है तो बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से सुंदर तरीके से सजाया गया, एक एक शब्द अलग अलग नाम से बोले गया है। और देखो किसाना ने बहुत बढ़िया पसंद आयो हो गयो। अपा अगली बात तेवड़ा के जब बार आपा बात कर रहा है जी हमारे मौसम के अनुकूल आपा कोई भी खेती करा तो बिक को आपने कितो लाभ हो कितनी हानि हो इसके बारे में चर्चा कर। अब देखो के दूसरी चर्चा है कि जिया मान लियो के किसान है, किसान उत्पादन संगठन मतलब ये मान लियो के आपने खेत का मायने अब आस पास का जिया मान लियो 100, 50, 20, 30 आदमी इकट्ठा हुआ।
1: बिल्कुल थारोकरण को मतलब यू है कि भाई किसाना को एक समूह जिके मान लियो के भी मैं जहाँ 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, 32 है, 300 है कितना भी आदमी हो जावे तो वो एक समूह है जकी बा मान लियो के जो कृषि उत्पादन जकी भी व्यवसायिक जकी गतिविधियां है बाकी बंक ऊपरी वो काम करे है, है। और इनको देखो उद्देश्य यही है कि भाई जगह छोटा और सीमांत जगह किसान है बाकी आय ने बढ़ानो और खास करके जगह बिचौलिया ही बन है जो को खत्म करनो और जो को कृषि को आदान प्रदान है जो बीज है खाद है वो बाजार तक है जो को सीधो पहुंचानो
0: पहुंचा दे। और एक मान देखो जो मान लो कई बार आप यहाँ कर जाके भी आपने कोई भी चीज है आपने खेत में बढ़िया फसल हो रही है तो आप यहाँ को नहीं के भी फलाने दुकान पर देखे यह नहीं, अगर आपने समूह हो रहा है एक बड़ो प्लेटफॉर्म अगर तैयार कर रहा है तो आपने कहीं चला की खुद व्यापारी होगा क्योंकि आप जो मान लो संगठन 50 किसान को हो रही है या 100 किसान को हो रही है तो जो मान लो आपने जितनी भी जमीन है आप कोई बढ़िया पैदावार कर रहे हो कोई भी चीज ले रहा तो वो संगठन का मान जो मान लो भाई आपने 100 कुंटल, 1000 कुंटल, 2000 कुंटल कोई भी चीज होगी तो बिना आप संगठन के तौर पर दी तो भी देखो मोकड़ा रुपया मिले आप
1: बिल्कुल
0: हर प्रकार को अनाज है सामने मिले ना अलग ही रुपया मिले
1: बिल्कुल जो को मान लो के जो सामूहिक जो की खरीद आपा करांगा जो मान लो के बीज खरीदा खाद खरीदा कीटनाशक खरीदा या मशीनरी खरीदा तो थोक में अगर आपन खरीदांगा तो वह आपन है जो को कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएंगे। यह मान लो के अगर आप एक जनो अपने खेती खातर है जो को बीज लाने जावा तो आपन है जो को ज्यादा पैसा मिलेगा, अगर आप एक मशीन अपने खेत खातर खरीदने की जरूरत है तो वह आपन ज्यादा पैसा मिलेगी, पर अगर ऐसी चीजा आप अगर थोक में खरीदेंगे तो वह है जो को आपन है जो को कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएंगे
0: तो
1: इनको आपन फायदो होवे लो।
0: दूसरी बात अगर जो मान लो कोई भी आपा नियंत्र लेना है कोई भी किसान नवाचार करना है जो मान लो कोई भी बाजार का मायने खेती बाड़ी का मायने कोई नई मशीन आई रही है जो मान लो कोई ड्रोन आई रही है अन्य कोई भी जिका मन चीज आई रही है अगर आपा समूह का मायने सब इकट्ठा होकर अगर खरीदेगा ना तो आपने देखो पैसा भी कम लगेगा और आपने चीज भी बढ़िया जाएगी।
1: बिल्कुल और देखो एक जगह कह करना बेहतर मार्केटिंग जगह बढ़िया होनी चाहिए क्योंकि जब आपने जानकारी और पहुंच बाजार तक होगी जब भी वह है जो मार्केटिंग बाजार की जो गतिविधि वहां को अपन जानकारी होगी और भी बाजार की गतिविधि को जब अपन जानकारी को पता होगा तो देखो कि जगह बिचौलिया ही आपने घर अनाज ले जाए ही तो वह देखो दलाली को काम करे हैं और भी दलाली में देखो अपन जो अनाज जितो बिकनो चाहिए वो मूल्य अपने तक अपन को नहीं मिले, पर अगर आप समूह के हिसाब से काम कर रहे हैं समूह में मिल रहे हैं तो एक तो आप बिचौलिया की जगह मार्केटिंग दलाली है वह खत्म हो जाएगी और आपने जो की उपज सीधी है जो को बाजार की मंडिया तक पहुंच जाएगी क्योंकि आप जगह समूह में इतना किसान भाई जुड़े रहा तो हर किसान भाई की खटे न खटे कोई न कोई जानकारी कोई न कोई काम में वो कह कर कोई आदमी अग्रसर हो तो वो एक फायदो है जो को आपने जरूर शू मिले
0: जरूर मिल जाए। दूसरी बात अपन जो कोई कोई किसान है जो मान लो कोई समूह में जुड़ जाए कोई किसान कमजोर है जो मान लो खेती बाड़ी का मामले काम के मायने थोड़ा कमजोर है या कोई आमदनी का मायने कमजोर है तो भी मायने फायदो जाके जो मान लो सगला किसान लाए की भी खेत में कोई काम कराने तो फट काम कराते भी वो सक्षम को नहीं के बीज बाज को लेना तो भी सब मिलकर भी कोई काम करते संगठन में हो जाके कई बार आप यहाँ देखा के भी फलाने खेत में ट्रैक्टर चाहे मालम कर चाल सी अः नहीं हर चीज का मायने भी चारों में सहायता हो जाए जहाँ छोटा किसान है बेबी के मान जुड़े है कोई आपको जरूरी को नहीं बड़ा बड़ा हुआ एक मान जगह मान लो कोई छोटो किसान स्तर पर है जब छोटो किसान है वो भी इस समूह का मान जुड़ सके बड़े स्तर पर है तो बड़े स्तर पर जुड़ सके मतलब यह मान लो किसान ना को आमदनी क्या बढ़े बी के आधार पर यो संगठन एक बनाया गया है।
1: बिल्कुल, और एक देखो के जकी भी आपने फसल है आपा निकाला तो देखो भी कृषि उत्पादक जका भी होए तो बाकी ग्रेडिंग करनी बहुत जरूरी है। जो को अनाज आपा काट रहे अगर ग्रेडिंग करांगा भी की तो भी अनाज को है जो को अपन ने मूल्य अलग शो मिलेगो। ये मान लो के आप बड़ी अनाज एक का निकलो तो भी क्यों मूल्य है जो को अपन बढ़िया मिलेगो भी अगर थोड़ो हल्को है भी की कर लिए तो वो अलग मिलेगो और एकदम थोड़ो कम हो जाए जो को मान लो कई बार के एक खराब भी कौन कह सका लेकिन गाय भैंस की चोरी बनाने के काम आ जाए वो तो भी के हिसाब से अपन भी का पिसा मिलेगा। तो ग्रेडिंग करनी बहुत ही जरूरी है जिकी ग्रेडिंग करांगा पैकेजिंग करांगा या मान लो के प्रोसेसिंग जकी भी आपा करांगा तो बिको है जो को आपन लाभ है जो को
0: ज्यादा मिलेगा। और एक मन अभी देखो के जिया मान लो का आपने वित्तीय सहायता ही मिले के मन कोई आ देखो के कोई आपने लोन की चीज प्रक्रिया हुआ है भी मिल जावे जो मान लो कोई बीज गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है तो वो भी मिल जावे कोई मशीनरी करनी लानी है तो वह भी देखो आपन मिल जाए। एक मान हुआ है कि जो मान लो के बड़े स्तर के ऊपर जो आप काम कर लियो तो भी के हिसाब से आपने भी के हिसाब से सहायता भी कर सके आपको जरूरी को नहीं कि एक दिन लिया नहीं सब मिलकर अगर कोई भी काम तेवर छाने तो भी कहना देखो कि जितनी भी आपने गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी मिलनी हो या कोई योजना को लाभ लेना हो हर तरीके की जानकारी रखे भी कहना आपने मौको फायदा हो जाए।
1: बिल्कुल, और देखोगे आजकल नया नया नवाचार नई नई तकनीक है जकी चाल रही है तो देखो कृषि जगह वैज्ञानिक है नई नई आपने जानकारी देंगे तो ऐ जकी जानकारी है आ मान लो के किसाना की आसान पहुंच हो जाए बैठे तक। अगर आपन जानकारी नहीं होगी तो आप देखो आपने खेते की सीमित होगी रह जावांगा पर है जो को समूह से जुड़ जावांगा जद है जो को आपन ये जानकारी को है जो को मोकलो फायदो मिलेगो और इम है जो को देखो सस्तो है जो को ऋण भी है जो को सस्तो मिलेगा क्योंकि संगठित होने के कारण बैंक से लोन जद भी आप प्राप्त करांगा जद आसान तरीके से आपने मिल जाएगो बाजार की सारी जानकारी मिल जाएगी तो आ सारी जानकारियों को अगर फायदा उठावांगा आपा तो किसान उत्पादक संगठन को आपने जो को मोकलो फायदो मिलेगो। और अब देखो के घड़ी सारो कर रही है कार्यक्रम को वक्त है वो पूरा हो रहे है तो आपने किसान भाई बहना से फेरू मिलन तीन लेवा सीख और करा
0: राम राम, राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अब आपको सुनाते हैं महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़।

कार्यक्रम का ये गीत अभी आपने सुना ऋचा शर्मा की आवाज में। आइए आपको सुनाते हैं श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज में ये लोक रचना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से कार्यक्रम लोक संगीत और अगली प्रस्तुति

दिलराज कौर की गाई इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। रात्रि 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 साल एक गौरवशाली यात्रा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता और कविता पाठ। कवि हैं श्री सुरेंद्र डी सोनी और बातचीत करेंगी आरती सोनी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है आकाशवाणी के गौरवपूर्ण 90 वर्षों को। श्रोताओं, रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं रहा, बल्कि ये देश की संस्कृति, संगीत, साहित्य और जन भावनाओं का जीवंत दस्तावेज भी रहा है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष। 90 वर्षों की ये यात्रा केवल प्रसारण की यात्रा नहीं है श्रोताओं, बल्कि भारत की स्मृतियों, संवेदनाओं, संगीत, साहित्य और जन भावनाओं की जीवंत कहानी है। आज इस विशेष अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं इतिहासकार, साहित्यकार, कवि और प्रोफेसर श्री सुरेंद्र डी सोनी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी।
0: प्रश्न आपसे विषय पर पूछना चाहूँ, इससे पहले एक संवेदना वाला प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आकाशवाणी नाम अपने आप में बहुत सुंदर और भावपूर्ण है, इसके पीछे क्या इतिहास है?
1: ये आकाशवाणी है, रेडियो से गूंजते इन तीन शब्दों ने यह आत्मविश्वास जगाया मुझ में, जैसे मैं कोई सिद्ध पुरुष हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। ये आकाशवाणी है, रेडियो से गूंजते इन तीन शब्दों ने यह आत्मविश्वास जगाया मुझ में, जैसे मैं कोई सिद्ध पुरुष हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। कोई ऋषि हूँ मैं, कोई मुनि, कोई साधक, कोई आराधक। मतलब मैं वह हूँ जिसके पास कुछ अलौकिक है, कुछ अद्भुत है, कुछ विशेष है। मतलब मैं वह हूँ जिसके पास कुछ अलौकिक है, कुछ अद्भुत है, कुछ विशेष है। यह दिव्य अनुभूति तो मुझे बाद में हुई, लेकिन इससे पहले ये आकाशवाणी है। जब मैंने रेडियो से पहली बार सुने थे ये शब्द, तो एक मिनट पापा के पास ठहर कर मैं सीधा दादी के पास दौड़ आया था। ये आकाशवाणी है, जब मैंने रेडियो से पहली बार सुने थे ये शब्द, तो एक मिनट पापा के पास ठहर कर मैं सीधा दादी के पास दौड़ आया था। असल में डर गया था मैं यह सुनकर कि यह आकाशवाणी है, क्योंकि मुझे कंस याद आ गया था। दादी, क्या मैं कंस हूं? क्या बुरा बच्चा हूं मैं जो मुझे कोई मार डालेगा? क्या हुआ रे? यह कहते हुए दादी ने अपनी छाती से चेप लिया था मुझे। बोल, क्या हुआ, बोल। दादी, मैंने आकाशवाणी सुनी है, अभी रेडियो में कोई कह रहा था कि यह आकाशवाणी है। तो क्या हुआ बेटा, अच्छा ही सुना है तूने, बहुत अच्छा सुना। तुम्हें तो बताया था दादी कि कंस ने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा। तुम्हें तो बताया था दादी कि कंस ने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा। अरे बावले बेटे, वह कंस था और तू मेरा बेटा है, तुझे कोई नहीं मार सकता, तू तो खुद भगवान का रूप है। कंस तो बुरा था इसलिए मारा गया, प्रभु के हाथों मारा गया वह, क्योंकि उसका कल्याण इसी तरह होना लिखा था। कंस जैसों की बात छोड़ दे, हम लोगों के लिए आकाशवाणी कभी बुरी नहीं होती बेटा। कंस जैसे लोगों की बात छोड़ दे, हम जैसे लोगों के लिए आकाशवाणी कभी बुरी नहीं होती बेटा। आकाशवाणी तो शुभ ही होती है, आकाशवाणी से मंगल होता है, देखना तेरा भी एक दिन मंगल होगा। तू कंस की बात ही क्यों करता है? राम ने भी तो सुनी थी आकाशवाणी, लक्ष्मण ने भी सुनी थी आकाशवाणी, दशरथ ने सुनी थी आकाशवाणी, और युधिष्ठिर ने भी तो सुनी थी आकाशवाणी। इन सब आकाशवाणियों के बारे में बताऊंगी मैं तुझे धीरे धीरे। तेरा मन साफ है, तू पवित्र आत्मा है, तेरे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं जो तूने आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी हर किसी के नसीब में होती ही कहां है बेटे। लेकिन वहां भगवान कहां था दादी? उस आले में जहां रेडियो रखा है मैंने तो किसी को नहीं देखा। मेरे पापा कह रहे थे कि वहां तो वह रेडियो बोल रहा था जो बिजली से चलता है। क्या फायदा ऐसी आकाशवाणी को सुनने का दादी? यह बात है तो फिर तू डरा क्यों मेरे बेटे?

रेडियो से क्यों डरा? डरा तो था दादी, जब तुम्हारे पास आया तो डर चला गया। लेकिन मुझे तो यह बताओ कि रेडियो कोई भगवान थोड़ी ही है। रेडियो भगवान ही है बेटा, तेरे लिए तो भगवान ही है रेडियो, तुझे तो रेडियो सुनने का फायदा ही फायदा होगा। कैसे फायदा होगा दादी, कैसे फायदा होगा? तू रोज आकाशवाणी सुनेगा तो ठीक से बोलना सीख जाएगा। तू रोज आकाशवाणी सुनेगा तो ठीक से बोलना सीख जाएगा, कबाई नहीं खाएगा, हकलाएगा नहीं और बात अटकेगी नहीं तेरे हलक में। तू रोज आकाशवाणी सुनेगा तो ठीक से बोलना सीख जाएगा, कबाई नहीं खाएगा, हकलाएगा नहीं और बात अटकेगी नहीं तेरे हलक में। मेरा भी दिल नहीं दुखेगा फिर, मैं देवी देवताओं को कभी सोने कभी चांदी कभी तांबे कभी गुड़ और कभी आटे की जीभ चढ़ाती हूं ना, कि तू ठीक से बोलना सीख जाए। समझ ले कि उन देवताओं की कृपा से ही हुई है आज यह आकाशवाणी। तू तो रोज बजाया कर रेडियो, रोज सुनाकर आकाशवाणी और फिर कोशिश किया कर ठीक से बोलने की। तब का दिन और आज का दिन, तब का दिन और आज का दिन, तब मैं 8 का था और अब 60 का हूं। बड़ा अनूठा रहा है 8 से 60 तक का मेरा यह सफर। तब दादी को 2 मिनट की बात बताने में 8 मिनट लगे थे मुझे। आज अगर दादी जिंदा होती तो 8 मिनट की बात मैं 2 मिनट में कह देता। 8 की उम्र से आकाशवाणी मेरे साथ है और मैं आकाशवाणी के साथ हूं। कितने दिव्य हैं उस समय सुने हुए ये 3 शब्द कि यह आकाशवाणी है। कितने दिव्य हैं उस समय सुने हुए ये 3 शब्द कि ये आकाशवाणी है। ये 3 शब्द नहीं घुलते अगर दादी की उन प्रार्थनाओं में जो वह मेरे लिए करती थी। ये 3 शब्द नहीं घुलते अगर दादी की उन प्रार्थनाओं में जो वह मेरे लिए करती थी। नहीं होते समाहित ये 3 शब्द उन जीभों में जो दादी ने देवताओं को चढ़ाई थी। नहीं उतरते ये 3 शब्द मेरे कंठ में सरस्वती बनकर, तो मेरा क्या सामर्थ्य था कि 35 बरस तक मैं महाविद्यालयों में इतिहास पढ़ा लेता। तो मेरा क्या सामर्थ्य था कि 35 बरस तक मैं महाविद्यालयों में इतिहास पढ़ा लेता। क्या क्षमता थी मेरी कि शहर शहर सभा सभा मंच मंच गूंजता फिरता मैं। यह आकाशवाणी ही थी जो चली मेरे साथ पूरी जिंदगी। यह रेडियो ही था जो बना मेरा फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। ये आकाशवाणी ही थी जो चली मेरे साथ पूरी जिंदगी। यह रेडियो ही था जो बना मेरा फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। यह आकाशवाणी ही थी जिसने मुझे आभास करवाया सिद्ध, पवित्र, अलौकिक, अद्भुत और विशेष होने का। यह रेडियो ही था जिसने मुझे मुक्ति दिलवाई कवाईदार और हकला कहलाने के शाप से। यह आकाशवाणी ही थी जिसने मुझे आभास करवाया सिद्ध, पवित्र, अलौकिक, अद्भुत और विशेष होने का। यह रेडियो ही था जिसने मुझे मुक्ति दिलवाई कवाईदार और हकला कहलाने के शाप से। ये आकाशवाणी है, इन 3 शब्दों ने ही मुझे बोली दी, आवाज दी, अभिव्यक्ति दी। वही जानता है धारा प्रवाह बोलने का सुख जिसके गले में बोल कभी अटक जाते थे। वही जानता है धारा प्रवाह बोलने का सुख जिसके गले में बोल कभी अटक जाते थे। जो दुख के कारागार में कैद रहा हो वही ले सकता है आनंद सुख की राजधानी में उन्मुक्त विचरने का। यह दुर्भाग्य है उनका जिन्होंने कभी आकाशवाणी नहीं सुनी। यह सौभाग्य है मेरा कि मैंने आकाशवाणी सुनी। वेद, पुराण, महाकाव्य, स्मृतियां और संविधान सब ग्रंथ अच्छे हैं जग में। वेद, पुराण, महाकाव्य, स्मृतियां और संविधान सब अच्छे ग्रंथ हैं जग में। दुनिया के न जाने कितने ही पुस्तकालय भरे पड़े हैं इनकी टीकाओं से, इनकी व्याख्याओं से। लेकिन मेरे लिए इन सब का सार केवल 3 शब्दों में है।

0: और वे तीन शब्द हैं, ये आकाशवाणी है।
1: श्रोताओं, आपने जाना आकाशवाणी शब्द की महत्ता क्या है। चूंकि आप इतिहास के प्रोफेसर हैं, तो मैं इतिहास की ओर झांकना चाहूंगी कि स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही।
0: हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, आपने शब्द काम में लिया है राष्ट्र निर्माण।
1: जी,
0: जब हम राष्ट्र की बात करते हैं ना, तो वो देश से बड़ा शब्द है।
1: बिल्कुल,
0: देश तो एक भूगोल में बंध जाता है
1: जी,
0: लेकिन राष्ट्र है वो उससे बाहर है। आप इसको यूं समझें, मान लीजिए आप ही हैं, आप चले गई अमेरिका
1: जी,
0: आप वहां की नागरिक हो गई। अब आपकी पूरी निष्ठा तो अमेरिका के प्रति होनी चाहिए, लेकिन आपको जब ये पता चलेगा कि भारत में दिवाली मनाई जा रही है, तो आप भी अपने घर में वहां दिए जलाएंगी।
1: बिल्कुल।
0: आपको ये पता चलेगा कि भारत में रक्षाबंधन है, तो आप अपने भाई से वीडियो कॉल करेंगी और वहीं राखी बांधेंगी उसी पे। तो हम देश की सीमा से तो बाहर हो गए, उसके बाद भी देश हमसे छूटा नहीं,
1: भावनाओं में बंधा हुआ।
0: हाँ, असल में हमारा राष्ट्रीय होना यही है। तो आकाशवाणी जो है, जो ऑल इंडिया रेडियो का नाम ही तो आकाशवाणी है ना, ये देश की सीमाओं से पार करके और बहुत दूर दूर तक लोकप्रिय रहा है अब तक। तो राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को जोड़ने में तो जितनी भूमिका आकाशवाणी की है, उतनी भूमिका किसी दूसरे माध्यम की रही नहीं स्वाधीनता के बाद। दूसरी बात ये, आप देखेंगी यदि हम थोड़ा सा क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास देखें,
1: बिल्कुल,
0: तो आप ये महसूस करेंगी कि क्रांतिकारियों ने अपने अपने रेडियो स्टेशन बना रखे थे।
1: बिल्कुल।
0: आप ये भी देखेंगी कि जब सुभाष देश के बाहर थे, तो गांधी जी को उन्होंने क्या संबोधन दिया था, राष्ट्रपिता कहा था
1: जी।
0: तो इसलिए आकाशवाणी राष्ट्र के निर्माण का बड़ा ही सुंदर माध्यम है, जो सीमाओं से पार जाकर और देश के लोगों के दिलों को जोड़ता है।
1: अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रेडियो को अक्सर हम जनता का माध्यम कहते हैं, ऐसा क्यों, क्या वजह है कि रेडियो जनता का माध्यम है?
0: इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि रेडियो जनता तक बड़ी आसानी से पहुंचा है। दूरदर्शन जब आया तो उस समय तो ये था कि जो लोग सामने बैठेंगे वही देखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: आज तो स्थिति थोड़ी अलग है, इसके बहुत सारे दोष हैं, वो बात अपन अलग करेंगे। सोशल मीडिया से क्या नुकसान हो रहा है या क्या जो हो रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन जब ये रेडियो आया था उस समय प्रारंभ में तो ये कम लोगों के पास हुआ करता था। लेकिन मुझे मेरा बचपन याद है, पान की दुकानों पर या जो थड़ियां होती है इन पर रेडियो होता था और समाचार के समय लोग एकत्र हो जाते थे
1: जी।
0: मैंने खुद ने क्रिकेट की कमेंट्री इन थड़ियों पे बैठ के सुनी हुई है। तो ये जनता तक इसीलिए पहुंचा कि आवाज तो एक यंत्र से निकल रही है, लेकिन वो जोड़ बहुत सारे दिलों को रही है। सारे लोग एक साथ एक ही तरीके से सोचते हैं उस समय। कोई गीत आता है तो सभी भावुक हो जाते हैं, समाचार आते हैं तो सभी एक जैसा चिंतन करने लगते हैं, एक जैसा सोचने लगते हैं। तो ये जनता का माध्यम है।
1: कोई ऐसे कार्यक्रम, आप चूंकि कह रहे हैं कि आप बहुत लंबे समय से रेडियो सुनते आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे कार्यक्रम जिन्हें आप तो याद रखे हैं, लेकिन लोग भी जिन्हें याद रखते हैं?
0: देखो, रेडियो पे दो चीजें सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई अपने समय में, एक तो समाचार
1: जी,
0: और जब आप जनता के माध्यम की बात करती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, इस देश में हर 10 साल से एक पीढ़ी बदलती है, तो 10 साल में बदलती हुई कई पीढ़ियों ने रेडियो से, आकाशवाणी से और शब्दों का सही उच्चारण करना सीखा है, उनके अर्थ जानने की कोशिश की है। तो एक बात तो हो गई ये कि भाई ये जो रेडियो है, ये चूंकि जनता का माध्यम है और लोगों तक पहुंचता है, तो इतना सीखा है लोगों ने रेडियो से, हमारी पीढ़ी के लोग जो थे उन्होंने और उसके बाद में, कि रेडियो अच्छा ही लगा है लोगों को।
1: और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो आज भी हमारे सदन में हैं।
0: प्रोग्राम्स तो पहला कार्यक्रम तो हो गया समाचार
1: जी।
0: अच्छा, हिंदी नहीं, इसमें आप आंग्ल भाषा को भी शामिल करें, जोड़ें,
1: बिल्कुल,
0: तो भी आपको अंग्रेजी सीखने का एक लोकप्रिय माध्यम था रेडियो। हमने खुद ने अंग्रेजी भाषा रेडियो के माध्यम से ज्यादा सीखी है
1: जी।
0: और उसके बाद में पढ़ा है।

0: दूसरा है फिल्मी गाने।
1: बिल्कुल,
0: भारतीय फिल्मों के गीतों के लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा कारण है ना, तो वो रेडियो है। अपने जमाने में आप ये देख लीजिए कि विविध भारती ले लीजिए,
1: बिल्कुल,
0: सैनिकों के लिए कार्यक्रम है तो सैनिक जुड़ा हुआ है, युवाओं के लिए कार्यक्रम है तो युवा जुड़े हुए हैं, युववाणी कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम रहा है। गीतों की बात है कि कौन सा गीत इस सप्ताह टॉप पर है, किसान है वो शाम को थका हुआ अपने घर में बैठा है, वो कृषि दर्शन कार्यक्रम सुन रहा है, उसको नई नई जानकारी मिल रही है, तो ऐसा कोई क्षेत्र बचा ही नहीं समाज में या ज्ञान का या विज्ञान का जहां रेडियो न पहुंचा हो और जिस पर रेडियो के कार्यक्रम न हुए हो। लेकिन ज्यादा लोकप्रिय कार्यक्रमों में समाचार को मैं प्रथम स्थान पर रखूंगा, उसके बाद हमारी भारतीय फिल्मों के गीत, और उसके बाद युवाओं के लिए युववाणी कार्यक्रम एक दोपहर में आता था, अब भी आता होगा, महिला जगत कार्यक्रम है, वो भी बहुत लोकप्रिय रहा, और इसके अलावा किसानों के लिए कृषि दर्शन या किसी दूसरे नाम से जो कार्यक्रम है वो। इसके अलावा कुछ लोग विशेष रुचि के होते हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत वाले लोग हैं
1: जी।
0: तो देर रात शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम तय है आकाशवाणी का, उसको सुनने वाले भी बहुत लोग हैं। और एक दूसरा कारण भी है अलग अलग कार्यक्रमों के लोकप्रिय होने का, कि लोगों को अवसर मिलता है। गांव के किसान को जब आप कृषि दर्शन में बुला के बात करेंगे तो वो सोचेगा कि देखो मेरी आवाज कितनी कितनी दूर तक जा रही है। युवा, मैं खुद ही 14 साल का चला गया था युववाणी कार्यक्रम में आकाशवाणी जयपुर पर, तो मुझे ये लगा कि बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने और हमेशा के लिए जुड़ गया। तो ऐसे कोई एक बार भी आकाशवाणी से किसी कार्यक्रम से जुड़ गया है तो फिर वो आजीवन जुड़ा रहा है उससे, और उसने दूसरों तक भी उस कार्यक्रम को पहुंचाया है। तो ये 4-5 कार्यक्रम है वो बड़े लोकप्रिय।
1: आपसे पूछना चाहूंगी कि विश्वसनीयता की जहां तक बात आती है, रेडियो को सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है सूचनाओं का, इसके बाद ऐसी कौन सी सबसे बड़ी ताकत है जो आकाशवाणी की ताकत है, जो केवल आकाशवाणी के पास ही निहित है विश्वसनीयता के अलावा?
0: आप चीजों को दो भागों में बांट के देखिए, एक तो रेडियो और एक आकाशवाणी।
1: बिल्कुल,
0: रेडियो में बहुत कुछ आ जाता है, और अब का जो दौर है, हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, FM भी बहुत हो गए, इतने सारे लोग उस पर प्रोग्राम देने वाले हो गए, उनको एक बार अलग कर दें और आकाशवाणी की बात करें तो सबसे सही समाचार हमें आकाशवाणी पर मिलेगा। सबसे ज्यादा विश्वसनीयता, सबसे ज्यादा सच्चाई इसीलिए निकल कर आती है आकाशवाणी से, क्योंकि इसके पास जो भी समाचार आएंगे, जो भी खबरें आएंगी, वे पुष्ट होकर आएंगी। हालांकि खेल तो सारा हवा का ही है आकाशवाणी का, जो भी खेल है, लेकिन हवा में ऐसी बात नहीं होती जो झूठी हो।
1: सर, आप इतिहासकार भी हैं और कवि भी, क्या आपको लगता है कि रेडियो ने इतिहास और कविता दोनों को जन जन तक पहुंचाया है?
0: इतिहास के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इतिहास की प्रारंभिक जानकारी हमें रेडियो से मिली है, मतलब आकाशवाणी से मिली है। मुझे याद है ये जो श्रव्य नाटक होते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उनको, रेडियो नाटक बोला करते हैं जिनको, ये रेडियो नाटक बड़े बड़े क्रांतिकारियों पर, स्वतंत्रता सेनानियों पर बहुत मंचित हुए हैं इस रेडियो पर, आवाज के माध्यम से। तो तभी पता चलता था, वो हम बहुत छोटे थे, कि ये भी कोई व्यक्तित्व है क्या। आज तो आपके पास बहुत विकल्प हैं, आप टीवी पे भी चैनल बहुत जल्दी बदलते हैं, लेकिन उस जमाने में इतने सारे चैनल्स नहीं हुआ करते थे कि आप एक को छोड़कर दूसरे पे चले गए, ऐसा कम होता था। आप एक जगह रुके हैं तो रुके हुए ही हैं, और वहां पर आपको नहीं पता कि अगला कार्यक्रम क्या आने वाला है, लेकिन उसी समय कोई इस तरह का रेडियो नाटक आ गया, जो भगत सिंह पे हो या अशफाक उल्ला खान पे हो या नेताजी सुभाष पे हो या चाणक्य पे हो या चंद्रगुप्त पे हो या शिवाजी महाराज पे हो, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती थी और फिर अपने आप रुचि पैदा होती थी कि इनके बारे में जाने। वो दौर पुस्तकालयों का दौर भी था। अब मेरी जहां तक बात है, तो मेरा निर्माण जो है वो खेल के मैदान में कम हुआ, पुस्तकालयों में हुआ या इस रेडियो से हुआ। प्रारंभ में 60 साल की आयु है मेरी, तो उस समय जब वो जो दौर था मेरे किशोर होने का, उस दौर में, उस कालखंड में, और बहुत बड़ा योगदान रहा रेडियो का। मैंने बहुत सारे जो ऐतिहासिक प्रसंग हैं, ऐतिहासिक विषय हैं, वो रेडियो से ही जाने हैं, और उसके बाद रुचि बनी, तो धीरे धीरे फिर मैं इतिहास

0: जहाँ तक कविता की बात है, तो कविता मूल रूप से तो देखो ये सीधा सीधा आपकी आत्मा का विषय है।
1: बिल्कुल।
0: आपके भीतर कविता होती है तभी वो बाहर आती है, लेकिन उसको परिष्कृत करने के लिए, उसके परिष्कार के लिए और कविता को वास्तव में कविता बनाने के लिए आपको कोई किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है, कोई गुरु चाहिए, कोई मार्गदर्शक चाहिए। और उस गुरु और मार्गदर्शक के रूप में मैंने आकाशवाणी को भी पाया है, आपके अपने रेडियो को भी पाया है।
1: श्रोताओं, जानना आपने कि किस प्रकार आकाशवाणी ने इतिहास और कविता दोनों को जन जन तक पहुंचाया है और बड़ा शक्ति के साथ पहुंचाया है। कविताओं को सुनकर मन आह्लादित होता है, मन प्रसन्न होता है और ये बात हम तक पहुंचाती है आकाशवाणी। सर, एक प्रश्न आपसे और जानना चाहूंगी कि आज डिजिटल युग है, हम बहुत सारी तकनीक को अपना चुके हैं और कई चमत्कार हमारे सामने होते रहते हैं, लेकिन ऐसे में भी रेडियो प्रासंगिक है अथवा नहीं?
0: आकाशवाणी की और साथ में रेडियो की भी ये सबसे अच्छी बात है कि इसने समय के साथ अपने आप को रूपांतरित किया
1: जी।
0: इसीलिए आज हम बहुत सारे एफएम सुनते हैं, एफएम चैनल सुनते हैं, इंटरनेट रेडियो आ गया, डिजिटल रिकॉर्डिंग होने लग गई, मोबाइल पर ऐसे एप्लीकेशंस हैं कि आप कहीं का भी एफएम सुन लें, ये सारा। तो एक तो अपना विस्तार आकाशवाणी ने रोका नहीं, जैसे जैसे नई चीजें आई वैसे वैसे इसने अपना विस्तार किया, अपने आप को आगे बढ़ाया। दूसरी बात यह है कि जो कार्यक्रमों का जो स्वरूप है उसमें आकाशवाणी ने आत्मा तो नहीं बदली, लेकिन जो आवरण है बाहर का, जहां जहां बदलने की आवश्यकता थी वहां वहां आकाशवाणी ने अपने आप को बदला है और अपने मूल स्वरूप को, अपनी विश्वसनीयता को कायम रखा है। इस वजह से, और मैं ये कह सकता हूं कि आज के दौर में भी आकाशवाणी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरे माध्यम है।
1: सर, एक बात जो हम सुनते आ रहे हैं युगों से और खास तौर पर कवि समुदाय के लिए होती है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कल्पनाओं का जो लोक है उसमें विचरण करते करते कवि कहां पहुंच जाता है, इसका अंदेशा नहीं होता, इसका अनुमान नहीं लगा सकते और इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आकाशवाणी भी कल्पनाओं को जीवित रखता है। क्या हम आकाशवाणी के माध्यम से सुनने वाले कार्यक्रमों को जब सुनते हैं तो क्या हम कल्पना लोक में विचरण कर रहे होते हैं?
0: देखो, आकाशवाणी की विश्वसनीयता तो इसी कारण से है कि यह सच बताता है, यहां से कभी कोई मिथ्या प्रसारण नहीं होता, कोई मिथ्या सूचनाएं नहीं जाती। तो एक तो उसका ये पक्ष है।
1: बिल्कुल।
0: कि जब आपको सूचना चाहिए तो आपको सही सूचना मिलेगी, उसमें कोई कल्पना नहीं होगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इसका दूसरा पक्ष है, जहां जहां कला को अभिव्यक्त करने की बात आती है, खाली कविता की बात नहीं है, जैसे रेडियो नाटक है अपने
1: जी।
0: या जैसे मान लो एक कार्यक्रम आता है, किसानों का कार्यक्रम है, चाहे उसका कोई सा भी नाम हो, वो कार्यक्रम हिंदी भाषा में हो जरूरी नहीं है,
1: स्थानीय
0: भाषा में कार्यक्रम होता है। और स्थानीय भाषा में भी ये है कि आप चूरू का चैनल देखेंगे, चूरू एफएम पे जाएंगे तो आपको दूसरी भाषा मिलेगी, और आप जयपुर जाएंगे तो वहां के किसानों के कार्यक्रम में वो ढूंढाड़ी का पुट आ जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो एक तो इस वजह से क्या है कि अब अपनी भाषा में जब बात होगी तो व्यक्ति उसको जुड़कर सुनेगा, और वो बात यदि मान लीजिए कि कोई नाटक है, मान लीजिए अपनी भाषा में आ रहा है, तो नाटक के साथ तो जो पात्र होंगे उनके साथ श्रोता बहेगा ही, जो अपना दृश्य माध्यम होता है उसमें साथ बहते हैं। तो श्रव्य माध्यम में हमारी सारी चेतना संकेंद्रित हो जाती है, जो आवाज उस यंत्र से आ रही है, उपकरण से आ रही है, रेडियो से आ रही है, उस आवाज में। तो कल्पना के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन कोई विज्ञान वार्ता है उसमें तो कल्पना चलेगी
1: नहीं, तथ्य होंगे।
0: लेकिन जहां कल्पना का प्रश्न होता है, जहां कविता हो गई, जहां नाटक हो गया, जहां साहित्य हो गया, जहां कहीं भी ये गुंजाइश होती है, जैसे बच्चों के कार्यक्रम है, अब बच्चों को तो कहानी सुनानी पड़ेगी, तो जब बच्चों को आप कहानी सुना रहे हैं तो बच्चा उस कहानी के साथ बहता चला जाता है। तो कल्पना से तो अलग

0: हमारा जीवन है ही नहीं, तो जब हमारा जीवन ही कल्पना से अलग नहीं है तो आकाशवाणी कैसे होगा, क्योंकि आकाशवाणी बात तो हमारी जिंदगी की करता है।
1: अब हम जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी की ऐसी कौन सी विशेषता है जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है।
0: हाँ, कोई नया विद्यार्थी हो जो अभी अभी कॉलेज में गया हो या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गया हो, तो उसके पहले तो वो बहुत ज्यादा नहीं जानता कि मुझे कैसे बोलना चाहिए, मेरी आवाज कैसी होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वो समाज में आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो अनुभव करता है कि मेरी अभिव्यक्ति ऐसी हो जो दूसरों से अलग हो, दूसरों से अच्छी हो, और तब उसे ये आकाशवाणी याद आता है। मेरा खुद का ही अनुभव ये है कि आप अच्छा बोलने का प्रयास यदि आपको करना है, आपको सीखना है अच्छा बोलना, तो आप आकाशवाणी से सीख सकते हैं। तो हमारी जो भाषिक गरिमा है वो हमें आकाशवाणी से प्राप्त होती है। मैं नहीं कह सकता कि सभी जगह ऐसा हो गया, क्योंकि इतने सारे FM चैनल्स हो गए, कहीं कहीं मुझे ये जो बोलने वाले जिनको क्या रेडियो जॉकी बोलते हैं क्या, इन रेडियो जॉकी की कई जगह मुझे भाषा पसंद नहीं आती है, लेकिन मैं अपने दौर की बात करूं या मैं आकाशवाणी की ही बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि भाषा की गरिमा, भाषा की शुद्धता और जो उतार चढ़ाव आता है बोलने में, वो सारा हम आकाशवाणी से सीख सकते हैं। तो ये आज के जमाने में भी सबसे बड़ी बात है। बच्चे मुझसे कई बार सवाल करते हैं कि सर हम अच्छा कैसे बोलें, शुद्ध कैसे बोलें, साफ कैसे बोलें, तो मैं उन्हें ये कहता हूं आकाशवाणी पे समाचार तो जरूर सुना करो, आप ये भी जान जाओगे कि कहां नुक्ता काम लेना है और कहां नुक्ता काम नहीं लेना है। बहुत सारे समाचार वाचक थे, वो मुझे अब भी याद है, बहुत कई नाम अब भी याद
1: है। हाँ,
0: तो हम भाषीय गरिमा है, हमारा जो भाषा का जो ज्ञान है वो आकाशवाणी से बढ़ता है और हम सीखते हैं, निरंतर नया सीखते हैं।
1: सर, चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे युवा रेडियो उद्घोषक हैं और साहित्य प्रेमी हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं मेरे उद्घोषक मित्रों को, भाइयों को, बहनों को ये कहना चाहूंगा कि ठीक है उनकी आवाज अच्छी है, मेरी सहमति है, उनका उच्चारण भी अच्छा है, ये भी ठीक है, लेकिन देश दुनिया में क्या हो रहा है इस विषय में उनको और ज्यादा जागरूक होना चाहिए
1: जी।
0: जब तक आप ये जानेंगे नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है, देश में क्या हो रहा है, अपने शहर में क्या हो रहा है, आप विषयों को गहराई से नहीं समझेंगे तो आपकी अभिव्यक्ति में मौलिकता नहीं आएगी। दूसरी बात कविता की, साहित्य की रही, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष इस श्रृंखला में आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया प्रोफेसर सुरेंद्र डी सोनी को। सर, आपने अपने विचारों से आकाशवाणी की गौरवपूर्ण यात्रा को बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने रखा। आपने इतिहास, साहित्य और संवेदनाओं के सुंदर संगम से इस बातचीत को अत्यंत यादगार बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। आकाशवाणी के 90 वर्षों को समर्पित यह विशेष प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 साल एक गौरवशाली यात्रा। इस कार्यक्रम में भेंट वार्ता और कविता पाठ कवि थे श्री सुरेंद्र डी सोनी और वार्ताकार के साथ बातचीत कर रही थी आरती सोनी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के चूरू से किया गया। आइए अब आपको सुनाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत अन्नू मलिक के संगीत निर्देशन में फिल्म अकेले हम अकेले तो।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक के साथ उदित नारायण के।

लीजिए सुनिए अलका अग्नि के साथ उदित नारायण की आवाज कयामत से कयामत तक फिल्म का ये गाना, मजरु सुल्तानपुरी का गीत, आनंद मिलिन का संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से कार्यक्रम गुलदस्ता में फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज़ एट 9।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा।

0: समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाले सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
4: 2-3 ब्रांचेस आल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से

0: लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
1: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास एक रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम मन भवन सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। केशर देव तंवर की ओर से लेकर हाजिर हैं आपके साथ आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका इंतजार करते हैं आप पूरे सप्ताह भर। तो कार्यक्रम की शुरुआत सुनिए ये प्यारा सा गाना।

कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुनाल का अग्निक पंकज उदास की आवाज में समीर का लिखा गीत, नदीम श्रवण का संगीत था, फिल्म थी आदमी खिलौना है और पसंद थी आप सभी श्रोताओं की लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्दु सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार बरखा, योगेंद्र कुमार, निहारिका, नरेंद्र कुमार और इनके चिंडालिया परिवार के सभी सदस्य। आप हमारे श्रोता है अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, कव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक और जयपाल यादव, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी और इनके यादव परिवार के सभी सदस्य। आप हमारे श्रोता है शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, कुमार दुर्गेश्वरी, आप लिखते हैं जिला नांदेड़ यताला महाराष्ट्र से। आप हमारे श्रोता हैं लिखने वाले मां नर्मदा श्रोता परिवार शिवकोटी ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश से, राकेश पप्पू सेन, श्रीमती निशा सेन द्वारकाबाई, इंदौर लिम्बोदी से गिरधारी लाल चौधरी और मनीषा चौधरी। और ये हमारे श्रोता है पवार परिवार के श्रोता लक्ष्मण परिवार, गोवर्धन, बंसीधर, दिनेश, गुनगुन, मनीष, नानी देवी, सुमन, संजू देवी, बेबी पवार और इनके सभी परिवार के सदस्य। आप लिखते हैं वाल्मीकि बस्ती वार्ड नंबर 47 चूरू से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से कार्यक्रम मन भावन। ये आवाज है लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद अजीज की शहनशाह फिल्म का ये गाना, आनंद बख्शी का गीत और संगीतकार अमर उत्पल।

शहनशाह फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आनंद बख्शी का गीत था, अमर उत्पल का संगीत था, लता मंगेशकर के साथ आवाज थी मोहम्मद अजीज की, पसंद थी आप सभी हमारे श्रोताओं की। आप हमारे नियमित श्रोता हैं भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा हमीरी कला झुंझुनू से, महेश जानू बहादुरबास झुंझुनू से, सुखजिंद्र बुगालिया चिड़ावा झुंझुनू से, बलजीत कांटीवाल विदासर झुंझुनू से, राजा नंदवाणी रजत, रोहित केशव, मुकुल मनीष, सुमित साक्षी और किरण नंदवाणी नई सिलक चूरू से। आप हमारे श्रोता हैं जगदीश मंडल, अभिषेक मंडल गुदरी बाजार चूरू से, राकेश कुमार दुधवा मीठा चूरू से, अरविंद खारडिया लादरिया चूरू से, निशांत फुंडे, ओमप्रकाश फुंडे, मानसी चेतन ये लिखते हैं गोंदिया महाराष्ट्र से। आप सभी ने सुना अपनी पसंद का गीत और अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम मन भावन की अगली प्रस्तुति के रूप में लव स्टोरी फिल्म का ये गाना। लता मंगेशकर, अमित कुमार की आवाज, आनंद बख्शी का गीत, राहुल देवबर्मन का संगीत और ये गीत आप सभी की पसंद पर।

लता मंगेशकर अमित कुमार की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में। फिल्म थी लव स्टोरी, पसंद थी आप सभी श्रोताओं की। आप हैं ग्राम महेश्वरी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, नीना धाड़े, स्वप्निल धाड़े और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप हमारे श्रोता हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू और इनके सभी साथी, बटिंडा रोड मंडी डब्बू वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तान्या नारंग।

के सभी साथी आप हमारे श्रोता हैं रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी और इनके गोस्वामी परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। आप हैं वार्ड नंबर 60 शुरू से हरिप्रसाद तंवर, महेंद्र चंद्रकांता, पूजा प्रेम, श्याम सुंदर, सुनीता, पंकज, पवन, धर्मेंद्र, रूपी, अंजलि, प्रतीक्षा, खुशाल और इनके साथ में है कमल किशोर, माया।

0: आदित्य, कान्हा, तन्वी, सोना, नवे और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप हमारे श्रोता हैं, लिखते हैं, गायत्री नगर चूरू से मनोज, पूनम, मुकेश, रूहानी का, भरत और इनके मम्मी पापा। जारिया मोरी चूरू से महेश, मीना, गुंजन, लवीना और इनके सभी साथी। आप हमारे श्रोता हैं, कोर्ट के पास लक्ष्मणगढ़ से श्याम सुंदर, पूजा देवी, सोनू, दीपिका, मोनू, काजल, विनोद, रोहित, भावेश और हिमांशी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन कृष्णदेव तंवर के साथ। और हम अपने श्रोताओं को हमेशा बताते हैं कि आप इस कार्यक्रम में अगर शामिल होना चाहते हैं तो आपके अपने ईमेल हमारे इस कार्यक्रम में शाम 6 बजे तक 8 बजे तक आप भेज सकते हैं। फिलहाल एक लेते हैं छोटा सा अंतराल, अंतराल के पार आपको सुनाएंगे अमृत फिल्म का गाना।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
0: अनुराधा पौडवाल के साथ मनहर उदास की आवाज, अमृत फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आनंद बख्शी का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में आपने सुना अमृत फिल्म का ये गाना। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत पैरेलाल। पसंद थी आप सभी श्रोताओं की। आप हमारे श्रोता हैं कस्बा बरड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजित कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द और इनके राहुल परिवार के सभी सदस्य। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। आप हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता, अंकिता और प्रीति सिंह के साथ ऋतु सिंह। ये हमारे श्रोता हैं खोहरी झुंझुनू तहसील के गांव अलसीसर से। और हमारे श्रोता हैं, ये जानना चाहते हैं कि आप का नियमित श्रोता का संबोधन पाने के लिए हमें क्या शर्त निभानी पड़ेगी। तो हम आपसे कहते हैं कि आपको कोई शर्त निभाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे इन कार्यक्रमों में नियमित रूप से अपनी सहभागिता दें और अपना नाम नियमित श्रोताओं के साथ लें। तो आपका नाम हम लेते हैं आज। आप हमारे नियमित श्रोता हैं मनजीत सिंह, इनके साथ में हैं आकाश, अर्शदीप, गुरजोत, विक्की, सोमा, लक्ष्मी, माया, लब्बी, गगन, भोले और मन्नू। आप हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे नियमित श्रोता संजय ढींगिया, नमन अपार और ढींगिया परिवार के सभी सदस्य। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नौकेलाल और इनके सभी साथी। आप हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। आप हैं चक 5 MD पत्रोड़ा से मंगल जनागल, राही, श्रीमती रोशनी, अंकुर, इंदु और सुनील जनागल। आप सभी ने सुना अमृत फिल्म का ये गाना। अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बनफूल से।

मनफुल भीम का गीत था, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी का गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, और कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनाएंगे फिल्म जानी दुश्मन से। इन दोनों गीतों की मिली जुली फरमाइश इन सभी श्रोताओं की ओर से। आप हमारे श्रोता हैं गांव कलाना तहसील बादरा जिला हनुमानगढ़ से, और हमारे श्रोता हैं विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव। पटेल नगर मलोट से हमारे श्रोता हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विष्णु खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी, तिवानशी, वाणी, आरबी और जीवन बुक। आप हमारे श्रोता हैं बाजार रोड मुगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनिशा सबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। लक्ष्मणनगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला, विशाल और इनके सभी साथी। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुरहेकर। आप हैं नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार टूटी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार और उनके सभी साथी। गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा। आप हैं हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और ईशान खान। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता, गीता और इनके सभी साथी। वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार और अर्पिता। आप हैं हनुमानगढ़ के श्रोता सुल्तान सिंह तरड़, कपिल देव तरड़ और हिमानी तरड़, जी हिमानी जाखड़। आप हमारे श्रोता हैं जवानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान शर्मा, सौरव, साइना और मैंडी शर्मा। शीतलागेट बीकानेर से मोहम्मद शफी खींची, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद सुजैन, नूर फातमा, मोहम्मद आजम, अकमल हुसैन बिहानी, अमजद अली खींची, एम सफी मिस्त्री। आप हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, श्रीमती नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और उत्तम जमदाड़े। और ये हमारे श्रोता हैं डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, बेबी निष्का और तन्मय गजबिये। आप सभी सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म जानी दुश्मन से। उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज, समीर का गीत, आनंद मिलिंद का संगीत।

तो श्रोताओं, ये था आपकी पसंद पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का साप्ताहिक कार्यक्रम मन भावन। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। फिलहाल इस कार्यक्रम से दीजिए अपने रेडियो दोस्त केशव देव तंवर को इजाजत। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भवन। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 107 MHz पर। रात्रि के 10 बजने को है, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से कार्यक्रम आपनों राजस्थान।

राजस्थान में अरावली की सुरम्य वादियों में बसा अलवर जिला अपने समृद्ध इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक किलों के लिए राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। महाभारत कालीन मत्स्य देश के रूप में प्रसिद्ध यह शहर अपनी अनूठी विरासत, कला और बेहतरीन पर्यटन स्थलों के लिए एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान में अलवर अंचल की विशिष्ट परंपरा रही है। अलवर न केवल शासकों की, विद्वानों की, अपितु पौराणिक ऋषियों की भी तपोभूमि रहा है। वैदिक ऋषियों मांडव्य, पाराशर, अंगिरा, लोमश इत्यादि ऋषियों के मंत्रों से अनुगुंजित यह भूमि सदैव देववाणी की पोषक रही है। अलवर क्षेत्र का लोक संगीत यहाँ की समृद्ध संस्कृति का मुख्य आधार है। यह संगीत स्थानीय इतिहास, आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता को जीवंत रखता है। लोक संगीत

व वाद्य यंत्रों का यह संगम स्थानीय त्योहारों में एक नई उमंग भरता है। अलवर की थानागाजी तहसील के आसपास नेहरा गीत, जिन्हें स्थानीय भाषा में नवेदा, नेहरा, नेड़ा भी कहा जाता है, ये गीत विशेष रूप से गुर्जर, मीणा और अन्य ग्रामीण समुदायों में गाए जाते हैं। थानागाजी के क्षेत्रीय लोकगीतों में नेहरा का एक प्रमुख स्थान है। ये मुख्य रूप से रसिया, ढफ या दंगल की श्रेणी में गाए जाते हैं। इनमें स्थानीय वीर गाथाएं और स्थानीय लोक कथाओं का वर्णन होता है। आइए सुनते हैं धवले राम मीणा और साथियों के द्वारा।

शादी केंद्र अपने बंदोबस्त करवाए, पीने के हित मदिरा के खड़ा भराए, भोजन के लिए भैंसा बकरा मंगवाए, मृग सुअर स्यार खरगोश बहुत बंदवाए, सबरी बोली सुन में है।

बोल क्यों बन रहे अज्ञानी, मैंने मना करी नहीं मानी और मेरे पीछे मैया पर था मरे सैकड़ों प्राणी। ऐसो भाव मोए ना चाहिए ऐसे मेहतारी से खइए, मैंने तजे तजो कुटुंब परिवार त्याग दिए बाप और भैया।

ज्ञान सोच रही मन में, कोई संत बनानो चाहिए गुरु विपन में। संत

थानागाजी के इलाकों में नौदा दंगल बहुत प्रसिद्ध है। इनमें दो अलग अलग मंडलियां या गायक आमने सामने बैठकर सवाल जवाब की शैली में इन गीतों की जुगलबंदी करते हैं। नौदा के अलावा थानागाजी क्षेत्र में विवाह के गीत जैसे बन्ना बन्नी, बिंदोला, बधावा और सावन भादो में मल्हार जैसे हिचकी, लांगुरिया, पणिहारी और ऐसे ही बहुत से गीत गाए जाते हैं। आइए इसी कड़ी में सुनते हैं माता दीन और साथियों द्वारा गाया गया ये लोकगीत।

लोक गीतों की कड़ी में अब बारी आती है मीणावाटी गीतों की। ये गीत अलवर, थानागाजी, नारायणपुर के आसपास के इलाकों में बहुत प्रिय है, जो स्थानीय बोलियों में गाए जाते हैं। मीणावाटी गीत यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान है। ये गीत मुख्य रूप से प्रेम, भक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक गाथाओं पर आधारित होते हैं। चलिए सुनते हैं ग्राम बाछड़ी, तहसील थानागाजी की महिलाओं द्वारा गाया गया।

मेणावाटी लोक गीतों में प्रमुख रूप से गाए जाने वाले गीत हैं टेर या रसिया गीत। ऊंची आवाज में गाए जाने वाले इन गीतों का उपयोग मुख्य रूप से संदेश भेजने या देवी देवताओं को रिझाने के लिए किया जाता है। अगले आते हैं पढ़वाड़ा गीत, जो कि अलवर क्षेत्र के मीणा समुदाय में बहुत प्रसिद्ध है। ये कथात्मक गीत होते हैं जो स्थानीय इतिहास, वीरों की गाथाओं और पौराणिक प्रसंगों पर आधारित है। मीणावाटी गीतों में ही अपनी एक अलग पहचान रखते हैं हास्य और व्यंग गीत। इन क्षेत्रों में सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर आधारित हास्य व व्यंग गीत भी काफी पसंद किए जाते हैं। और इसी कड़ी में आते हैं हीला ख्याल, जो कि मीणा समाज का सबसे प्राचीन और पारंपरिक लोकगीत है। इसे यहाँ के लोग बड़ी ऊंची और लंबी आवाज में गाते हैं ताकि दूर दूर तक बैठे लोगों तक यह पहुँच सके। राजस्थान में रामजीलाल मीणा और कानाराम थली जैसे कलाकारों ने मीणावाटी गीतों को काफी लोकप्रिय बनाया।

बात हो अलवर के प्रसिद्ध लोकगीतों की तो राज क्षेत्र के लोकगीतों को कैसे भुलाया जा सकता है। अलवर के राज क्षेत्र बहरोड़ मुंडावर किशनगढ़बास कोट कासिम के उत्तरी भाग में मुख्य रूप से अहीरवाटी और मेवाती लोकगीतों की परंपरा है। यहाँ के प्रमुख गीत स्थानीय मेलों और त्योहारों में बहुत उत्साह के साथ गाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोक नाट्यों और मेलों में अलीबख्श ख्याल और महाभारत से जुड़े प्रसंग ढोला मारू और राजा भर्तरी के गीत भी गाए जाते हैं। चलिए सुनते हैं राज क्षेत्र का यह प्रसिद्ध लोकगीत।

0: इस क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत और संगीत परंपराओं में बारी आती है सबसे पहले अली बख्श ख्याल की, जिसे कि अलवर का रम्मत भी कहा जाता है। मुनावर के नवाब अली बख्श द्वारा शुरू की गई यह संगीत शैली में ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जो सामाजिक जीवन मूल्यों को दर्शाती है, जो राठी अहिरवाटी बोली में गाए जाते हैं। आइए सुनते हैं दुर्गा प्रसाद शर्मा और साथियों का सुंदर गाया ये गीत।
1: सो राठी गा।

अहिरवाडी लोकगीत मुख्य रूप से अहिरवाल यादव क्षेत्र में गाए जाते हैं। इन गीतों में यहाँ की संस्कृति, वीरता और लोक कथाओं का चित्रण होता है। ये गीत मुख्य रूप से श्रृंगार, भक्ति और वीर रस पर आधारित होते हैं। चलिए सुनते हैं यहाँ मदनलाल यादव और साथियों।

0: समय का चक्कर चढ़ासीस पे गुरु गोरख जी डांटा था ये उस मसीके दर्शन खतर कद पूरन मलना टा था
1: उस मसीके दर्शन खतर कद पूरन मलना टा था
0: ये धन माया का भरा खजाना ना धन का घाटा

समय के कारण हरिश्चंद्र ने सत भंडार भरे थे। एक ब्राह्मण ने राज मांग लिया बचना ते नहीं फिरे थे। लड़का राजा रानी तीनों घर के बाहर

श्रोताओं, अलवर की संस्कृति में कुछ क्षेत्रों में ब्रज संस्कृति का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ब्रज लोक संस्कृति से जुड़ा एक लोक भजन हम सुनते हैं, जिसके कलाकार हैं नरसी शर्मा।

बात करें परंपराओं की तो रसिया और बन्ना बन्नी को कैसे भूला जा सकता है। त्योहारों के अवसर पर रसिया गाए जाते हैं जो ब्रज संस्कृति के प्रभाव को दिखाते हैं। चलिए सुनते हैं मामन चंद गौड़ और साथियों की ये

अलवर के लोक गीतों की श्रृंखला में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं मेवाती क्षेत्र के लोकगीत। और बात करें यदि यहाँ के लोक गीतों की, तो पहला नाम आता है रतबई गीतों का, जो कि मेवात क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय लोकगीत है। इसे प्राय वर्षा ऋतु या शाम के समय भपंग वाद्य यंत्र की संगत में गाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्रेम प्रसंग और स्थानीय वीर गाथाओं का वर्णन होता है। मेवाती लोक गीतों की आत्मा यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। इनमें भपंग और सारंगी सबसे प्रमुख हैं, जिन्हें मेवात के जोगी बजाने में सिद्ध हस्त होते हैं। इसके अलावा नगाड़ा, खड़ताल और ढोलक का भी इस्तेमाल होता है। आइए सुनते हैं हम उमर फारूक मेवाती और

0: घड़िया सुमट की बड़ी रामाट भी चपटी
1: मर
0: घड़िया सुमट की बड़ी रामाट भी चपटी
1: की घड़िया सुमट की बड़ी रामाट भी चपटी
0: मर घड़िया सुमट की बड़ी रामाट भी चपटी
1: की

मेवाती लोक संस्कृति में लोक गाथा एवं किस्सों का भी प्रमुख स्थान है, जिसे शामिल किए बिना लोक गीतों पर आधारित यह कार्यक्रम अधूरा है। आइए सुनते हैं नूर मोहम्मद मिरासी व साथियों द्वारा गाया लोक गाथा पंडुवन का कड़ा की ये प्रस्तुति। यह मेवात का सबसे प्रसिद्ध लोक महाकाव्य है। प्रसिद्ध शायर साधु अल्लाह द्वारा रचित इस गाथा में महाभारत के पांडवों की कथाओं का मेवाती लोक शैली में वर्णन किया गया है, जिसे स्थानीय जोगी और मिरासी सारंगी की धुन पर गाते हैं।

एक राजा जन नीतिया को कहां चलता हो जाता जेल खंभे जाकर याने जेल खंभे

glory, y'all.

कौन राज आज भीम के सामने क्या एक दोहा को

आगे आगे राजा अर्जुन, पीछे पीछे भीम, आओ

0: कहां जा रहे हो तू यार गेंडा किसी का लाएगा कि ये कहा है
1: बोले के यार गेंडा ये तो है
0: भाई मैं तो जानू भी ना करना मैंने पहले भी देख रखा भाई ये कि तो यार अब देर कहां है जल्दी हो जाएगी कि सही बात है लेकिन अब तू इतना काम कर ले कितना कौन कहता है भीम कौन से राजा जैसे क्या बात होती है।

0: सांस्कृतिक परिवेश को दर्शाते हैं। ये लोकगीत और लोक गाथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि स्थानीय जीवन शैली, आदर्शों और पीढ़ियों की मौखिक परंपरा के दस्तावेज हैं। अलवर के लोकगीत क्षेत्रीय पहचान और लोक जीवन का दर्पण है। ये गीत न केवल ऐतिहासिक चरित्रों और कथाओं को जीवंत रखे हुए हैं, बल्कि अलवर की पहचान को संगीत और मौखिक परंपरा के माध्यम से पूरी दुनिया में एक अनूठी छाप देते हैं। आशा है कि आज का हमारा यह लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में वाचन स्वर के साथ आपकी हमसफर रही मैं अर्चना जैन। आलेख था डॉक्टर भीम सिंह जाट का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री शिव कुमार शर्मा एवं श्री नीरज भगत।
1: अलवर के लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम अंशदान आकाशवाणी अलवर का था और इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया।
2: FM 107.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया अपना मनपसंद रेडियो चैनल आकाशवाणी जरूर।

FM 107.7 MHz पर हम आकाशवाणी चुरू से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission's S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. A Delhi court today extended the judicial custody of five accused in the NEET paper leak case till 15th of this month. Yesterday, two other accused were sent to 14 days of judicial custody. The CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Cum Entrance Test held on 3rd May amid allegations of paper leak. A re-examination has been scheduled for 21st of this month. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal, days after Nepalese Prime Minister Balendra Shah sought involvement of China and the UK to address the long-standing dispute. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said both sides have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of the border matter.
3: While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments. The shifting of the course of Gandak River has resulted in this situation. In addition, there are cases of cross-border occupation and encroachment of no man's land in demarcated segments of the boundary, which are currently being mapped jointly. We have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of boundary matters. It should be clear to all concerned that there is no role for any third parties in a bilateral matter between India and Nepal.
2: Mr. Jaiswal said India also rejects the unwarranted references made in Pakistan-European Union joint statement regarding Jammu and Kashmir. Mr. Jaiswal said that the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable parts of India. The ministry spokesperson also said the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a four-day visit to India starting tomorrow. Mr. Jaiswal said during her visit, Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi. India have successfully conducted flight tests of the indigenously developed Rudra M2 air-to-surface missile from an airborne platform. The tests were carried out by Defence Research and Development Organisation DRDO and the Indian Air Force IAF under extreme release conditions with critical trajectory establishing the capability of all subsystems. Ministry of Defence said all the test objectives were fully met. Defence Minister Rajnath Singh lauded the efforts of DRDO, IAF, defence public sector undertakings, development production partners and industry stakeholders for the achievement. He said the successful tests demonstrate the growing maturity of indigenous defence technologies and mark a significant step towards Atmanirbharta in advanced weapon systems. Prasar Bharati's digital streaming platform Waves OTT has crossed 1 crore registered users in less than 2 years after its launch in November 2024. Ministry of Information and Broadcasting said the achievement marks a significant step in the growth of country's public digital media ecosystem. The ministry said this reflects the increasing adoption of indigenous digital platforms offering trusted, inclusive and diverse content to audiences in India and across the world. It said, with more than 1 crore registered users and over 1 crore 40 lakh downloads, Waves OTT is now focused on its next phase of growth. Russia launched a large-scale overnight attack targeting multiple Ukrainian cities in which at least 21 people, including 2 children, were killed and over hundreds others were injured. This marks one of Moscow's largest assaults in the recent months. President Volodymyr Zelensky said civilian infrastructure and energy facilities had been targeted across the country. And that is the end of this news bulletin.
4: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। कल पहली सभा में सुबह 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।